मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026, 5:56 और 41 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय

0: अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत कर रहे हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी जहां कदर चुगताई की देशभक्तिपूर्ण रचना। लीजिए अब सुनी पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में शिव गुरु का ये भजन।

लखबीर सिंह लखा और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना श्रीकांत मिश्रा की भक्ति रचना। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह के स्वर में ये भजन।

शर्मा बंधु के स्वर में अभी आपने सुना पंडित रामानंद शर्मा का भजन। इस भजन के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्रीमती नूतन रिस्वी का है।
1: पुराने समय में लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजते थे। वहां पर उन्हें किताबी ज्ञान के अलावा अच्छे संस्कार भी दिए जाते थे। वहां पर उन्हें बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, सच बोलना, ये सब संस्कार भी सिखाए जाते थे। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक संत समाज के विकास में अपना योगदान देना चाहते थे। उन्होंने एक विद्यालय आरंभ किया। उस विद्यालय को आरंभ करने का उद्देश्य था कि उनके विद्यालय से जो भी छात्र छात्राएं पढ़कर निकलें, वे समाज के विकास में सहायक बने। एक दिन उन्होंने अपने विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया और प्रतियोगिता का विषय रखा सेवा की सच्ची भावना। प्रतियोगिता के दिन निर्धारित समय पर सभी विद्यार्थी आ गए और प्रतियोगिता आरंभ हुई। सभी प्रतिभागियों ने आकर सेवा पर शानदार भाषण दिए। एक छात्र ने सेवा के लिए संसाधनों को महत्व देते हुए कहा, हम दूसरों की सेवा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त संसाधन हो। कुछ छात्रों ने कहा, सेवा के लिए संसाधन नहीं, सच्ची भावना का होना जरूरी है। जब परिणाम घोषित करने का समय आया, तब संत ने एक ऐसे छात्र को चुना जो मंच पर आया ही नहीं। इससे अन्य विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पूछा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया। तब संत ने कहा, आप सबको शिकायत है कि मैंने ऐसे विद्यार्थी को क्यों चुना जो प्रतियोगिता में शामिल ही नहीं हुआ। दरअसल मैं देखना चाहता था कि मेरे छात्रों में से कौन से छात्र ने सेवा भाव को सबसे बेहतर तरीके से समझा है। इसलिए मैंने प्रतियोगिता स्थल के द्वार पर एक घायल बिल्ली रखती थी। किसी ने उस बिल्ली की ओर ध्यान नहीं दिया। यह अकेला ऐसा छात्र था जिसने वहां रुककर उस बिल्ली का उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा, और इस वजह से वो मंच पर नहीं आ सका। संत ने कहा, सेवा भाव तो आचरण में होना चाहिए। जो अपने आचरण से शिक्षा न दे सके, उसका भाषण भी पुरस्कार योग्य नहीं है। हमारे संत महापुरुषों ने सदा जन सेवा, पशु सेवा को महत्व दिया है। ये तो भाव भावना की एक ऐसी अवस्था है जो मन के राग और द्वेष से मुक्त होने पर होती है। सेवा भाव से चित्त निर्मल होता है। सेवा की सरलता ही मनुष्य को मुक्त अवस्था तक पहुंचाती है। सेवा का अर्थ है मन वाणी कर्म से बुराई रहित होना और यथाशक्ति परिस्थिति के अनुसार भलाई करना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन में भी सेवा का बेहद महत्व था। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हो या पशु सेवा, उन्होंने सेवा द्वारा दुख हरने का प्रयास किया। महात्मा गांधी जी, जिन्हें पशुओं से अगाध प्रेम था, उनकी सेवा का एक उदाहरण उनके आश्रम में एक बकरी थी। उसके अस्वस्थ होने पर बिना किसी की प्रतीक्षा किए वो उसकी सेवा शुश्रूषा में लग गए। महापुरुषों का जीवन हम सब के लिए अनुकरणीय है। जन सेवा के साथ पशु सेवा भी हम सबका कर्तव्य है। प्यासे पंछियों को दाना पानी डाल दें, घायल पशुओं का उपचार करा दें।

0: गर्मियों के दिनों में हम प्यासे पशुओं का ख्याल रखते हुए पानी उपलब्ध करा दें। रोज कुछ रोटियां ऐसे पशुओं के लिए रखें जो हम पर आश्रित हैं। सेवा करने से जो आत्मिक शांति और खुशी मिलती है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख था श्रीमती नूतन रिस्वी का। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराय पाली केंद्र है।

6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कान।

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटीं, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानी से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनःस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, कलाकार थीं रंजना जोगलेकर। आकाशवाणी के इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है कृषि चर्चा। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए, धान में श्री विधि अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं, इस विषय पर जानकारी देते हुए श्री मनीष कुमार वर्मा।
1: धान की श्री विधि जो है वो कम बीज, कम पानी और कुल मिलाकर कम खर्चे में धान की खेती की एक विधि है, जिसमें तीन चार मुख्य सिद्धांत हैं जो सामान्य धान का रोपा है उससे अलग करती है। इसमें कि इसमें बीज की मात्रा बहुत ही कम लगती है, 5 से 8 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता श्री विधि में होती है। दूसरा चीज ये है कि इसमें जो हम रोपा लगाते हैं तो जो पौधे की जो उम्र है वह कम से कम 8 दिन और अधिकतम 15 दिन, इससे ज़्यादा पौधे की उम्र नहीं होनी चाहिए, जबकि हम जो सामान्य रोपा है उसमें 20 से 25 दिन 30 दिन का भी हम पौधा रोपा लगाने के लिए उपयोग करते हैं। तो श्री विधि में हम कम उम्र के पौधे का, अधिकतम 15 दिन के पौधे का उपयोग हम रोपा लगाने के लिए करेंगे। साथ ही इसमें एक स्थान पर केवल एक ही पौधे का रोपण करना है, और जिसमें जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी है, पौधे से पौधे के बीच की दूरी और कतार से कतार के बीच की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर रखेंगे। जितनी ज़्यादा दूरी हम रखेंगे उसमें जो पौधे हैं उनको हवा, पानी, पोषक तत्व, इसके लिए जो प्रतियोगिता है पौधों के बीच वो न्यूनतम होगी और इससे पौधे का वृद्धि और विकास अच्छा होगा। साथ ही जो कम उम्र के पौधे जो हम इसमें रोपण के लिए उपयोग करते हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि जो कम एज का जो पौधा रहेगा इसमें जड़ विकास जल्दी होगा और पौधा मजबूती के साथ इसमें स्थापित होगा, पौधे के वृद्धि विकास अच्छे से होता है। इसमें जल प्रबंधन जो है ये इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो इसको सामान्य धान की खेती से अलग करता है कि इसमें खेत में पानी को भर के नहीं रखना है बल्कि खेत को केवल गीला रखना है, और गीला रखने के बाद फिर जब ये सूख जाए खेत, उसमें दरारें पड़ने लगे तो फिर से इसमें पानी भरना है। इस प्रकार से अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का सिस्टम इसमें हमको रखना है, क्योंकि जनरली इसमें किसानों का और अभी तक जो खेती करते हैं इसमें हमको ये मानना है कि धान की खेती और पानी का संबंध बड़ा ही उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें अगर खेत में हम पानी भर के न रखें तो इसमें वायु का संचरण जो है वो पानी भरे खेत की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसमें जो कंसे बनते हैं वो भी ज़्यादा बनते हैं, और इस प्रकार से इसमें वृद्धि विकास ज़्यादा होता है और फाइनली हमको उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। क्योंकि इस विधि में पानी को खेत में भर के नहीं रखते हैं, इसलिए नींदा जो है खरपतवार की समस्या इसमें एक मुख्य परेशानी हो सकती है, तो इसीलिए इसमें नींदा नियंत्रण के लिए कोनोविडर जो यंत्र है उसका उपयोग किया जाता है, जिसमें कोनोविडर के माध्यम से जो नींदा है उनको खेत से उखाड़ कर इसमें खेत में मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है मिट्टी में उसकी वृद्धि होती है और मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। ये एक महत्वपूर्ण होता है, और इसमें जो कोनोविडर है हम रोपाई के 10 दिन के बाद पहला कोनोविडर चलाते हैं, इस प्रकार से हर 10 से 15 दिन के अंतराल में इसको 3 बार हमको और कोनोविडर चलाना है, जिससे धान के खेत को खरपतवार मुक्त रखा जा सके। इस प्रकार से जो 3-4 मुख्य इसके सिद्धांत हैं, कम उम्र के पौधा को रोपण करना, एक स्थान पे एक ही पौधा लगाना, पौधे से पौधे और कतार से कतार के बीच की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर, नींदा नियंत्रण के लिए कोनोविडर का यूज करना, और जल प्रबंधन में पानी खेत में भर कर नहीं रखने के बजाय केवल गीला करना, ये जो है ये जो सामान्य रोपा है इससे इस विधि को अलग बनाते हैं। अगर हम इस के सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करें तो हम अपना जो उत्पादन है धान का उत्पादन लगभग 20 से 50% तक हम इसमें हम उत्पादन अपना बढ़ा सकते हैं।
0: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धान में श्री विधि अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्री मनीष कुमार वर्मा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। रात 9:25 पर सुनिएगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा। रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात 10:00 प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा। इसमें आप सुनेंगे मराठी सुगम संगीत, कलाकार होंगे आनंद भाटे, और उड़िया आधुनिक गीत, कलाकार होंगे विजय कुमार सामंत राय। संदेश टू सोल्जर्स आप सुनेंगे 4:00। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम बाल वाटिका के आकर्षण होंगे बेरा के बाद। इसमें आवव जुर्मिल धरती ला समारव, इस पर चर्चा होगी। यहूला चानव में भारत माँ रेलवे के अनोखा संसार, इस विषय पर डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी की वार्ता आप सुनेंगे। और आप सुनेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर सावित्री बाई फूले विद्यालय डंगनिया रायपुर के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। प्रगति के सोपान, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार सृजन कार्यक्रम पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन अधिकारी श्री गोपाल देवांगन से ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। भेंट करता होंगे रमाशंकर। प्रसारण समय 9:00। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:40 और 8:15 पर कलाकार होंगे ध्रुव शर्मा और साथी। इसी कार्यक्रम में 6:30 पर कलाकार होंगे श्यामदास मानिकपुरी और साथी। गैर फिल्मी गीत, गजल और कव्वाली के कार्यक्रम स्वरधारा के कलाकार होंगे जसविंदर नरूला और शिल्पा राव। प्रसारण समय 10:00। ईमेल भेजें फिल्म संगे सुने। श्रोताओं की पसंद पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा दोपहर 12:00। 5:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। आदिवासी जनजाति संगीत के कार्यक्रम लोकसुधा में 12:30 पर आप सुनेंगे कमार गीत। कलाकार होंगे समारी बाई मरकाम और साथ ही। 1:30 पर कार्यक्रम बिंदिया के आकर्षण होंगे आज के बाद। इसमें बच्चे मन के सच्चे, इनके बालपन को छीनने न दें, इस पर चर्चा होगी। पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम नीले गगन के तले आप सुनेंगे। आलेख और वाचन होगा गीता शर्मा का, परिकल्पना एवं संपादन होगा बीर भानसाहू का, प्रस्तुति होगी रमाशंकर की। 5:10 पर कार्यक्रम युववाणी में आप सुनेंगे अपन गोट। इसमें आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा होगी। क्रम माटी की आखिर में कविता पाठ प्रस्तुत करेंगी समृद्धि दुबे। 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा खेती किसानी में उन्नत कृषि उपकरण के उपयोग संग रख रखाव व सावधानी। किसानवाणी में आज की सलाह में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का महत्व, इस विषय पर डॉक्टर नितेश तिवारी वरिष्ठ वैज्ञानिक शस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की सलाह आप सुनेंगे। चित्रपट संगीत सुनिएगा 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2:00, 2:30, 7:00, 8:00 और 9:15 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं, आइए समाचार सुनें।

0: प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डे एकविंशतिः जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिणदिल्ल्यारक्षिविभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमनविभागस्य अष्टभिः वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिकसेवानां संयुक्तप्रयत्नैः चत्वारिंशदधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्तपरिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों

0: में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

एक और सुहानी सुबह में नमस्कार रायपुर लेकर हाजिर हूँ मैं सौम्या रिजवी, आप सभी को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जब हम उठते हैं तो रोज की तरह हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। इस समय ये करना है, उस समय वो करना है, भाग दौड़ भरी जिंदगी रोज की तरह होती है हमारी। व्यस्त रहना अच्छी बात है, लेकिन इस व्यस्तता भरी जिंदगी में कुछ वक्त अपने साथ भी हम गुजारें, सिर्फ खुद के साथ कुछ वक्त, कहीं कोई शोर ना हो, बस प्रकृति साथ रहे। ये प्रकृति चुपके से हमसे क्या कह रही है उसे हम महसूस कर सकें। चुपके से ये बयार क्या कह गई हमसे उसे समझ सकें। जानते हैं, प्रकृति की हर शय हमसे ज़रूर कुछ कहती है, उसे महसूस करने की ज़रूरत है। चुपके से उसे खामोश रहकर समझने की ज़रूरत होती है।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
0: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आएं पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: श्रोताओं, कल हम मनाने वाले हैं विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण से जुड़ी एक खबर हमने दो दिन पहले पढ़ी। पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश की है शिक्षक कलेश्वर साहू जी ने। उन्होंने एक महीने में ही अकेले 152,000 सीड बॉल तैयार कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। एक प्रशिक्षण के दौरान पर्यावरण संरक्षण को लेकर हुई चर्चा ने उनके भीतर कुछ बड़ा करने का जज्बा जगाया। प्रशिक्षण से लौटते ही उन्होंने धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया और 20 अप्रैल से लगातार इस मिशन में जुट गए। उनकी दिन रात की मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने इतनी संख्या में सीड बॉल तैयार किया। सीड बॉल तकनीक में बीजों को मिट्टी और गोबर के मिश्रण में लपेटकर छोटी गेंद का आकार दिया जाता है, जिससे बीज सुरक्षित रहते हैं। बारिश की नमी मिलते ही ये बीज खुद ब खुद अंकुरित होकर पौधे का रूप ले लेते हैं। इस तकनीक से उन पहाड़ी, पथरीले और दुर्गम इलाकों में भी पौधरोपण आसानी से संभव हो जाता है, जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल होता है। इन सीड बॉल्स को गुलेल या हाथों के जरिए दूर तक फेंका जा सकता है। कलेश्वर साहू जी ने पर्यावरण और स्थानीय जलवायु के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता दी है। इनमें मुख्य रूप से शामिल है इमली, गंगा इमली, चार, तेंदू, सतावर, नीम, अमरूद और गुलमोहर। श्रोताओं, कलेश्वर

श्रोताओं, भीषण गर्मी के बीच हाल के दिनों में चलती कारों में आग लगने की घटनाएं 20% तक बढ़ी हैं। खड़ी या चलती कार या अन्य वाहनों में आग क्यों लगती है और बचाव के उपाय क्या हैं, इस बारे में आगे हम बात करेंगे। साथ ही ऐसे गीत सुनेंगे जिसमें कार नजर आई है, यानी कार पर फिल्माए गए गीत। अभी बात करें इस पर, श्रोताओं, नकद की ज़रूरत पड़ने पर हम एटीएम से बड़ी आसानी से पैसे निकाल लेते हैं। हालांकि कई बार तकनीकी गड़बड़ी, नेटवर्क की समस्या या किसी अन्य कारण से पैसे फंस जाते हैं। इसे पाने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाया जा सकता है। अगर ऐसी समस्या आती है तो बैंक सर्वर या नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है, जिससे नकद मशीन से थोड़ी देर बाद निकल

0: होता है। कई मामलों में 5 से 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी पैसा वापस आ जाता है। अगर पैसे नहीं आए तो आगे की प्रक्रिया करें। ATM से पैसा निकालने पर मिली ट्रांजेक्शन स्लिप सुरक्षित रखें। अगर खाते से पैसे कट गए हैं और कैश नहीं मिला है तो ये स्लिप शिकायत दर्ज कराने में सहायक होगी। कई बार 24 घंटे में पैसा खाते में वापस आ जाता है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये स्लिप काम आएगी। अगर 24 घंटे में पैसा वापस नहीं आता तो तुरंत बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क कर हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। आमतौर पर बैंक शिकायत दर्ज करने के बाद 7 दिनों के अंदर समस्या का समाधान करता है। अगर कस्टमर केयर से बात ना हो पाए या फिर समस्या हल ना हो तो नज़दीकी बैंक शाखा जाएं, वहां हेल्प डेस्क पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं और एक ट्रैकिंग नंबर प्राप्त करें। इसकी मदद से आगे की स्थिति हम जान सकते हैं। RBI के नियम के अनुसार ATM में पैसा फंसने पर बैंक को 45 दिनों के भीतर अकाउंट में राशि वापस करना अनिवार्य है। अगर बैंक समय पर कार्यवाही नहीं करता है तो बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रहे, पैसे कटने की जानकारी बैंक को आपको पैसे कटने के 7 दिनों के भीतर देनी होती है। फिलहाल कार वाला ये गीत आपकी नजर।
1: बाजू।

0: चल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मत धूम जो समझा उसी की मत धूम
0: बाजू
1: ए बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम पम पम
2: कारों में आग लगने का कारण ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों और फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स के अनुसार शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ा कारण होता है। गर्मी में इंजन का तापमान पहले से ही ज़्यादा होता है, ऐसे में पुरानी वायरिंग के इंसुलेशन पिघल जाते हैं। वाहनों में बाहर से लगवाए गए स्टीरियो या लाइट के लिए की गई वायर कटिंग सबसे खतरनाक साबित होती है। ढीले कनेक्शन स्पार्किंग पैदा करते हैं जो फ्यूल लाइंस के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। फिलहाल ध्यान दीजिए इस जानकारी पर। छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार, अनुशासन और देशभक्ति की भावना से जोड़ने के लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद लगातार प्रेरणादायी कार्य कर रही है। परिषद वर्ष 2020 से युवाओं को विभिन्न सुरक्षा बलों की भर्ती परीक्षाओं के लिए निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण दे रही है। अब तक 12,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 850 से ज़्यादा युवाओं का चयन पुलिस, CRPF, आर्मी, BSF सहित अन्य सुरक्षा सेवाओं में हो चुका है। यहाँ कई युवा केवल भर्ती की तैयारी के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ और फिट रहने के उद्देश्य से भी नियमित अभ्यास करने पहुँचते हैं। इससे युवाओं को नशे और गलत गतिविधियों से दूर रहने में भी मदद मिल रही है। परिषद द्वारा युवाओं को दौड़, लंबी कूद, शारीरिक दक्षता, अनुशासन और मानसिक मजबूती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खास बात यह है कि ये पूरा प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। प्रशिक्षकों में वे पूर्व सैनिक शामिल हैं जो युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के अनुभव और व्यावहारिक जानकारी साझा करते हैं।

0: वहाँ नहीं जा रहा।
1: देखो तुम्हारे लाल लाल सिग्नल,
0: सिग्नल को तोड़ दो, बात बड़ी सी।

बंद कार के भीतर बाहर की तुलना में 10 से 15 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। डैशबोर्ड पर रखे लाइटर, सैनिटाइजर, परफ्यूम की बोतल और पावर बैंक बेहद ख़तरनाक है। अत्यधिक गर्मी में इनका प्रेशर बढ़ता है और ये फट सकते हैं। चश्मे का लेंस या पानी की बोतल भी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर सूरज की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर आग लगा सकती है। वैसे आग लगने का एक और कारण शॉर्ट सर्किट भी होता है। अगली जानकारी कुछ यूं है। बिजली हमारे रोज़मर्रा के जीवन की ज़रूरत है, लेकिन इसमें की गई थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन जाती है। इसलिए नियमित रखरखाव करें ताकि शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने का खतरा कम हो जाए। 10 से 15 साल पुरानी या बार बार ख़राब होने वाली वायरिंग आग और शॉर्ट सर्किट का सबसे बड़ा कारण बनती है, इसलिए समय समय पर इन्हें बदलना सुनिश्चित करें। सस्ते या लोकल वायर जल्दी पिघलते हैं और ओवरहीट हो जाते हैं, इसलिए हमेशा ISI मानक वाले वायर ही लगवाएं। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर उपकरणों और वायरिंग को ओवरलोड से बचाता है। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर करंट लगने से सुरक्षा देता है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। एक ही सॉकेट पर एक से ज़्यादा भारी उपकरण, हीटर, गीजर ना चलाएं, क्योंकि इससे दबाव अधिक हो जाता है। तारों के जोड़ सबसे कमज़ोर और ख़तरनाक पॉइंट होते हैं। इन्हें खुद ठीक करने के बजाय किसी जानकार से सही करवाएं। केबल को पानी और नमी से दूर रखने के लिए रसोई, बाथरूम और बालकनी में वाटरप्रूफ फिटिंग का इस्तेमाल करें। 2 साल में कम से कम एक बार इलेक्ट्रीशियन से वायरिंग की जांच कराएं। साथ ही कुछ और सावधानियां भी ज़रूर रखना चाहिए। गीले हाथों से स्विच या प्लग न छुएं, तार को खींचकर प्लग ना निकालें, हमेशा प्लग पकड़कर ही बोर्ड से हटाएं। एक्सटेंशन कॉर्ड का लंबे समय तक इस्तेमाल न करें। पुराने, जले हुए या टेप लगे तार का उपयोग न करें। खुले या ढीले स्विच बोर्ड को नज़रअंदाज न करें। सारे तार और स्विच छोटे बच्चों की पहुंच से बाहर हो, इसका ज़रूर ध्यान रखें। अगर कोई बोर्ड नीचे हो तो उसे बंद कर दें या फिर उस पर टेप लगा दें।

कोशिश करें कि कार हमेशा छाया में पार्क हो। अगर धूप में खड़ी करना मजबूरी हो तो चारों खिड़कियों के शीशे में थोड़ा हवा आने की जगह छोड़ दें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन से अंदर की गर्म हवा बाहर निकलती रहे। विंडशील्ड पर सनशेड का उपयोग किया जा सकता है। वैसे आजकल उपयोग किया जा रहा है यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग का। आजकल ऑनलाइन यात्रा बुकिंग करना आसान हो गया है। कुछ ही क्लिक में छुट्टियों की योजना बना सकते हैं, लेकिन इस सुविधा के साथ धोखाधड़ी और ऑनलाइन घोटाले का खतरा भी बढ़ गया है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिनकी मदद से धोखाधड़ी मुक्त और

और सुरक्षित बुकिंग कर सकते हैं। जब भी ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हों तो हमेशा भरोसेमंद और प्रसिद्ध वेबसाइट्स का ही इस्तेमाल करें। ऐसी वेबसाइट चुनें जो सुरक्षित भुगतान के तरीके प्रदान करती है। किसी भी नई या अज्ञात वेबसाइट पर भरोसा करने से पहले उसके बारे में समीक्षा ज़रूर पढ़ लें। किसी भी वेबसाइट की विश्वसनीयता जांचने का सही तरीका है उसके URL को ध्यान से देखें। अगर वेबसाइट के नाम पर कोई बदलाव दिख रहा है तो ये धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है। गूगल या अन्य सर्च इंजन पर भी वेबसाइट के नाम की जांच हम कर सकते हैं। बुकिंग से पहले उन होटलों, रिसॉर्ट या यात्रा एजेंसियों की समीक्षाएं पढ़ें जिनसे सेवा ले रही हैं। ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि सेवा की गुणवत्ता कैसी है। साथ ही ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि नकली समीक्षाएं भी हो सकती हैं, इसलिए भरोसेमंद स्रोतों से मिली समीक्षा पर ध्यान दें। अगर कोई यात्रा पैकेज या होटल का किराया बाकी वेबसाइटों की तुलना में बहुत ही सस्ता है तो इस पर विचार करें। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार सस्ता ऑफर अच्छे परिणाम दे। ऑनलाइन बुकिंग करते समय हमेशा एक सुरक्षित भुगतान गेटवे का उपयोग करें। जहां भी संभव हो दो स्तरीय प्रमाणीकरण का उपयोग करें। ये ऑनलाइन बुकिंग खाते को और भी अधिक सुरक्षित बनाता है। इस सुविधा के तहत लॉगिन करने के लिए पासवर्ड के साथ एक OTP या दूसरी सुरक्षा जानकारी दर्ज करनी होती है। तो इन बातों का रखें ध्यान और अपनी यात्रा को बनाएं सुगम।

श्रोताओं, चलती कार में आग लगने के कुछ शुरुआती संकेत हैं, जैसे रबर या प्लास्टिक जलने की गंध आए, बोनट में हल्का धुआं दिखे या डैशबोर्ड पर अचानक इंजन चेक लाइट जल जाए तो तुरंत सतर्क हम हो जाएं। कई बार फ्यूज का बार बार उड़ना भी बड़े खतरे का संकेत होता है।

है। वैसे बीमारी का खतरा तब बढ़ जाता है जब कीटाणुओं का प्रवेश होता है। श्रोताओं, हम जो सूटकेस सफर में लेकर चलते हैं वही हमारे घर और होटल के कमरे तक ऐसे कीटाणु पहुंचा सकता है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे अधिक कीटाणु सूटकेस के पहियों, निचले हिस्से और समतल हिस्से पर पाए जाते हैं, जिसे अक्सर ट्रेन या बस की सीट के नीचे रखा जाता है। यही कारण है कि सफाई पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। सूटकेस पर जमे सूक्ष्म जीव सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारे बिस्तर, कपड़ों और खाने तक पहुंच सकते हैं। नतीजा एलर्जी, पेट की गड़बड़ी और त्वचा संबंधी समस्याओं के रूप में सामने आ सकता है। सूटकेस को बिस्तर या खाने की मेज़ पर न रखें। होटल में हो तो सामान रखने के लिए रैक या फर्श का इस्तेमाल हम करें। यात्रा के बाद पहियों और निचले हिस्से को साफ करें। डिसइंफेक्टेड वाइप या साबुन पानी से पोंछना कीटाणुओं को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। पहियों को ढके साथ ही सूटकेस कवर का भी हम उपयोग कर सकते हैं। सूटकेस छूने के बाद हाथ धोएं, इससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। साथ ही गंदी जगहों से सूटकेस को बचाएं। कोशिश करें कि बैग को शौचालय के करीब या गंदे पानी से भरे रास्तों से हम न घसीटें।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सौलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: अगर आग लग जाए कार में तो सबसे पहले वाहन को सुरक्षित किनारे खड़ा करें, इंजन बंद कर दें, सेंट्रल लॉकिंग फेल होने की स्थिति में सीट के हेडरेस्ट को निकालकर उसके नुकीले हिस्से से खिड़की का कोना तोड़ें और बाहर निकल जाएं। जलते वाहन से 50 से 100 फीट दूर चले जाएं, क्योंकि फ्यूल टैंक फटने का डर रहता है। फायर ब्रिगेड, पुलिस या अन्य सहायता एजेंसियों को जानकारी दें। फिलहाल ये जानकारी सुनिए। डिजिटल क्रांति के इस दौर में हर छोटी बड़ी कंपनी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है और यहीं से शुरुआत होती है एक लोगो डिज़ाइनर के काम की। अगर रचनात्मकता है और विजुअल आर्ट्स में रुचि रखते हैं तो ये तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र खास पहचान और सफलता दिला सकता है। इस तरह के कोर्स के लिए कुछ संस्थानों में UCET जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं तो कई जगह पोर्टफोलियो के आधार पर एडमिशन मिलता है। करियर स्कोप इसमें कुछ इस तरह से है। ब्रांडिंग एजेंसियों में विजुअल आइडेंटिटी डिज़ाइनर या कंपनियों में इन हाउस डिज़ाइनर बन सकते हैं। फ्रीलांसिंग से दुनिया भर के लिए घर बैठे काम कर सकते हैं और अनुभव होने पर क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकते हैं। सरकारी संस्थानों की डिग्री सबसे अधिक प्रामाणिक होती है। ग्राफिक डिज़ाइन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID अच्छा है। इसके अलावा IDC, IIT मुंबई, DOD गुवाहाटी, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली और सर जे इंस्टीट्यूट मुंबई से भी डिज़ाइनिंग में प्रतिष्ठित डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। लंबी डिग्री के बजाय भारत सरकार के स्किल इंडिया NSDC से शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स किया जा सकता है। स्वयं पोर्टल पर IIT प्रोफेसर्स के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध हैं।

आग से बचने के लिए ये सावधानियां जरूर बरतें। सीएनजी कारों में अपने किट का लीक हर 2 महीने में अधिकृत सेंटर से ज़रूर चेक कराएं। इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट का स्तर हमेशा बनाए रखें। वाहन में छोटा अग्निशमन यंत्र ज़रूर रखें। अगर सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार, रायपुर का आज का सफ़र बस यहीं तक। अब हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी को सौम्या रिस्वी का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
3: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
5: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद

0: की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
3: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
2: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
5: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई।

0: जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम बाल वाटिका।

0: बच्चों
1: जय हिंद।
2: बाल वाटिका कार्यक्रम के अगोरा करैया जम्मो नान्हे संगवारी मन के स्वागत है आज के हमर कार्यक्रम मा। औ आज आप मन ले मिले बर आए हो मैं आप मन के भैया गजानन साहू। नान्हे संगी हो, अभी तक जानकारी के हिसाब ले हमर धरती धाई मने पृथ्वी हा दुनिया के एकमात्र जगह हरे जिहा मनखे मन बर रहे के सही वातावरण है। फिर आज के बेरा मा विकास और बाढ़त जनसंख्या के सेती अनेक प्रकार ले ए धरती ऊपर आघात करे जात है। लोगन मन के रहे बर होए या औद्योगिकीकरण बर होए ए धरती के लाखों करोड़ों रुख रईला काट दिए जाते। एकर ले बस जंगल ला क्षति नहीं होए, एकर संग पशु पक्षी मन के प्राकृतिक आवास ह उरकत हे, पर्यावरण ह असंतुलित होत हे। धरती दाई के गोद मा गड़े खनिज संपदा मन के लालच मा प्रकृति ऊपर अन्याय करे जाते। आज के बेरा मा लोगन मन ह ज्यादा ले ज्यादा संसाधन मन के उपयोग करे के चक्कर मा धरती ऊपर बार बार आघात करत हे। फिर लोगन मन के समझना जरूरी है कि ये संसाधन मन ह सीमित मात्रा में है, एक न एक दिन यह उरक जही। ता एकर बर धरती के वातावरण ला खराब करना अच्छा बात नहीं है। मानवीय गतिविधि मन ह पृथ्वी के वातावरण और जलवायु परिस्थिति मन ला बहुत बुरी तरह ले प्रभावित करत है। एकर प्रभाव इतना हावे कि ऋतु के क्रम ह बदलत है, मानसून में देरी हो जाते, असहनीय गर्मी होते और ग्लेशियर ह पिघलत है, समुद्र के स्तर ह घलो परिवर्तित हुआ थे। ये सब कारण मन के सेती धरती में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण और पर्यावरण में असंतुलन बढ़त है। ये सब बात ला देखत धरती ला बचाना बहुत जरूरी हो गए है। एकर बर धरती के जम्मो लोगन मन ला जूर मिल के धरती ला संवारे बर पड़ी। ता नान्हे संगी हो, ए हमर संगवारी मन हा पर्यावरण ला बचाए बर और धरती ला संवारे बर का कहा थे तेला सुनथन ये गीत मा।

0: राम नारायण ध्रुव और संगी मन के आवाज मा अभी हमन सुनत रहन गीत चल धरती ला संवार। फिर अब आगू बढ़बोन क्रम यहू ला जानव कोती, जेमे आज हमन हा डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी ले जानबोन भारत मा रेलवे के अनोखा संसार के बारे मा।
1: कार्यक्रम सुनैया सब्बो लइका मन ला संगवारी मन ला जय हिंद जय जोहार। संगवारी हो, आज के कार्यक्रम में जे विषय में चर्चा करबो वो विषय अपन आप में बहुत रोचक और जिज्ञासु हवे। आज के हमर चर्चा के विषय है भारत में रेलवे के अनोखा संसार। जैसे कि स्पष्ट है, रेल शब्द सुनते ही हमर दिमाग में रेलगाड़ी यानी लोह पथ गामनी के चित्र आ जाते हैं। लंबा वाहन जेमा डब्बा और डब्बा में यात्री मन के सबो व्यवस्था, ओकर आराम बर, ओकर बिजली बर, पंखा बर, शौचालय, सब प्रकार के प्रबंध जो है रेलवे विभाग के द्वारा करे जाते। हमर बचपन में जब हमन खेल खेलन तो आप ला याद हो ही, रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक, रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक करके हमर रहा है गायन रहा है। भले हम रेलगाड़ी लो समय में देखे रहे हो वो या नहीं देखे रहे हो वो, लेकिन रेल के प्रति हमर मन में वो बात रहा है। लेकिन कभी ये सोच के देखे हो संगवारी हो कि रेल के विकास क्रमिक रूप से कैसे कैसे और कौन कौन समय में हो रही सोही? एकाएक वाहन तैयार नहीं हो रही से, ये वाहन ला तैयार करे बर बहुत कुछ करे गे रही से, विधा ला बहुत आगे बढ़ाए बर बहुत काम करे गे रही से। पूरा विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करन तो विशेषकर यूरोप के देश में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक मन हुई जे मन सन 1600 ईस्वी के आसपास एक ऐसे वाहन तैयार करे बर प्रयासरत रहिन जेमा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा माल ला ढुलाई करे जा सके और परिवहन करे जा सके, ताकि संपदा ज़्यादा से ज़्यादा शोषण और दोहन हो सके। विश्व में इंग्लैंड में ही प्रथम बार ये प्रयास करे गिरी से, यूरोपीय देश मन में ही ये प्रयास करे गिरी से, तो एकर सेती एकर जननी घलो यूरोपीय देश मन ला माने जाते। ओकर पूर्ति पर जे आविष्कार हुई सोला हम आज रेलगाड़ी के रूप में भली प्रकार से हमन जानथन और समझथन। पूरी तरह से याद करे जाए तो सन 1604 में जब प्रथम बार विश्व में रेलगाड़ी ला आकार दे के बात करे गे रही थे, तब रेल के पटरी हा लकड़ी के बनाए जाए और लकड़ी के पटरी में सामने में इंजन के भांति डब्बा रख के वो इंजन ला घोड़ा के माध्यम से खींचे जात रही से। तो रेलगाड़ी के

तक यूरोपीय देश इंग्लैंड के जॉर्ज स्टीपन नामक एक इंजीनियर ला माने जाते। ओकर द्वारा पहली बार स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में रेल चलाए गए रही से। पहली बार जब रेलगाड़ी चलाए गए रही से तेमा 38 डब्बा रहा है और 38 डब्बा में 600 यात्री मन के बैठे के पूरा सुविधा बनाए गए रही से। वो रेलगाड़ी के नाम लोकोमोशन नंबर 1 दे गए रही से। उमें भाप के माध्यम से इंजन चालू हुए और एकर उद्देश्य जनता के परिवहन साधन रहा है। ये रेलगाड़ी के ओकर गति है 15 मील प्रति घंटा के हिसाब से दौड़े। ये रेलगाड़ी के इंजन ल गति दे बर घोड़ा के माध्यम से भी सहायता ले यात्री से। ये प्रदर्शन ल देखे बर वो समय में हजारों आदमी मन खड़े रहें और देखें और समय के साक्षी बने। जहाँ तक बात करे जाए भारतीय रेलवे प्रणाली के माध्यम से, तो येमा सन 1850 के समय में हमर देश में जब गुलाम रहें हमन है, तब यहाँ के गवर्नर जनरल जेकर नाम लाल डलहौजी रही से, वो समय रेल के क्रमिक विकास करे बर बहुत अकन अपन योगदान दीस। हमर देश में प्रथम बार रेल के पटरी दक्षिण भारत में चेन्नई में बिछाए गए रही से। एकर उद्देश्य व्यापार परिवहन ही रही से। आज से 166 साल पहली 18 अप्रैल 1853 में प्रथम बार भारतवर्ष में रेल हमर मुंबई शहर से लेकर थाने के बीच में चलाए गए रही से। और वो रेलगाड़ी का नाम ला दक्खन क्वीन रखे गए रही से। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलगाड़ी ला चलाए बर 3 इंजन के सहायता ले जाए, जिनमें पहला इंजन ला साहब कहा है, दूसरा इंजन ला सुल्तान कहा है और तीसरा इंजन ला सिंध कहे गए। ये रेल के इंजन मन ला इंग्लैंड से यहाँ मंगवाए गए रही से। ये रेल 57 मिनट तक चलाए गए रही से और 34 किलोमीटर के यात्रा ये रेल के माध्यम से करे गए रही से। ये नवा नवा निर्मित रेल में 14 डब्बा रहा है, जिनमें 400 आदमी मन के बैठे के क्षमता रही से और 400 आदमी वो समय में बैठे घलो रीन हैं। इस प्रकार भारत में शासन करे या अंग्रेज अधिकारी मन है 1832 सन में रेलगाड़ी के भारत में असीम संभावना देखते हुए रेल के काम ला शुरू करे के प्रयास ला पूरा करीन। पहली रेलगाड़ी के प्रणाली विकसित नहीं रहा है, तेकर वजह से ओकर चलन और संचालन में बहुत चुनौती रहा है। अभी के समय जो है आधुनिकतम तकनीकी के समय है, एकर वजह से ओमें सुधार आ चुके हैं। वो समय में अशिक्षित भारतीय जनता मन ये सब देख के बड़ा अचंभित हो जाए। उमल लागे कि ये कैसे कैसे कल पुर्जा के जमाना आगे, कल के युग आगे, कल युग आगे ऐसे कहा है। ओकर मोल ऐसे लगे कि ये परिवहन साधन बन जाही तो बहुत अकन जंगल के विनाश होही। घोड़ा गाड़ी वो समय में चले, वो समय में बैला गाड़ी चले, वो समय में पैदल चले। जिन मन गरीब आदमी रहें ते मन अपन सर के ऊपर ही सामान रख के, भारी सामान रख के पैदल पैदल ही कतको दूरी ले तय कर ले। ये समस्या देखत हुए सन 1769 में फ्रांसिस सेना में निकोलस नामक एक इंजीनियर रहा है, ते प्रथम बार भाप से चले वाला 3 पहिया वाहन बनीस। वो 3 पहिया वाहन है आवाज़ घलो ज़्यादा होए, शोर घलो ज़्यादा होए और साथ में प्रदूषण घलो प्रभावित होती से। तेला ध्यान में रखत हुए ओकर 3 चखिया गाड़ी लही आने वाला दिन में रेलगाड़ी के रूप देगीस। ऐसे ही सन 1801 में रिचर्ड्स नाम के एक इंजीनियर है भाप में चलैया इंजन बना रही से, तेमा चिमनी लगे रहा है ताकि वो चिमनी के माध्यम से प्रदूषण लोग ऊपर आसमान में पहुँचाया जा सके। ये थोड़ा सा रेलगाड़ी है थोड़ा सुविधाजनक जरूर हो गए, लेकिन ये गाड़ी में आवाज़ बहुत जोर से होए, तेकर सेती वो समय के जे जनता शिक्षित जनता रहा है हमारे भारतवर्ष में तेमन इला शैतान गाड़ी का है। प्रथम बार रेलगाड़ी पर लोहा के पटरी 21 फरवरी 1804 से बिछाए के शुरू करे गे रही से। किसान मन है आम जनता मन है सोचे कि हमन जे सफर ला जे दूरी ला हमन कतको दिनों बाद हमन तय करथन, ते सफर है वो दूरी है बहुत जल्दी और अल्पकाल में तय हो जात है। इसी प्रकार 1897 में 4 सिलेंडर वाला डीजल इंजन बनाएगी। सन 1912 में हमार देश में डीजल इंजन के संचालन घलो शुरू हो गए। भारत में उपयोग हो या रेलगाड़ी के सब सामान मतलब इन्हें बनाए जाए, स्वदेशी ही बनाए जाए कहके घलो मांग उठीस। और वो मांग में विचार करत हुए थोड़ा सोला क्रियान्वयन घलो करेगीस, वो अपनाए घलो गीस। वर्तमान समय में यदि भारतवर्ष में रेलवे के बारे में विचार करे जाए तो हमन जानथन कि आज भारतीय रेल सेवा एक बहुत बड़े उपक्रम बन चुके हैं। पूरा विश्व में आज भारत देश में जो रेलवे की स्थिति है वह 4 नंबर में है। यानी हम कह सकथन कि भारत रेलवे विकास में 4 नंबर के दर्जा रखते, जे हमर प्रत्येक भारतवासी पर गर्व।

0: के बात है। प्रतिदिन हमर देश में लगभग 2 करोड़ आदमी मन है रेल के द्वारा सफ़र करते हैं, चाहे ऑफिस जाए बर, चाहे सफ़र करे बर, चाहे यात्रा करे बर, चाहे देश विदेश आए जाए बर, बराबर सुचारू रूप से रेल सेवा ला लेते हैं। हमर रेल सेवा में पूरा भारतवर्ष में 15 लाख कर्मचारी और अधिकारी दिन रात मेहनत करके हमर और आपके सबके यात्रा ला सुगम बनात हैं और ओकर परिवहन के संचार के साधन ला भी बहुत आगे बढ़ाते हैं। रेल सेवा का एक बाद हमर भारतवर्ष में समय के बर्बादी में बहुत बचत हुई, ज़्यादा समय नहीं लागे, लंबा से लंबा दूरी तय करे जा सकते, परिवहन एक छोर के सामान ला दूसरा छोर पहुँचाए में घलो ज़्यादा समय नहीं लागत है। ये तरह से सोचन संगवारी हो तो रेल के विकास हमर बर बहुत सार्थक हो है। आज़ाद भारत में जब रियासत मन ला एक्के में मिलाएगी, सब ला संघेरेगी, वो समय में भारतीय एकता ला उच्च माध्यम से एके डोर में बांधे में रेलवे सेवा के बहुत बड़े योगदान माने जा सकते। काबर वो समय में छुआछूत ऊंच नीच के जो भावना रही से जे है जनता ला एक साथ एक वाहन में बिठा के बहुत हद तक के ला कम कर देगी, जे हमर बर एक लाभकारी विषय हो सकत थे। सन 1950 में भारतीय स्वदेशी रेलगाड़ी बनाए जाए ऐसे करके मांग उठी। ये मांग ला पूरा करते हुए चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना घलो करेगी। 1960 के बाद भारत के प्रत्येक क्षेत्र में चलैया रेलगाड़ी मन ला भाप के इंजन के साथ साथ डीजल इंजन में भी चलाएगी। भारतीय रेल विभाग दिनों दिन बहुत विकास करत है, बहुत आगे बढ़त है। जैसे कि उदाहरण है हमारे पास, साल 1986 में प्रथम बार कंप्यूटर ला साथ लेके कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली लागू करेगी। तेकर चलते लंबा लाइन लगा के आरक्षण कराना या जनता के समय के अपव्यय से बचे जा सकत रही से, ये साधन हमारे पर बहुत ज़्यादा जरूरी रही से और आज एक लाभ देश के प्रत्येक जनता लेवत है। साल 1998 में भारत के दूरस्थ क्षेत्र पश्चिम घाट के क्षेत्र कोंकण गोवा के क्षेत्र में जी हाँ रेल लाइन के बिछाना और रेल के सेवा लेना एक सपना के समान रही से, ओला काम लगलो बहुत ज़्यादा अच्छा से पूरा कर लेगी। आज भारतीय कोंकण गोवा रेलवे लाइन बहुत अच्छा उपक्रम के रूप में काम करत है और दुर्गम क्षेत्र में घलो परिवहन और संचार ला बहुत आगे बढ़ात है। हमर देश में सन 1984 में प्रथम बार भूमिगत रेल चलाएगी, मेट्रो सेवा चलाएगी, जे कलकत्ता में लागू करेगी रही से। आज भारतवर्ष में बहुत अकन स्थान पे मेट्रो के साथ ले जाते और समय और व्यवस्था ला सुचारू करे जाते, जेकर से स्थान के घलो अभाव ला खत्म कर दे जाते। सन 2019 में पहली बार स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाएगी, जे 160 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज गति से चलते, जेकर से समय की भी बहुत बहुत बचत होते। समय समय में रेल के विकास में बहुत काम करेगी। नमो भारत नामक विकसित व्यवस्था चलाएगी। रेलवे विभाग के विद्युतीकरण में सोचे जाए तो 100% काम अभी पूर्ण हो चुके हैं। चौड़ा रेल लाइन बनाए गए हैं। चौड़ा रेल लाइन के मतलब जिला हमन ब्रॉड गेज कथन, जेकर चले से जेकर बनाए से गति है रेलवे के बहुत ज़्यादा बढ़ गए है और समय बहुत ज़्यादा घट गए है। रेलवे स्टेशन मन में एकदम आधुनिकतम तकनीकी के उपयोग होते। हमला दैनिक अपन जीवन में जितका भी दैनिक उपयोग के चीज है जे मन हमला घर में या अपन व्यवस्था में मिलते, उस सब चीज ला सुचारू रूप से रेलवे सेवा के द्वारा सामने जनता पर लाए जाते। सर्व सुविधा युक्त स्टेशन बनाए जाते औ तो औ दुर्घटना हो जाते रेलवे के, तेकर से बचे बर हमर भारत वर्ष में हमर भारत हिंदुस्तानी भाई के द्वारा कवच रेल के भी निर्माण करे जाते। आज हम पाथन कि हमर रेलवे है बहुत ज़्यादा विकास कर चुके, हमारे देश विकास करते थे ते में एक बहुत बड़े योगदान हमारे भारतीय रेलवे के है। जय जोहार संगवारी हो, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: नान्हे संगी हो, डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी जी हा बड़ सुघर ढंग ले हमारे भारत देश मा रेलवे के विकास के बारे में बतात रहिन। फिर काली हरे विश्व पर्यावरण दिवस जेकर उपलक्ष्य मा आज हमार बालवाटिका कार्यक्रम में एक ठन विशेष कार्यक्रम के प्रसारण होने वाला है, जेमे सावित्री बाई फूले स्कूल डंगनिया के लइका मन प्रस्तुति दी ही। ता चलो एक कार्यक्रम के मजा ले लेथन।

0: नूपुर, जय जोहार।
1: जय जोहार। जय जोहार तो हो गए, फिर देखा था कत्ते हवा चला थे।
0: अत्ते हवा तो चला थे, फिर देखा था यहाँ दे जम्मो धुर्रा उड़ा उड़ा के मोर आँखी में पड़े थे, और जम्मो प्लास्टिक के झिल्ली आके मोर मुँह में पड़े थे।
1: धुर्रा कचड़ा ला छोड़, फिर मैं एक ठक जनौला पूछा था तेला बताहू।
2: हाँ हाँ पूछ पूछ।
1: न रंग है न रूप है, फिर भी मैं सबके जिंदगी भर जरूरी हूँ, बताओ बताओ का है।
3: ऐसे कोई जीनी सोचेगा जगह रंग न रहे न रूप न रहे?
1: हाँ हाँ होते ना, यही तो आए जनौला।
4: ए अत्तेक सुख घर हवा चला थे, यही तो आए कर उत्तर हवा।
1: हाँ हाँ नेहा, ते तो जान डरे।
0: नूपुर ते तो जनौला पूछ डरे, फिर एक ठन जनौला महू पूछा का तुमन बता डर हो।
2: हाँ हाँ पूछ पूछ।
0: हरा हाँ भरा हाँ सब ला छाव देता और पानी ला बुलाता, बताओ बताओ मैं का हरा।
1: हाँ हाँ मुला पता है एकर उत्तर, हरा हाँ भरा हाँ फिर मैं सब ला छाव देता, एकर उत्तर आए पेड़।
0: हाँ हाँ तुमन तो जान डरे हो।
3: दीदी देखो तुमन पेड़ के कोट कर रहे तो देखो वो बर के पाना कैसे हालत है।
1: देखो तो संगवारी हो, बर बाबा हा कैसे खासा थे, चलो चलो जाबो ओकर कना।
0: हाँ हाँ चलो चलो।
1: बर बाबा ते कैसे खासा थस?
4: ए अत्तेक सुग्घर हवा चला थे, फिर तुहर फेकाय कचरा मोरे चुपर पर थे, तेकर सेती तुम्हार तबियत खराब हो थे। मोर जम्मो संगवारी रूख राई मल्ला काट डरे हो, तभे तो मैं अकेला खड़े हो, न तहू मन नहीं आओ, मोबाइल और टीवी देखत रही था, न चिरई चिरगुन मन नहीं आए, ओकर मन बर दाना पानी नहीं है।
1: बाबा तोर दाना पानी के गोट ला सुन के महुला अब्बड़ प्यास लागा थी, फेरे तरिया के पानी तो अब्बड़ गंदा है, इमा जम्मो कचरा और प्लास्टिक मन फेंकाए है।
4: तू हिच मन तो करे हो एला।
3: मैं हरा प्लास्टिक राक्षस।
1: यह प्लास्टिक राक्षस तत्तेक ताकतवर कैसे बनेस?
3: तू ही मैं तो बोला अत्यक उपयोग करे हो, एटी ओटी चार कोटी तुम्हें मोला बगरा देता, और दिन ज्यादा दूरिया नहीं है जब मैं तुहर मन के भविष्य ला खत्म कर दू, दरिया ला भर दू, नाली ला भर दू, एटी ओटी चार कोटी पूरा करिया धुआं फैला दू।
1: तोला पैदा हम ही मन करे हंता, तोला खत्म भी हम ही मन करबो।
3: महू देखो तुमन कैसे मोला खत्म करता,
1: बतावो कैसे करथन?
3: बता बता।
1: हमन हा जेन प्लास्टिक के झिल्ली उपयोग करथन ना, तेकर जगह हमन हा कपड़ा के झोला बना के उपयोग करबो।
0: और हमन हा जेन प्लास्टिक के दोना पत्तल के उपयोग करथन ना, तेकर जगह पान के पत्ता के उपयोग करबो।
5: हमन प्लास्टिक के डब्बा के जगह घर के सुग्घर बर्तन ला उपयोग करबो।
3: अरे एमन तो जागरूक हो गए, मोला तो भागे लागी, भागो भागो भागो भागो।
0: और बर बाबा ते चिंता जान कर, हमन तो राजू बाजू पेड़ लगाबो और धरती ला हरा भरा बनाबो।
1: तोर सुख दुख के संगवारी चिरई चुरगुन मन ला घलो पानी देबो,
5: पानी के हर बूंद बचाबो।
4: हाँ हाँ सुग्घर काम में देरी झन करो।
3: ई बात में एक थक चुटकुला सुना था। एक झन डॉक्टर ही थे, डॉक्टर करे एक झन दाई गेरी थे। डॉक्टर पूछे का हो गए दाई की, दाई बोली से मोर दो झन लड़का है, एक झन के नाम और एक झन के नाम ए, तब पहला बुलाता होता आते और ला बुलाता होता आते। तो डॉक्टर बोली थे के नाम पर रख दे और के नाम दे रख दे, दे मोर 500 रुपया।
0: हंसी मजाक तो हो गए, फिर पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में मैं आप मल्ला एक कहानी सुनाना चाहत हूँ।
1: हाँ हाँ सुना सुना, पर्यावरण के बारे में तो सब ला बोलना बंद थे।
0: मोर कहानी के विषय पर्यावरण काखरो एक के जिम्मेदारी नो हरे। एक समय के बात है, एक झन सियान हा ठाढ़े घाम में आमा के पेड़ लगात रही से, उही जग ले नानकुन लइका जात रही से। ओ लइका सियान ल देखते और सोचते

0: ए बाबा अत्ते ठाढ़े घाम में का करे थे? तहाने ओ सोचते कि मैं बाबा करा जाके पूछता कि बाबा का करे थे। ओ लइका हा बाबा करा जाते और बाबा ला पूछते, बाबा ते अत्ते सियान हो गए हस और ते घाम में ते का करत हस? बाबा कहते, हाँ बेटा मैं सियान तो हो गए हाँ, फिर पेड़ में हाँ आमा के लगात हूँ। तहन नानकुन लइका पूछते, बाबा ते सियान अत्ते हो गए हस और पेड़ ते हाँ आमा के लगात हस? जब तक ए पेड़ के फले फूले के दिन आही तब तक तो तोर दाँत नहीं रही, दाँत रही धुन नहीं रही का पता। तो बाबा कहते, हाँ बेटा ओ समय मोर दाँत रही धुन नहीं रही कौन जानी। फिर मैं ये पेड़ ला तुहर मन बल लगात हूँ, जैसे जैसे तू मन बाढ़त जाहू तैसे तैसे पेड़ बाढ़त जाही, पेड़ है जैसे जैसे बाढ़ी तैसे तैसे फल ही फूल ही और आए जाए वाले इंसान किसान और जानवर मन ला छाया दीही, और जैसे जैसे फल ही फूल ही तेकर एकर फल मन ला तुमन खाहू, तो तुमन जैसे जैसे फल ला खाऊ तो मोला सुरता करहू। तो ये कहानी ले हमन ला ये सीख मिलते कि पर्यावरण संरक्षण काकरो एक की जिम्मेदारी नो हरे, हम जम्मो जन की जिम्मेदारी हरे।
1: हाँ सताक्षी, कहानी तो हो गए, फिर एक ठन गाना सुने के मन करत है।
0: हाँ हाँ जम्मो जन मिल के गाथन
2: धरती।

0: बोलो छत्तीसगढ़ माता की
1: जय।
2: संगवारी हो अभी आप मन सुने हो नाटक पेड़ और प्लास्टिक राक्षस जेमा बरगद पेड़ बने रहीस नेहा हा और प्लास्टिक राक्षस बने रहीस सूर्यांश हा। लैका मन के भूमिका निभाए रहीन नूपुर डुबीना और सताक्षी हा। ये नाटक के माध्यम ले हमन जानें कि कैसे जागरूकता ले हमन हा पर्यावरण ला दूषित होए ले बचा सकथन संगे संग पर्यावरण के कैसे संगवारी बन सकथन। अब जम्मो कार्यक्रम तो हो गए फिर आवो हमन जम्मो झन हाथ उठा के शपथ लेथन धरती मैया के सम्मान करबो
1: धरती मैया के सम्मान करबो
2: हर साल कम से कम एक पेड़ लगाबो
1: हर साल कम से कम एक पेड़ लगाबो
2: पानी के फिजूल खर्ची नहीं करबो
1: पानी के फिजूल खर्ची नहीं करबो
2: चिरई और जीव जानवर मन बर दाना पानी रखबो
1: चिरई और जीव जानवर मन बर दाना पानी रखबो
2: स्वच्छ और हरियर पर्यावरण बनाबो
1: स्वच्छ और हरियर पर्यावरण बनाबो
2: प्लास्टिक के उपयोग कम करबो
1: प्लास्टिक के उपयोग कम करबो
2: स्वच्छ और हरियर पर्यावरण बनाबो
1: स्वच्छ और हरियर पर्यावरण बनाबो
2: जय जोहार।
3: संगी हो अभी हमन हा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुनत रहें जेमे सावित्री बाई फुले स्कूल डंगनिया के लइका मन हा बड़ सुघर ढंग ले प्रस्तुति दिन ता ये कार्यक्रम हा आप मन ला कैसे लागी तेला चिट्ठी में जरूर बताऊ। फिर एक रे संग आज के हमार कार्यक्रम हा सिरावत आवे ता देवव अपन भैया गजानन साहू ला विदा
4: बच्चों
1: जय।

ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल वाटिका। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे कार्यक्रम प्रगति के सोपान में लीजिए सुनिए प्रधानमंत्री विकसित भारत

0: रोजगार सृजन कार्यक्रम पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन अधिकारी श्री गोपाल देवांगन से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है रमा शंकर।
1: श्रोताओं नमस्कार,
2: प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: श्रोताओं, देश के युवा जब अच्छी शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस उनका नौकरी की तरफ होता है। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए अपने लिए मार्ग तैयार करते हैं। जो बच्चे हैं उन्हें कई चरणों से गुजरना पड़ता है और उसके बाद उनके एक सुरक्षित भविष्य का मार्ग तय होता है। और श्रोताओं, जब सुरक्षित भविष्य की बात करते हैं तो इसमें बहुत आवश्यक है कि इनके लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो प्रदान किए जाते हैं। और श्रोताओं, भारत सरकार भी इसके लिए काफी प्रतिबद्ध दिखाई देती है क्योंकि कई योजनाएं इससे जुड़ी हुई संचालित की जा रही हैं। इसी तरह की एक योजना है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसके अंतर्गत युवाओं को इसके लाभ दिलाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। तो श्रोताओं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं गोपाल देवांगन जी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर में प्रवर्तन अधिकारी हैं। तो गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी शुरुआत कब की गई?
3: देखिए, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी रोजगार योजना है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा 99,446 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है और जिसका मुख्य लक्ष्य आगामी 2 वर्षों में देश के भीतर 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियों का सृजन करना है।
1: जी, तो गोपाल जी, जैसा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की बात हो रही, तो हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि इस योजना की मुख्य बातें और इस योजना के क्या लाभ हैं।
3: बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। यह योजना मुख्य रूप से 2 भागों में बटी हुई है। यह योजना नए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है, जिसमें जो पहली बार नौकरी पा रहे हैं युवा, उनके लिए ये जो है एक ऐसा अवसर है जिसको हम सुनहरा अवसर कह सकते हैं, जिसमें ₹15,000 तक की जो सैलरी पाने वाले हैं उनको निजी क्षेत्र या औपचारिक कार्यबल क्षेत्र जिसको कह सकते हैं, उसमें पहली बार जो नौकरी प्राप्त कर रहे हैं उनको 1 महीने के EPF वेतन के बराबर सहायता राशि मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा जो है ₹15,000 है। और यह राशि जो है 2 किस्तों में भुगतान की जाएगी, जो सीधे कर्मचारी के खाते में ट्रांसफर होगी DBT के माध्यम से। पहली किस्त जो मिलेगी वो उनके लगातार 6 महीने की नौकरी पूरी होने पर मिलेगी, और जिसको हम 7,500 रुपये कह सकते हैं। और दूसरी किस्त जो है 12 महीने की नौकरी के बाद और एक आवश्यक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद मिलेगी। बचत की आदत को डालने के लिए इस किस्त को एक निश्चित समय के बाद सेविंग अकाउंट या FD में रखा जाता है। एक बात और बताना चाहेंगे कि इस लाभ के लिए कर्मचारी का मासिक वेतन 1,00,000 रुपये से कम होना चाहिए और उसका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पहली बार रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके अलावा नियोक्ताओं के लिए जो प्रोत्साहन है वो अधिकतम 3,000 रुपये की राशि जो है वो निर्धारित की गई है, जो कि प्रत्येक नए कर्मचारी पर रोजगार देने के कारण उनको जो है प्रोत्साहन स्वरूप जो है प्राप्त होगी। और आपको एक बात और बता दें कि यह अवधि जो है सामान्यतः 2 वर्ष को लिया है, लेकिन जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पे इसे बढ़ाकर 4 वर्ष के लिए किया गया है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो गोपाल जी, इस योजना को कौन और कैसे संचालित करता है?
3: जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। यह योजना पूर्ण रूप से केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन जो है और इसे जमीनी स्तर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से लागू किया जा रहा है। योजना के पारदर्शी संचालन के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आधिकारिक तौर पर पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पे कंपनियां और कर्मचारी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कर्मचारी नौकरी ज्वाइन करते समय उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के जरिए अपना UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट कर

0: नियोक्ता को सौंप सकते हैं।
1: तो गोपाल जी, जब प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की बात होती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, कर्मचारियों के लिए इसकी पात्रता की क्या मुख्य शर्तें होती हैं?
0: जी, जो पहली बार ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आए हैं, अर्थात जो कर्मचारी पहली बार आए हैं, और कर्मचारी को फर्स्ट टाइमर होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि 1 अगस्त 2025 से पहले वह कभी भी ईपीएफओ में या किसी छूट प्राप्त पीएफ के ट्रस्ट में योगदान देने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए। उसका पहला यूएन और पीएफ खाता इसी योजना के दौरान जो है खुलना चाहिए। इसमें नौकरी की जो समय सीमा है उसके बारे में भी हम आपको बता दें कि इसकी जो समय सीमा है 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच में होनी चाहिए। इसमें इनका जो मासिक वेतन है ग्रॉस 1 लाख रुपये तक या उससे कम होना चाहिए। 1 लाख रुपए से अधिक वेतन वाले कर्मचारी इस लाभ के हकदार नहीं हैं। और जहां तक कार्यस्थल की पात्रता की हम बात करें तो कर्मचारी जिस कंपनी, फैक्ट्री या संस्थान में काम कर रहा है वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके अलावा नियोक्ता अर्थात एम्प्लॉयर जो है कर्मचारी का मासिक पीएफ रिटर्न, जिसको हम ACR कहते हैं, और अंशदान रेगुलर रूप से उसमें जमा होना जानी चाहिए। कुछ अनिवार्य शर्तें भी हैं इसमें, जिसमें लगातार 6 महीने की नौकरी कर्मचारी की होनी चाहिए। जो पहली किस्त जो होगी वो 7,500 रुपये जो है उसी संस्थान में लगातार 6 महीने की नौकरी के बाद, जब वो 6 महीने की नौकरी कर लेगा तो उसको पहली किस्त जो 7,500 रुपये है वो प्राप्त होगी। और दूसरी किस्त के लिए जो है उसको एक फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स करना पड़ेगा, जो कि वहाँ पर ऑनलाइन उसके मेम्बर पोर्टल पर उपलब्ध होगा। और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि ये लाभ की राशि जो है कर्मचारी के सीधे खाते में आएगी, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से प्राप्त होगी।
1: जी गोपाल जी, तो इसमें नियोक्ताओं के लिए तय की गई पात्रता की शर्तें और नियम क्या हैं?
0: जी, अभी हम बात करेंगे नियोक्ताओं के बारे में। तो इनका सबसे पहले तो यह है कि कंपनी या प्रतिष्ठान का जो है EPF और MP Act 1952 के तहत जो है रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसमें सामान्य कंपनियों के साथ साथ जो PF से जो छूट प्राप्त संस्थान हैं वो भी शामिल हैं। और इसके अलावा जो है नियोक्ता का रेगुलर रूप से इलेक्ट्रॉनिक चालान कम ECR, जिसको हम ECR सामान्य तौर पे कहते हैं, उसमें कंटिन्यू जो है PF का अंशदान जमा करना जरूरी है। उसके अलावा जो कंपनियां हैं, जो नियोक्ता हैं, उनका GST नंबर और पैन नंबर जो है बैंक से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं नए रोजगार सीजन के बारे में। तो कंपनियों को लाभ तभी मिलेगा जब वो अपने पुराने जो वर्कफोर्स है, बेसलाइन है, उससे जो अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां हैं, उन्हें कम से कम जो है 2 नए कर्मचारी जोड़ने पड़ेंगे। 50 या उससे अधिक जो कर्मचारी हैं उनके लिए कम से कम जो है 5 कर्मचारी जो है वो जोड़ने पड़ेंगे। और ये बेसलाइन की गणना जो है 1 अगस्त 2025 के पहले के 12 महीनों में कंपनी के कर्मचारियों की औसत संख्या के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा जो नए कर्मचारी आएंगे उनकी योग्यता के बारे में भी आपको बता देते हैं। कंपनी जिन नए कर्मचारियों को काम पर रख रही है उसके लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं। वो पहली बार जो नौकरी करने वाले हैं, फर्स्ट टाइमर्स जो हैं, या ये जो दोबारा जो काम पे लौटने वाले, अर्थात जिसको रीज्वाइनी भी कहते हैं, वो भी हो सकते हैं, इनका जो मासिक सकल वेतन है या अर्थात जो ग्रॉस सैलरी है वो ₹1 लाख या उससे जो है कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो मुख्य शर्त ये है कि उन्हें 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नौकरी पे जो है वो रखा गया हो, और कर्मचारी जो है कंपनी में लगातार कम से कम 6 महीने की नौकरी पूरी करें। और उनके जो लाभ प्राप्त होने वाले हैं उनके बारे में हम आपको बता दें कि पात्र नियोक्ताओं को सरकार की तरफ से प्रत्येक पात्र नए कर्मचारी के लिए ₹3,000 अधिकतम जो है उनकी जो प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हम बात करें तो ये लाभ जो है अधिकतम 4 वर्ष के लिए है, और जो दूसरे क्षेत्र हैं उनके लिए यह 2 साल का है। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं अर्थात जो नियोक्ता हैं वो सीधे PMVBRY का जो आधिकारिक पोर्टल है या EPF का जो पोर्टल है उसके माध्यम से ये पंजीकरण कर सकते हैं।
1: जी जी, तो गोपाल जी इसमें जब हम देखें तो कर्मचारियों को लाभ कैसे मिलेगा?
0: जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर आपने। इसका इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं ताकि अधिक से अधिक जो जानकारी है वो इसके माध्यम से पहुंच सके। कर्मचारियों को सीधे उनके जो बैंक खाते हैं उसमें 15,000 रुपये तक का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है। तो पहला जो स्टेप वो ये है कि उमंग ऐप पर इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अर्थात सबसे पहले कर्मचारियों को अपने मोबाइल में उमंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप के भीतर PMVBRY सेवा में जाकर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करनी पड़ेगी और अपना UN नंबर जनरेट या लिंक करना होगा, इसके बिना लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा जो स्टेप है वो आधार से जुड़ा बैंक खाता है। प्रत्येक कर्मचारी का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से अर्थात आधार नंबर से अनिवार्य रूप से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सरकार DBT के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में जो है वो बैंक में पैसे भेजेगी। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 महीने की लगातार नौकरी होनी चाहिए और नियोक्ता द्वारा जो है PF रिटर्न ECR दाखिल करने के बाद पहली किस्त के रूप में 6 महीने की अवधि के बाद 7,500 रुपये की राशि सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए उनको जो है 12 महीने की नौकरी पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा उनको एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वित्तीय साक्षरता कोर्स करना होगा। उसके बाद जो है दूसरी किस्त की राशि जो कि अधिकतम 7,500 रुपये होगी वो जारी की जाएगी। इसे सामान्यतः बचत को बढ़ावा देने के लिए एक निश्चित समय के लिए FD के रूप में सुरक्षित रख दिया जाएगा।
1: जी, तो गोपाल जी अभी हमने बात की कर्मचारियों को कैसे लाभ मिलेगा, तो इसका एक दूसरा पहलू होगा कि नियोक्ताओं को लाभ कैसे मिल सकता है?
0: जी जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, नियोक्ताओं को लाभ कैसे मिलेगा इसके लिए कुछ स्टेप्स रखे गए हैं। पहला स्टेप ये है कि एम्प्लॉयर पोर्टल पर इनको अलग से कोई नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। वे वर्तमान में जो अपना एम्प्लॉयर्स पोर्टल है उसे पे ही लॉगिन कर सकते हैं। और फिर सेकंड स्टेप के रूप में हम देखें तो इनको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के Part B में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहाँ पर इनको अपने संस्थान का पैन नंबर, GST नंबर और पैन से जुड़ा लिंक बैंक खाता नंबर और IFSC कोड कर दर्ज करके इसको 1 time जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका बेसलाइन जो है वो हमारा पोर्टल जो है प्रदर्शित करेगा। नियोक्ता को इसमें जो है चेक करके इसे फिर से सबमिट करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है बेसलाइन से अधिक जो है कर्मचारियों क्यों नियुक्ति करनी पड़ेगी, अर्थात जैसे 50 से कम कर्मचारी हैं तो उनको 2 नए कर्मचारियों की नियुक्ति 2 वर्ष के भीतर में करनी पड़ेगी। और अगर 50 से अधिक कर्मचारी हैं तो कम से कम न्यूनतम जो है 5 कर्मचारियों की नियुक्ति उनको इन 2 वर्षों के भीतर में करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि हर महीने पर उनको समय पर ECR जो है वो दाखिल करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है पूरी तरह से ये सेवा जो है ऑनलाइन है और पारदर्शी है।
1: तो ये बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। और गोपाल जी, जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है ये हमारे युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे देश के युवा इस योजना का लाभ लेकर एक सशक्त भारत की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तो श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे गोपाल देवांगन जी से, जो प्रवर्तन अधिकारी हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर में। तो गोपाल जी, कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

कार्यक्रम प्रगति के सोपान में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार सृजन कार्यक्रम पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन अधिकारी श्री गोपाल देवांगन से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे रमाशंकर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के गीत गाए। 5 दशक में करीब 16 भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने गाए। वे एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए वॉइस ओवर किया। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न SP बालासुब्रमण्यम जी को भारत सरकार ने सन 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से नवाजा था। बेस्ट मेल सिंगर का नेशनल अवार्ड उन्हें 6 बार मिला था। महान भारतीय पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम को उनके जन्म दिवस पर शत शत नमन। आइए सुने उनके द्वारा गाए कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म सागर का गीत, गीत जावेद अख्तर का था, संगीत था राहुल देवबर्मन का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आपने सुना फिर मैंने प्यार किया का गीत, आवाज़ थी SP बालसुब्रमण्यम की, गीत देव कोहली का था और संगीत था राम लक्ष्मण का।
1: कॉलेज की फीस ज्यादा है
2: बेटा।
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो
1: कहाँ?
2: एडमिशन कराने।
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म लव का गीत। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे आनंद मिलिंद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

लीजिए अब सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म एक दूजे के लिए का गीत, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं ध्रुव शर्मा और साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए ये लोक भजन।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ

0: रखने का आधार। जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह, सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लीजिए अब सुनिए ध्रुव शर्मा और उर्मिला साहू के स्वर में ये पारंपरिक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे ध्रुव शर्मा और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रही है मतगणना। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। और दुर्ग जिले में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 5 नगरीय निकाय अध्यक्ष, 71 पार्षद, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 34 सरपंच और 107 पंच पदों के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की मतगणना इस समय चल रही है। मतों की गणना प्रदेश के 13 निर्धारित मतगणना केंद्रों में की जा रही है। मतगणना कार्य संपन्न कराने के लिए 395 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पहले ही हो चुकी है। इसके नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांजगीर चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेजों के लिए प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। विभाग के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों का चयन दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला गणवेश वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। इस बार बच्चों को इनके दोनों सेट एक साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले ही वितरण प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से पहले विद्यार्थियों तक यूनिफॉर्म पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी गई है। दुर्ग जिलों में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है। कांगो, इथियोपिया और युगांडा से लौटे 3 लोगों को इबोला वायरस का संदिग्ध मानकर उनकी निगरानी की जा रही है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP से सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को संबंधित लोगों की पहचान कर उन्हें होम आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इथियोपिया और युगांडा से आए 2 व्यक्तियों के अलग अलग एयरपोर्ट के जरिए सीधे दुर्ग पहुंचने की जानकारी दी थी, जबकि कांगो से लौटा एक व्यक्ति पहले मुंबई में रुका और इसके बाद दुर्ग पहुंचा। प्रदेश में इबोला वायरस से जुड़े संदिग्धों का यह पहला मामला सामने आने के कारण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि खेती केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का आधार है। रायपुर में दूरदर्शन द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों से चर्चा की। श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ड्रोन तकनीक, नैनो उर्वरकों, जैविक खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने किसानों से नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था की गई है तथा कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी रखी जा रही है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत लमना में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे। प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पूर्व गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रही है मतगणना। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। और दुर्ग जिले में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीत, गजल और कव्वाली का कार्यक्रम स्वरधारा। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं जसपिंदर नरूला और शिल्पा राव। पहले सुनिए जसपिंदर नरूला की आवाज़ में इरशाद कामिल की ये रचना।

स्वरधारा कार्यक्रम में आज कलाकार हैं जसपिंदर नरूला और शिल्पा राव। लीजिए अब सुनिए शिल्पा राव की आवाज़ में ये गीत।

शिल्पा राव की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत गज़ल और कव्वाली का कार्यक्रम स्वरधारा। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे जसपिंदर नरूला और शिल्पा राव। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम के युगल स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म खुदगर्ज़ का गीत, गीत इंदिवर और फारूक कैसर का था, संगीत था राजेश रोशन का।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, आगामी शुक्रवार 5 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और उसका परिवहन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 5 जून 2026 को 11:30 से 12 तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

0: अभी आपने सुना फिल्म शोला और शबनम का गीत, आवाज थी अभिजीत की, गीत अनजान का था और संगीत था बप्पी लाहिड़ी का।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्थल बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादें।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए

जांबाज इस फिल्म का नगमा भी आपने सुना। आवाजें थीं मनहर उदास और कंचन की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज कल भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वे इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात

0: करेंगी। सुश्री कूपर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज मिजोरम म्यांमार सीमा पर स्थित चम्फाई कस्बे के 9 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ईडी ने बताया कि ये छापेमारी देश में बड़े पैमाने पर अवैध बर्मी सुपारी की तस्करी करने वाले एक संगठित सीमा पार नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए की जा रही है। निदेशालय ने बताया कि इस अवैध नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। इसराइल और लेबनान ने संघर्ष विराम को फिर से लागू करने तथा लेबनान के भीतर कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जहां हिजबुल्ला लड़ाकों की मौजूदगी नहीं होगी। अमरीका की मध्यस्थता में हुई चौथे दौर की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि संघर्ष विराम तभी प्रभावी रहेगा जब हिजबुल्ला पूरी तरह से गोलीबारी बंद करे और लितानी नदी के दक्षिण के क्षेत्रों से अपने सभी लड़ाकों को हटाए। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मड़गांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनी कार्यक्रम। ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुनी।

कार्यक्रम ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुनें। आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं सौम्या रिजवी। आप सभी को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म साजन से, आवाज एसपी बालसुब्रमण्यम की, गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का, पसंद आप सभी की है। कोरासी भैंसा से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज साहू, सुष्मिता, दीपिका साहू। लोरमी ग्राम तिलकपुर से चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार मरावी, मालती, मयंक मरावी। पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश वर्मा। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, नंदा बोटके, हनुमान बोटके।

चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ सिंह, राम सहोदर, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ, शौर्य नामदेव, नानघाट कातलबोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शाह साहू, शशांक और सीमा साहू, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल और उच्च भट्टी बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी।

0: लीजिए अब सुनिए फिल्म दीवार का नगमा, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत राहुल देव बर्मन का। फरमाइश आप सभी की है भाटापारसी पचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु और विनय कुमार ठाकुर। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, विपुल कांबड़े। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता। ग्राम नागर कोरा से बबलू साहू, जामुन देवी, समीक्षा आराध्या साहू। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा। बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। अमलीडीह साजा से खिलेश्वर सिंह चौहान, मालती देवी चौहान। हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू। यहीं से पार्वती साहू, टिकेश्वरी और नागेश्वरी साहू। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजभिये। धरसीवा बस स्टैंड से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना, रानू, खुशी, प्रवीण कुमार साहू और इकबाल कुरैशी। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव, अर्पिता, अभिनव, बलताऊ, राजेश्वरी, आस्था, अनुराग, अभिषेक, डुग्गू और कान्हा यादव। मोहरिंगा राजिम से खुमान सिंह पटेल, तेजेश्वनी, मिष्टी और एकांश पटेल। मोहरिंगा राजिम से ही नरसिंह साहू, पूना साहू, खुमान सिंह पटेल। अम्बेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े, स्वरा जमदाड़ी। और सुंदरनगर बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि, जया, जानवी और तृप्तेश देवांगन।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है
1: कह

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से, आवाजें बप्पी लाहिड़ी और आशा भोसले की, गीत इंदेवर का, संगीत बप्पी लाहिड़ी का। सुनना चाहते हैं आप सभी साथी ग्राम भड़गा कोदवा गोड़ान से श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी रचनी राहुल पूजा मरावी, कोई ग्राम भंगी टोला से ननकाराम धुर्वे जामुनबाई फिरतराम मालती धुर्वे, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर कैथल और डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज साहिल बिट्टा बजाज, ग्राम बाघामुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन नंदिनी प्रकाश देवांगन, यहीं से गायत्री यशवर्धन यशस्वी देवांगन, दतरिंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि पारस मणि और नोखेलाल वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक पुनेश्वर रजक, भाटापारा से ही फानेश्वर रजक उमेश रजक, सिनेमा लाइन भाटापारा से रामकुमार सेन विक्की सेन, परसा टोला से ओम प्रकाश मसीहा सिलोचनी तुषारिणी खुमेंद्र मसीहा, सौंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन सावित्री देवी गजेंद्र कुमार चंदन, वार्ड नंबर 2 पंडरिया से शिवा यादव राज यादव चिंटू और तरुण यादव, गंडई पंडरिया से कन्हैया यादव निर्मला चोवाराम और कुमार यादव, और बिनौरी फिंगेश्वर से टीकमराम साहू योगेश्वर साहू हेमलता और टिकेश्वरी साहू।

लीजिए अब सुनिए फिल्म मोहब्बते का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और उदित नारायण की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत जतिन ललित का, पसंद आप सभी की है। आर्य नगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष, नंदनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रिहान। लालपुर मारो से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी, निशांत ध्रुव। लोरमी ग्राम चचेड़ी से मुहंसी मरावी, सविता रिंझा, तनु राही मरावी। गांव तेंदुभाटा मगरलोड से उमेंद कुमार निषाद, मोहेश्वरी, देविका, पोषण, नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर और किशन। ग्राम कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पुड़ेंद्र, साहिल चंद्राकर। लोरमी ग्राम चचेड़ी से जगदीश सिंह मरावी, सावित्री, चमन, अमन, सुमित मरावी। ग्राम कुटेना पांडुका से झामेश्वरी साहू, टीकमलाल, वासु, मोक्ष, भूषण, शशि, ओजल, विरांश, काव्यांश और कीर्तिमान। भीमखोज तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा, शीतल गुप्ता। लिवई से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी। इंदिरानगर भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू, नेहा, जगदीश देवांगन। ग्राम गेंदा टोला से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, गजेंद्र गुप्ता। यहीं से अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता। और नरगोड़ा से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, डिंपल और मीनाक्षी गोस्वामी।

लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म कामचोर का गीत। गीत इंदेवर का, संगीत राजेश रोशन का, पसंद आप सभी की है। ग्राम गूढ़ा राज से मनोज साहू, हस्ता नंबर 2 से पार्वती साहू, टिकेश्वरी नागेश्वरी साहू, लोरमी ग्राम करुहा नार से गोमती रजक काजल रजक, बठेना पाटन से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद वर्मा, पहंदा से नीतीश कुमार तनुजा ईशान देवांगन, लखनलाल सावित्रीबाई देवांगन, पलारी से दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पूनाराम कृष्णा देवांगन, दतरिंगी से भागवत वर्मा लीलावती विनीता रुद्र वर्मा, लघान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल साहिल और भारती बघेल, सौंगा मगलोट से मोहित कुमार चंदन देविका रानी हेयांश कुमार चंदन, बाजारवाड महासमुंद से भीषम दास नर्मदा हिरमणि दीपक लक्ष्यदास, रानीगांव नगरी से खिलेश कुमार, ग्राम कन्या बालाघाट से अखिलेश कुमार यादव ज्योति यादव अंकित श्रद्धा सौरभ यादव, हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव माया यादव रिंकू सनी कोमल यादव, भूत कछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम निर्मला दीपक प्रीतम धनराज मरकाम, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू भूपेंद्र साहू दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, ठेठवारपारा कनेरी से सनत यादव और बाजारपारा बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा लव कुमार सिन्हा और लक्की सिन्हा।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म CID से आवाजें शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत ओपी नैयर का, फरमाइश आप सभी की है। ग्राम मेच का सुंडू नगरी से भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा नाग, लिखिल नाग, तरुण दीप नाग। ग्राम सिंगारपुर से चिंताराम धुर्वे, कामिन चंद्रध्वज, शानू धुर्वे। गर्रापारा बांधा बाजार से मानवेंद्र साहू, सुलोचना राकेश साहू। ग्राम डोंगरिया मलाजखंड बालाघाट से मुन्नालाल पटले, माधुरी पटले, याचना और दीपांशु पटले। बन बघेरा जिला राजनांदगांव से योगेश सारवा, आशा सारवा। घटारानी अंचल फुलझर से योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी, यामिनी, मुस्कान और हर्षिता साहू। बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा। बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, काजल पूर्वी साहू। गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, जयश्री देवांगन, ऋषभ और ऋचा देवांगन। गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलवदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतिनबाई, मोतिमबाई मानिकपुरी। ग्राम सैया मालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी, आकाश, प्रतिभा पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र और रौनक सेन। भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू। पीपरपारा पालचुवा मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन दिवाकर और वंशिका। और दतरिंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा।

ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने। इस कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म तेजाब से आवाजी अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की, गीत जावेद अख्तर का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। फरमाइश आप सभी की है। टिकापार बालो से चिंताराम यादव, रवि प्रकाश यादव, गंडई पंडरिया से दरियाना मल मोटवानी, अनीता राजेश, मुकेश मोटवानी, ग्राम नेवई उतई से विक्की देवांगन, उर्वशी देवांगन, जतिन जयंत, कुनिका देवांगन, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, शारदा और जीत वर्मा, भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पडोटी, जयंती पडोटी, हेमंत उमंग, मोक्ष पडोटी, ग्राम भलेसर महासमुंद से बलराम सेन, इंदु सेन, छगन सिन्हा, द्वारिका सिन्हा, भानबेड़ा मुंगवाल से रूप नारायण हुपेंडी, कमला हुपेंडी, चिमरोबाई पवित्र हुपेंडी, रोहासी से मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष मयंक, जानकी साहू, ग्राम लाटालवन से संजय साहू, दिव्य साहू, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकान मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी, अड़ार नांदघाट से राहुल गोपी वर्मा, कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक, माँ महामाया चौक मेघापार से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या, दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीमुन्ना, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया, सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस और यशस्वी वर्मा, ग्राम दहियान बांधा बाजार से हरिओम साहू, रेवाराम साहू, रानू सरस्वती साहू, प्यारी राम साहू, परमानंद साहू, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस शांति, रिचा और गायत्री वैष्णव, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, आवरा डबरी से श्यामलाल साहू, मोंगरा संगीता, केशरी साहू, देवरी भाटापारा से केआर साहू, मुरली क्षत्री, पलारी से प्रकाश वर्मा, पूजा वर्मा, निखिल धमनी, राजिम से समयलाल धीवर, मुन्ने धीवर, गोविंद ममता, कुणाल युवांश धीवर, आमा खोड़रा रेंगाखार से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह, दक्ष प्रिया, गीत और सरगम नेताम, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रॉल, नारायणी नोमेश, नेहा और वान्या सिंह रॉल, ग्राम भोईनापार लाटाबोर से देव नारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी, उमाबाई, गंगाराम साहू, ग्राम तोरला से जीएल साहू, सरोज साहू, छोटी और पिंकी, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल, मानस गंगा देवी विश्वकर्मा, ग्राम पहरा अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्र किरण बंछोर, रानीगांव नगरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू, ग्राम पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल

रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव और कर्मा चौक लोहारेड्डी से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी लालिमा, खुशांत और निशांत साहू।

इस गीत के साथ ही आज का ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को सौम्या रिस्वी का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल भेजे हैं फिल्म संगीत सुने, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रही है मतगणना, तहसीलदारों ने हड़ताल स्थगित की, आज से काम पर लौटे। और दुर्ग जिले में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 5 नगरीय निकाय अध्यक्ष, 71 पार्षद, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 34 सरपंच और 107 पंच पदों के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की मतगणना इस समय चल रही है। मतों की गणना प्रदेश के 13 निर्धारित मतगणना केंद्रों में की जा रही है। मतगणना कार्य संपन्न कराने के लिए 395 अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पहले ही हो चुकी है, इसके नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। शासन स्तर पर हुई सकारात्मक चर्चा, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर और वैधानिक कार्रवाई शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने सामूहिक अवकाश स्थगित करने का फैसला लिया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आज से नियमित काम पर लौटेंगे। गौरतलब है कि सरगुजा के राजापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा के मामले प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक विरोध जताते हुए सामूहिक अवकाश पर थे। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला गणवेश वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। इस बार बच्चों को इसके दोनों सेट एक साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले ही वितरण प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। 16 जून से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से पहले विद्यार्थियों तक यूनिफॉर्म पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी गई है। दुर्ग जिले में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है। कांगो, इथियोपिया और युगांडा से लौटे 3 लोगों को इबोला वायरस का संदिग्ध मानकर उनकी निगरानी की जा रही है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP से सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को संबंधित लोगों की पहचान कर उन्हें होम आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इथियोपिया और युगांडा से आए 2 व्यक्तियों के अलग अलग एयरपोर्ट के जरिए सीधे दुर्ग पहुंचने की जानकारी दी थी, जबकि कांगो से लौटा एक व्यक्ति पहले मुंबई में रुका और उसके बाद दुर्ग पहुंचा। प्रदेश में इबोला वायरस से जुड़े संदिग्धों का यह पहला मामला सामने आने के कारण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांगीर चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेजों के लिए प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। विभाग के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों का चयन दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कल 5 जून को रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास विषय पर संगोष्ठी तथा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल गौरेला पेंडा मरवाही जिले के सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रही है मतगणना। तहसीलदारों ने हड़ताल स्थगित की, आज से काम पर लौटे। और दुर्ग जिले में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले में मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
0: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेडके जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
0: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी,
2: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आए।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
2: जी,
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है। लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
2: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की। खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओ, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
2: जी,
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
2: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ जरूर कीजिए।
2: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी,
2: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
2: बिल्कुल याद है।
0: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
2: बिल्कुल।
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
2: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था। लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
2: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
2: जी,
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
2: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
2: जी,
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
2: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
2: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
2: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।

0: भारत अर्थात इंडिया।
1: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
2: Wonderful shot through the deep. The scoop shot, it gets through. It's a big one. It's a huge boundary. It goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
1: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
3: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
1: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
4: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
5: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। शाबाश।
6: क्या अभी आपके पास समय होगा?
5: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
4: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
5: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
6: जी वही।
4: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
5: अच्छा।
6: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
5: और
4: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
5: हाँ, बोलो।
6: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
5: बिल्कुल।
4: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
5: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
6: 5000 वर्ष पहले?
5: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
4: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
5: अच्छा, ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
6: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
5: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
6: अच्छा।
5: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
6: जैसे
5: इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
6: वैदिक समूह?
5: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
6: भरत?
4: भरत नाम तो हमने सुना है।
5: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
6: ओ, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
5: हाँ।
6: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
5: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
6: अच्छा।
5: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
4: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
5: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
6: वो क्या सर?
5: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
3: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
6: भला ऐसा क्यों?
5: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
4: अच्छा।
5: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
6: है ही नहीं?
5: हाँ।
6: ऐसा कैसे?
5: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
6: ओ।
5: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
4: हिंदू।
5: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
6: तो फिर?
5: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
6: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
5: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
4: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
5: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
6: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
5: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
4: अच्छा।
5: हाँ।
4: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
5: बिल्कुल।
4: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
5: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
6: अच्छा।
5: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
4: अच्छा।
5: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
6: वो क्या?
5: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
6: जम्बूद्वीप?
5: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
6: जम्बूद्वीप?
5: हाँ।
6: ये नाम भला क्यों?
5: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बू

0: ये नाम कैसे आए?
1: लगता है सब कुछ जानकर ही मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
0: जी सर।
1: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
0: अच्छा।
1: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
0: ओ।
1: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
0: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
1: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
0: ओ।
1: हाँ।
2: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था
0: और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
1: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं। और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
0: अच्छा।
2: इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
1: बिल्कुल।
2: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
1: हाँ?
2: और हिंदुस्तान?
1: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
0: अफगानिस्तान।
1: बिल्कुल सही।
0: बलूचिस्तान।
1: सही।
0: तुर्किस्तान।
1: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
2: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
1: अच्छा?
0: हाँ, बिल्कुल।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
0: अच्छा।
1: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
2: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग,
0: वी द पीपल ऑफ इंडिया।
1: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
0: जी सर।
1: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
0: सबके साथ?
1: हाँ, सबके साथ।
3: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
5: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
6: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा। देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
7: भाई वाह, आज तो मजा आ गया।

0: कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
1: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
2: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
1: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
2: हाँ पूछो बेटा।
1: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
2: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
0: लेकिन माँ,
2: ओफो तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
1: जी
2: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
1: अच्छा माँ, ये लो माँ।
2: ला
0: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
1: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे,
2: क्या मिल गया
1: मुझे? माँ
2: क्या मिल गया, क्या मिल गया
1: मुझे? मिल गया,
0: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया
2: सब? क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
1: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
0: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
1: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
2: कुछ भी तो नहीं,
0: कुछ भी तो नहीं है।
1: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
0: वो तो है मगर
1: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
0: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
1: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें हैं?
0: हाँ
1: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
0: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ चलो, देखते हैं।
1: ठीक है आओ मेरे साथ।
2: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन। जोसेफ सुनो तो,
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
6: हाँ भाई
5: भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यहाँ भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
6: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
5: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
6: हाँ आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
7: ना जाने क्या करेंगे,
5: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं सकती। अच्छा मजा आ गया,
7: लगता है कुछ हो गया है।
5: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
8: भाई साहब हट जाइए।
6: आ गए यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते।
5: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
6: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ
5: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
6: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
5: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे वो देखो,
6: हाँ
5: स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
6: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
5: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे क्या बात है, क्या बात है।
8: ये क्या हो रहा है? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
6: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
8: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
6: बहुत अच्छे, देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
8: अरे शाबाश, अरे लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
6: वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ, उधर देखो।
8: अरे अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
3: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
9: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान। और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
10: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार, नमस्कार।
11: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
12: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण। अब प्रस्तुत है आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा। इसमें आज सुनिए कमार गीत। कलाकार हैं समारीबाई मरकाम और साथी। कार्यक्रम में पहले सुनिए समारीबाई मरकाम और साथियों के स्वर में ये कमार गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं समारी बाई और साथियों के गाए कमार गीत। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

Tinha arena.

0: yane jangala itone bana itone nano na ne de yane yoda.
1: कार्यक्रम लोक सुधा के अंत में आइए अब सुने सुकालूराम और साथियों के स्वर में ये देव पूजा कमार गीत।

0: টাকা বানো না না তো দে ইসাকু হয় দায় বালাই দিনু ইয়দায় খেলায় বাবা রামাইনা ইনামাই হ মহা।
1: आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा अभी आपने सुना। इसमें आज आपने सुने कमार गीत, कलाकार थे समारी बाई और साथी। ये आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण है। एक बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
3: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
2: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मड़गांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में हेलो ब्रदर, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था फाइज अनवार ने, संगीत साजिद वाजिद का था। आइए अब सुनिए बंटी और बबली, इस फिल्म का गीत सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में। गुलजार ने इस गीत को लिखा है, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनिए चोरी चोरी चुपके चुपके इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। गीत समीर ने लिखा है, संगीतकार हैं अनु मलिक।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आप सुनेंगे शाम 4 बजे। रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन और प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। इसमें सुनिएगा आनंद भाटे से मराठी सुगम संगीत और बिजोय कुमार सामंत रॉय के गाए कुछ उड़िया आधुनिक गीत। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा सुनिएगा आज रात 9:25 पर। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1:30 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। इसमें आज की बात में सुनिएगा चर्चा, बच्चे मन के सच्चे, इनके बालपन को छिनने न दें। साथ ही आप सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम नीले गगन के तले, आलेख और वाचन गीता शर्मा का, परिकल्पना और संपादन बीरभान साहू का और प्रस्तुति प्रकाश उदय की होगी। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट होगा शाम 5:10 पर। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में। इसमें आज अपन कोट का विषय होगा आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्रम माटी के आखिर में सुनिएगा समृद्धि दुबे का कविता पाठ और होंगे माटी के गीत भी। लोक संगीत के कार्यक्रम में

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे श्यामदास मानिकपुरी और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। लोक संगीत के ही कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे ध्रुव शर्मा और साथी। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में चर्चा, खेती किसानी में उन्नत कृषि उपकरण के उपयोग संग रख रखाव और सावधानी। 7:30 पर किसान वाणी में क्रमांक की सलाह में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का महत्व, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर नीतीश तिवारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2:00, 2:30 पर, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर भी।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर साहब सुनेंगे शाम 4 बजे। रात 8:30 पर होगा स्पोर्ट्स कैन और प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा रात 10 बजे। इसमें आप सुनेंगे आनंद भाटे से मराठी सुगम संगीत और विजय कुमार सामंत राय के गायक कुछ उड़िया आधुनिक गीत। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा सुनिएगा आज रात 9:25 पर। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण है। 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

बिंदिया सुन रहे मेरी सखियां, आप सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। बहनों, हमें लगता है हमारी अधिकांश सखियां इन दिनों बच्चों की छुट्टियों में सैर सपाटे पर निकल गई होंगी, है ना? बहनों, आप सभी बच्चों को इन दिनों दादा दादी या नाना नानी के घर कुछ समय बिताने ले जाती हैं, और जाना भी चाहिए क्योंकि यही वो समय है जब बच्चे अपने बुजुर्गों के साथ उनके प्यार और उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखते हैं। बचपन जीवन का सबसे कीमती या कहो अनमोल समय है। इसे जी भरकर जीने का हक हर बच्चे को है। बहनों, वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि जैसे बचपन कुछ जल्दी ही बड़ा हो जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें हैं बच्चों की अनियमित जीवन शैली, उनकी खान पान से संबंधित बिगड़ती आदतें। और बहनों, वर्तमान के बच्चे टेक्नोलॉजी और विज्ञान से जुड़ गए हैं तो वे दिन भर बैठे रहते हैं, खेलना कूदना या कुछ क्रिएटिव काम करना पसंद ही नहीं करते। इससे उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हम स्वयं छोटे छोटे खेल उनके साथ खेलेंगे तो वे भी रुचि लेंगे। और हाँ बहनों, हमें भी उनके आगे थोड़ा मर्यादित होकर रहना होगा। जाने अनजाने में हम भी बच्चों के आगे ऐसी कुछ बातें कर जाते हैं जो उनके मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव डालती हैं। बच्चे बेहद कोमल मन के होते हैं, उनके आगे किसी की बुराई, अपशब्द या तुलना करने जैसी बातें कभी ना करें। भोला सा बाल सुलभ लिए बचपन कितना सुंदर होता है, उसे वैसा ही बना रहने दें। उम्र के साथ साथ वे स्वयं समझदार होते चले जाएंगे। हाँ, पर उन्हें अच्छी और बुरी बातों, आदतों के बारे में अवश्य समझाएं, ताकि कोई उनके साथ गलत व्यवहार न कर सके। और बहनों, हम सभी अपनी भी आदतों को सही करें ताकि हमारा घर, समाज, देश और विश्व साफ स्वच्छ बना रहे। बहनों, कल यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आइए पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित ये विशेष कार्यक्रम सुनते हैं। नीले गगन के तले आलेख और वाचन है गीता शर्मा का यानी मेरा, परिकल्पना और संपादन है वीरभान साहू का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं प्रकाश उदय।

वसुंधरा तू शीतल छाया, हरियाली तेरी माया, तेरी गोद में जीवन खिले, तेरी सांसों में संसार समाया।

धरती, वसुंधरा, हरियाली, यही शब्द हमारे अस्तित्व की जड़ है। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये पंच तत्व ही हमारे जीवन का आधार हैं। इन्हीं से जन्म, इन्हीं से पोषण और अंततः इन्हीं में विलय हो जाना ही जीवन चक्र है। मानव सभ्यता का विकास भी प्रकृति की गोद में ही हुआ है। मानव ने जंगलों से भोजन पाया, नदियों से जल, पशुओं से सहयोग और भूमि से अन्न। क्या सचमुच कोई चित्रकार है जिसने इस सृष्टि को इतने रंगों से सजाया है? हाँ, वह चित्रकार है प्रकृति स्वयं, जिसने हमारी सांसों को सरल बनाया है। शुद्ध हवा देकर, निर्मल जल देकर हमारी प्यास बुझाई है। अपनी विविधता में प्रकृति ने हर जीवन के लिए जीने का इंतजाम किया है। किसी ममतामयी माता की तरह विराट प्रकृति की गोद में अनंत आनंद के साथ हर जीव अपने निर्बाध जीवन यात्रा पूरी करता आया है। खिले हुए एक फूल को भी गौर से देखकर समझा जा सकता है कि वह असीम रचनाकार कितना महीन भी है। कुदरत ने गिलहरी जैसे छोटे प्राणी को ये समझ देकर भेजा है कि फलों के बीज को किस तरह मिट्टी में दबाकर फिर से रोपित किया जाता है अगली पीढ़ी के लिए। ऐसे करोड़ों उदाहरण हैं जो हमें हैरानी में डाल सकते हैं।

लेकिन आज वही चित्रकार कैनवास पर अपनी ही बनाई तस्वीर को बिखरते हुए देख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मानव सभ्यता के क्रमिक विकास ने रफ्तार पकड़ी, उसकी जरूरतें असीमित होती चली गईं। अपने सुख और खुशियों की दुनिया को बसाते हुए वह भूल गया कि आज वह जिस पेड़ की डाल पर बैठा है उस पर ही कुल्हाड़ी चला रहा है। मानव ने न केवल अपने बल्कि वन्य प्राणियों के जीवन को भी अव्यवस्थित कर दिया है। जंगलों को काटकर हमने अपनी आवश्यकताएं तो पूरी कर ली, पर वन्य पशुओं से उनका रहवास छीन लिया है। इस बिखराव ने प्रकृति और पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ दिया है। वन्य जीवन दूषित जल पीने को मजबूर हो गया है। अब रात को तारे छत पर नहीं मंडलाते, गौरैया अब सुबह आंगन में दाना चुगने नहीं आती, कोयल की कूक सुने बिना अब बचपन बीत रहा है। बढ़ते विकास की रफ्तार ने प्रकृति को वरदान नहीं बल्कि संसाधन समझना शुरू कर दिया है, और यहीं से शुरू हुआ है दोहन।

वनों की कटाई, बढ़ती आबादी, कंक्रीट के जंगल, ये सब मिलकर धरती को उसके अस्तित्व के संकट की ओर धकेल रहे हैं। भूमिगत जल स्तर लगातार गिर रहा है, तापमान बढ़ता चला जा रहा है, वर्षा का संतुलन बिगड़ रहा है। कभी जीवन एक मधुर गीत था, जहां हवा गुनगुनाती थी, नदियां कल-कल बहती थीं, लेकिन आज उसी गीत में शोर घुल गया है। कारखानों का, प्रदूषण का, स्वार्थ का, लेकिन कानों को फिर भी इस गीत का इंतजार रहता है।

0: और सुनते हैं कि पर्यावरण को सहेजने के लिए हमें क्या करना होगा। पेशे से पशु चिकित्सक लेकिन पर्यावरण के जानकार और इस दिशा में पूरी शिद्दत से काम कर रहे पदम जैन जी कहते हैं,
1: 5 जून हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, यह सिर्फ एक दिवस नहीं है बल्कि प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद करने का एक दिन है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम अनेक संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण की जो अभी स्थिति है, जो गंभीर परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं और आए दिन हम पर्यावरण में परिवर्तन की वजह से जिन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, वो बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही विकराल होने वाला है। और ये वो समय है जब हमें जाग जाना चाहिए और पर्यावरण को जो असंतुलन की स्थिति बन रही है उसमें संतुलन बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। आज चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, वर्षा की कमी हो, शुद्ध हवा की कमी हो, शुद्ध पीने के पानी का कमी हो, ऊर्जा का संकट हो, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें आए दिन सुनने को मिल रहा है पूरे विश्व भर में। साथ ही साथ पर्यावरण में आए इस बदलाव का बीमारियों में, नई बीमारियों में भी बहुत असर देखने को मिल रहा है। और हमने रिसेंटली कोरोना का गंभीर संकट देखा है। वर्तमान में हम ऊर्जा संकट से गुजर रहे हैं, आए दिन हम ग्लोबल वार्मिंग, पानी की कमी, ये सबसे जूझते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम एक दिन में सारे असंतुलन को ठीक कर देंगे, पर हम संकल्प लें कि हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे और इस पर्यावरण को वापस बेहतर करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित होंगे। सिर्फ एक किसी बात से बात नहीं बनेगी, हमें बहुत सारे फील्ड में काम करने की जरूरत है, चाहे वो फिर पौधारोपण हो, वाटर कंजर्वेशन हो, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो, जो प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग है उसे रोकने की जरूरत है, और हमें उन गैर परंपरागत तरीकों को अपनाने की जरूरत है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। तो हमें इस तरह के प्रयासों को बहुत शिद्दत से इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके अलावा हम अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी चीज़ों को अपनाएंगे तो भी पर्यावरण को बचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे कि हम छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए यदि दूरी तय करनी हो तो हम पैदल तय करें या साइकिल का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के जगह कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करें, और या आप अपने ऑफिस घर से निकलते हो तो बत्तियों को, पंखों को, एसी को बंद कर दें, जिससे कि हम ऊर्जा का भी बचाव कर पाएंगे। हम ऐसे छोटे छोटे कदमों को अपनाते हैं तो निश्चित ही जो असंतुलन की स्थिति बन रही है उसे हम बेहतर कर सकते हैं, और भविष्य में हम तो नहीं होंगे पर जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली नई पीढ़ी है वो होंगे, और यदि इससे बदतर पर्यावरण मिला तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो आए हम सब संकल्प लें एक बेहतर पर्यावरण के लिए, जिससे कि हम भविष्य में अपने बच्चों को अच्छा पर्यावरण दे पाए।

आज जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व के लिए एक यक्ष प्रश्न बन चुका है। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना होगा, जल संरक्षण और संवर्धन करते हुए

सतत विकास को अपनाना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 के लिए नाउ फॉर क्लाइमेट एक हैशटैग नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। इस बार अजरबैजान की मेजबानी में पूरी दुनिया एक संदेश दे रही है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, यानी प्रकृति से प्रेरणा लेकर जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए काम करना। सोचने वाली बात यह है कि जब ताल और नदी का जल मिल सकता है तो क्या मानव और प्रकृति का सुखद संतुलन एक बार फिर नहीं बन सकता।

फिक्र इस बात की है कि आज पिघलता ग्लेशियर, बढ़ता समुद्र का स्तर और जंगलों में फैलती आग, इस सब से प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है। सच तो ये है कि ओजोन परत का क्षरण, बढ़ती पराबैंगनी किरणें, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी, ये सब हमारी ही भूलों का परिणाम तो है। कितनी सुंदर हुआ करती थीं वो शामें जब पेड़ों में पक्षी कलरव करते लौटा करते थे, लेकिन क्या आने वाली पीढ़ियां इस दृश्य को देख पाएंगी? आज भी समय है, यदि हम चेत जाएं तो धरती फिर हरियाली उड़ सकती है, झरनों का पानी फिर मीठा हो सकता है और हवाओं में फिर प्रकृति की खुशबू बिखर सकती है।

पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या संस्थाओं का कार्य नहीं है, यह हर व्यक्ति की मौलिक और नैतिक जिम्मेदारी है। एक पौधा लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, ये छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। किसी भी अवसर में होने वाला अनावश्यक शोर रुके, ईंधन की अपव्ययता थमे और जल का अपव्यय रुके। हमारा प्रयास भी परोक्ष रूप से प्रकृति को संवारने वाला हो सकता है। और मजे की बात तो ये है कि इतना करने के लिए हमें बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि बहुत छोटे छोटे प्रयासों की जरूरत है। यूएनईपी का लक्ष्य है कि 150 से अधिक देश इस अभियान में शामिल हों। हर्ष का विषय है कि भारत में भी रेलवे स्टेशन्स, स्कूल के प्रांगणों, शासकीय और गैर शासकीय संस्थानों में पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम संकल्प लें कि हम प्रकृति के साथ चलेंगे, उसके खिलाफ नहीं। हम विकास करेंगे, विनाश नहीं। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि धरती है तो हम हैं, हरियाली है तो कल है। अगर हमने आज को नहीं संभाला तो कल कोई नहीं संभाल पाएगा। धरती माँ हम पर अपना प्यार लुटाने के लिए आतुर है, तो क्यों ना हम भी उसके गले लग जाएं।

बहनों, अभी आपने सुना पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम नीले गगन की तले। आलेख और वाचन था गीता शर्मा का, यानी मेरा। परिकल्पना और संपादन वीरभान साहू का और प्रस्तुतकर्ता थे प्रकाश उदय। बहनों, इन दिनों हम हीट वेव से जूझ रहे हैं और इससे बचने के कई उपायों पर हम चर्चा भी करते हैं। पिछले दिनों हमने बच्चों के लिए इस पर चर्चा की थी, आज हम बुजुर्गों के लिए भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि बुजुर्गों को भी हीट वेव से बचाना चाहिए। अक्सर बुजुर्गों को प्यास कम लगती है और उन्हें पता भी नहीं चल पाता, इसलिए उनके पास पानी की एक भरी बोतल हमेशा रखें। थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीने के लिए याद दिलाती रहें। सादे पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, मट्ठा या ताजे फलों का जूस भी उन्हें देती रहें। उनके डाइट में ककड़ी, तरबूज, खरबूज जैसे पानी से भरपूर फलों को भी शामिल करें। पहनने के लिए सूती वस्त्र ही दें और अनावश्यक रूप से धूप में निकलने से उन्हें बचाएं। घर को भी ठंडा रखें बहनों, अनावश्यक लाइट्स का प्रयोग न करें, अनावश्यक रूप से एसी न चलाएं, कूलर का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर को ठंडा रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली रखें और उनमें नियमित रूप से पानी दें। तो बहनों, ये तो थी आपसे बातचीत और अब वक्त जो है वो खत्म हुआ जा रहा है, तो मुझे दीजिए अनुमति आप सभी को गीता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म गॉड टू सी ग्रेट हो। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की हैं।

0: गॉड तुसी ग्रेट हो। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार थे देवेन शुक्ला, संगीत साजिद वाजिद का था।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम। के अगले गीत से पहले श्रोताओं एक सूचना सुनिए। श्रोताओं आगामी शुक्रवार यानी 5 जून 2026 कल प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और उसका परिवहन। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। ये फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए। फोन नंबर्स हैं 400-3482, दूसरा नंबर है 400-3483 और तीसरा नंबर है 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कल यानी शुक्रवार 5 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल शुक्रवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अभिजीत और अनुराधा श्रीराम की आवाजों में फिल्म

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के

0: बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी छुट्टी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं।

0: वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि

0: निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

0: Just love me.
1: सोनू निगम और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना समीर का लिखा गीत, संगीत अनु मलिक का था, फिल्म थी नो एंट्री।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
4: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए।
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
5: गीत मेरे होठों को गया कोई।
2: कभी कोई किस्सा याद आता है।
6: यादे।
2: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
7: मुझे कुछ कहना है,
8: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
9: सुनिए।

0: चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से। अगला गीत फिल्म इश्क विश्क से। आवाजें सोनू निगम, प्रिया, प्राची और साथियों की। गीत लिखा है समीर ने।
1: लव गुरु तुम्हारे लव का फंडा फेल हो गया, मेरी मोहब्बत का बाप खत्म खेल हो गया।
2: अरे उल्लू की तुम, तुझे नहीं मालूम, अपने सवाल का जवाब ला, कुछ मत कर, कुछ मत कर, जा जा, जा उसके लिए 2 रुपए का गुलाब ला।

0: और मी नहीं चलेगा। वैम बैम थैंक यू मैम नहीं चलेगा। वन नाइट स्टैंड नहीं चलेगा।
1: लिसन मैडम, तो क्या चलेगा।

0: खाली खाली थिएटर होना चाहिए,
1: मोटर बाइक पर जाना चाहिए,
0: अरे बार बार ब्रेक लगाना चाहिए,
1: हमेशा अलर्ट होना चाहिए,
0: थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट होना चाहिए,
1: लव होना चाहिए।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: त काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवा है, जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा है संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तैं मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन

0: हिंदी माँ।
1: तब तो सुने ल पढ़ी
0: एक संग युवाणी।
2: चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुने वाजिद अमृता काक और साथियों की आवाजों में जलीस शेरवानी का लिखा गीत। संगीत साजिद वाजिद का है, फिल्म का नाम है वांटेड।

बेनी दयाल, श्रद्धा पंडित और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीत सलीम सुलेमान का था। फिल्म थी लव ब्रेकअप्स जिंदगी। चित्रपट संगीत के अगले गीत से पहले श्रोताओं एक सूचना सुनिए। आगामी शुक्रवार 5 जून 2026 यानी कल प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और उसका परिवहन। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर उपरीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 4003482, दूसरा फ़ोन नंबर है 4003483 और तीसरा फ़ोन नंबर है 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कल शुक्रवार 5 जून 2026 को दिन में 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल ही यानी शुक्रवार को ही शाम 5:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद चित्रपट संगीत का आखिरी गीत सुनी मोहित चौहान, अलीशा और साथियों की आवाज़ों में फिल्म क्रिश 3 से। गीत लिखा है समीर ने, संगीत राजेश रोशन का है।

0: मोहित चौहान, अली शचनाय और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना समीर का लिखा गीत। संगीत राजेश रोशन का था। फिल्म क्रिश 3 के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.1 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। 3 बजे ही हमारी ये सभा अब सम्पन्न होती है। 4 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा में कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स सुनवाने इसी मीटर पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं के साथ अवसरों की तलाश करना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक के बारे में जानकारी दी है।
2: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
1: वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। जनवरी 2015 में श्री निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela Delcy Rodriguez in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. He said Venezuela considers India as a stable demander for many years to come. Mr. Tandon informed that besides energy partnership, the discussions also went into broadening the economic partnership in other areas.
4: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector and pharmaceuticals, to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
3: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South. The 73rd plenary session of the Northeastern Council NEC is underway in Shillong, Meghalaya. Union Home Minister Amit Shah is chairing the session. Discussion on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development is high on the agenda. The Ministry of Development of Northeast Region said the deliberations are expected to facilitate coordinated action among states and stakeholders for achieving shared developmental goals. Northeast Vision Plan 2047 to provide a long-term roadmap for transforming the northeastern region into a vibrant hub of economic growth will also be discussed, as also the connectivity, innovation, sustainability and cultural prosperity by 2047. Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju today said that technology has played a crucial role in improving governance and ensuring the effective delivery of welfare schemes. He made the remarks while addressing the Reforms Utsav celebrating 12 years of reforms organized by the Ministry of Minority Affairs in New Delhi today. The minister noted that the adoption of technology has enabled ministries to bring tangible changes to the lives of beneficiaries across the country. Mera Yuva Bharat, My Bharat, has been officially recognized by Guinness World Records for achieving the title of most users to take an online quiz in 1 week, with over 390,000 participants who completed the entire length of the quiz. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia received the certificate in a ceremony held in New Delhi today. The record was achieved through the Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 quiz from the 25th to the 31st of October last year. The inaugural edition of the World Yoga and Sports Championship kicked off in Ahmedabad, Gujarat, marking a historic milestone on the global sporting roadmap. Prime Minister Narendra Modi will virtually join the mega event in the evening to share his best wishes as yoga enthusiasts and athletes from across the globe gather for the competition. The India Meteorological Department

जहां कहीं भी हैं, जिंदगी चैन सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो, इसी दुआ और उम्मीद के साथ करते हैं शो का आगाज 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप ही का शो है जिसमें हम शामिल करते हैं आपकी पसंद के नगमे जो आप हमें भेज सकते हैं मैसेजेस के जरिए। कहाँ पर? यहाँ पर नंबर है 9868868753 और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। जब तक आप ये वाला गाना सुनते हैं, मैं पढ़ती हूँ आपके मैसेजेस।

जी, आपके बेतादात मैसेजेस इस बात का सबूत हैं कि आप एफएम गोल्ड से कितनी कितनी मोहब्बत करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले मैसेज की तरफ, देखें कौन है जिनका मैसेज हमें मिला है। सबसे पहला जो मैसेज हमारे पास आया है वो है हमारे साथ हरजिंदर सिंह भाटिया है, जिनका मैसेज हमको मिला है। इसके अलावा कौन है, अयान वर्मा का मैसेज भी हमको मिला है। इसके अलावा कौन है, मस्कीन दादा का मैसेज हम तक पहुंचा है, और राधे श्याम शर्मा है हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में, मसरूर हसन हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस प्रोग्राम में। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे सुनने वाले हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से आप सबके नाम पढ़ दूँ। मेहर अरोड़ा हमारे साथ हैं, कहाँ से हैं, राजस्थान से इनका मैसेज हमें मिला है। विजय सुलेकर हमारे साथ हैं, उमेश कुमार हैं, परवीन सोनी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस वक्त, कहाँ से, राजकोट से इनका मैसेज हमको मिला है। विजय बिहारी शर्मा हमारे साथ शामिल हैं, सीताराम कागरा हैं, बलवेश पनवार हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस वक्त प्रोग्राम में। और बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, कौन है, लालगिरी हमारे साथ हैं, प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, प्रभाकर जोंडले हमारे साथ हैं, एचआर पांडे हैं, और हाजी मजहर का मैसेज भी हमको मिल चुका है। कहाँ से हमें मैसेज करते हैं, मऊ से इनका मैसेज हम तक पहुँचा है। वीना मस्कीन हमारे साथ हैं, शीशपाल वरदान है, अनंत वाडे हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा है अनंता वाडे भी हैं, श्री कुरुष वाटे हमारे साथ हैं, कुमकुम जी हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, सीताराम कागरे हैं, बोधराज खोरवाल हैं, धर्मेंद्र चीपा हमारे साथ हैं इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। और बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, कौन है हमारे साथ, शीशपाल वरदान है, अनंत वाडे हमारे साथ हैं। हमारे साथ इतने सारे जो लिसनर्स हैं वो इस वक्त जुड़े हुए हैं एफएम गोल्ड पर, और इस वक्त

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

FM गोल्ड सुन रहे हैं आप, नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे तमाम सुनने वाले जो इस वक्त FM गोल्ड के साथ जुड़े हुए हैं और अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा रहे हैं। देखें अगला मैसेज किसका है। शेख मूसा हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में, जिनके कई सारे मैसेज हम तक पहुंचे हैं। स्वरूप आनंद सर्जल हमारे साथ हैं इस वक्त प्रोग्राम में। सुदर्शन मुखी हैं, शामिल हो चुके हैं। संदीप हमारे साथ हैं प्रोग्राम में इस वक्त। देखें अगला मैसेज किसका आया है। रवि कुमार, राहुल रवि हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। सतीश अनेजा भी हैं, भारत भूषण भी हैं हमारे साथ जो कि इस वक्त FM गोल्ड को सुन रहे हैं। गुरमीत सिंह मीता हमारे साथ हैं इस वक्त प्रोग्राम में। राजेश वर्मा हैं, संदीप मक्कर हैं, राजकुमार डूडी हमारे साथ हैं, निखिल कागरा हैं, हरजिंदर शिंदे हैं हमारे साथ। भारत भूषण का हमें मैसेज मिल चुका है। दिनेश वर्मा हैं, पी एस नवकर हमारे साथ हैं, निट्टू मल्होत्रा भी शामिल हैं FM गोल्ड में इस वक्त, और लक्ष्मण लोखंडे हमारे साथ हैं, सतीश अनेजा हैं, उषा मोहन हैं हमारे साथ। राशिद हुसैन अंसारी का मैसेज भी हम तक पहुंच गया है। और देखें अगला मैसेज कौन है, हमें किसने भेजा है। दिग्दर्शन गौर भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस वक्त प्रोग्राम में। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप FM गोल्ड से कितनी मोहब्बत करते हैं और इतने कम वक्त में भी इतने सारे मैसेजेस हम तक पहुँचा देते हैं। और FM गोल्ड पर ये वक्त है एक बहुत ही प्यारे से गीत का।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने वरिष्ठ अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानते हैं उनके जीवन में आकाशवाणी की अहमियत, संस्मरण, कार्य और यादें। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं सोमदत्त शर्मा जी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत आभार प्रभा जी।
0: सर, हम आकाशवाणी के 90 वर्ष मना रहे हैं, तो ये 90 वर्षों की जो यात्रा है आकाशवाणी ने पूरी की है, इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं?
1: ये देखिए, एक लंबा समय आकाशवाणी ने कई पड़ावों से होते हुए गुजारा है, वर्तमान तक पहुंची। पहले शुरू का जो दौर था वो आप देखिए कि निजी रेडियो स्टेशन का दौर था। बॉम्बे रेडियो क्लब या मद्रास रेडियो क्लब जैसे निजी संस्थान थे, प्रसारण करते थे, बहुत कम दायरे में लोगों को सुनाई देता था वो, उनके कंटेंट भी बड़ा सीमित होता था, मनोरंजन के लिए जैसे कार्यक्रम थे। तो वहां से शुरू होकर के भारत में जो रेडियो प्रसारण है वो वर्तमान तक पहुंचा है। कई पड़ाव बीच में आए हैं और उन पड़ावों में जैसे संगठित रेडियो प्रसारण जो हुआ 23 जुलाई 1927 से शुरू हुआ, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनी थी उसके माध्यम से। फिर तीसरा पड़ाव आया कि जब 1930 में जब रेडियो का भारतीय राष्ट्रीयकरण हुआ, भारतीय प्रसारण सेवा के रूप में, ये दूसरा दौर था। तो वहां से लेकर के और आज जब हम FM और मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए हैं, तो ये एक लंबी यात्रा आकाशवाणी ने तय की है। और शुरू में रेडियो के रूप में और बाद में आकाशवाणी के नाम से या ऑल इंडिया रेडियो के नाम से, लंबे दौर में प्रारंभिक जो प्रसारण होते थे उसमें किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ड्राइवरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम। बाद में फिर जब कार्यक्रमों का प्रसारण का दायरा बढ़ा, खासतौर से 1947 के बाद आकाशवाणी का विस्तार का दौर है ये। उस समय तो केवल 4 स्टेशन थे। आज अगर आप रेडियो स्टेशन की गिनती अगर करेंगे आकाशवाणी केंद्रों की
0: जी,
1: तो 73 प्राइमरी चैनल हैं, फिर कितने रिले सेंटर्स हैं, CBS सेंटर हैं, ये तमाम इतना बड़ा जो विस्तार है, उस बड़े विस्तार में कंटेंट पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। वो खाली अब मनोरंजन के लिए कार्यक्रम नहीं करता, उसके कार्यक्रम देश भर की पूरी आबादी है, लगभग 97% आबादी को कवर करता है आकाशवाणी। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव इन वर्षों के दौरान आया है। इसके अलावा एक जो और बदलाव देखने को मिला है वो विधाओं को लेकर। शुरू में हम खाली गाने सुनते थे, है ना, बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे फिर जो दौर शुरू हुआ तो वार्ताओं का दौर भी शुरू हुआ, फिर नाटक का दौर भी शुरू हुआ, फिर फीचर्स भी शुरू हुए। फीचर को रेडियो की अपनी विधा मानी जाती है
0: जी।
1: फिर उसमें भी एक्सपेरिमेंट होने लगे, जैसे नेशनल चैनल शुरू हुआ तो नेशनल चैनल में जो बड़ी वार्ताएं होती थी आकाशवाणी से, नेशनल टॉक्स जो होती थी वो 15 मिनट की होती थी, लेकिन नेशनल चैनल में आकर के वो टॉक जो है टॉकलेट्स के रूप में आ गई, 4.5 मिनट में जो टॉकर होता था वो अपनी सारी बात करता था। फिर इनके भी विभाग हो गए, इनका भी विस्तार हुआ, तो खाली टॉक नहीं रहेगी तो बातचीत भी शुरू हो गई, परिसंवाद शुरू हो गए, परिचर्चाएं शुरू हो गई। और इसके अलावा जो और प्रयोग हुए वो आपके नाटक के क्षेत्र में प्रयोग हुए, और नेशनल चैनल ने भी प्रयोग किए, वो भी 5-5 मिनट के भी नाटक ब्रॉडकास्ट किए। तो ये एक बड़ी लंबी यात्रा आकाशवाणी ने तय की, कई पड़ावों से गुजर करके ये आई है। और सबसे बड़ा जो काम है इस यात्रा में
0: जी,
1: वो भारतीय समाज को संबोधित करना है। ये कोई भी रेडियो प्रसारण आज की तारीख में आकाशवाणी के अलावा पूरे भारत के समाज को संबोधित करता हो ऐसा नहीं है, ये इस यात्रा की उपलब्धि है।
0: सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आकाशवाणी जन जन की वाणी है। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आकाशवाणी से आपका पहला परिचय कैसे हुआ और इस संस्थान ने आपके जीवन को किस तरह प्रभावित किया?
1: मुझे याद है 1961 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा, उन दिनों में रेडियो होते नहीं थे, तो हमारे घर के बराबर एक रेडियो था पूरे मोहल्ले में।
0: अच्छा।
1: हम सब लोग अब समझते तो कुछ थे नहीं, बहुत छोटी उम्र थी मेरी उस समय, 10 साल की उम्र नहीं होगी ज्यादा ज्यादा, तो हम न्यूज सुनने जाते, देवकी नंदन पांडे जी उसमें थे या लोटिका रत्नम थी या हिंदू वाही थी, इस तरीके के लोगों को सब प्रसारण सुनने जाते। और उन दिनों में हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो ये मान करके चलते थे कि भाषा अगर सीखनी है तो रेडियो के समाज सुनने चाहिए, वहां से भाषा आप सीख सकते हैं। तो ये हमारा शुरू का दौर था जहाँ से हमने शुरू किया। तो मैंने तो वो दौर देखा है रांची में, जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई तो मैंने देखा कि ग्रामीण परिवार पति पत्नी दोनों रास्ते में जा रहे हैं और वो एक पान वाली की दुकान पर खड़े होकर रेडियो सुनने लगे, उन्होंने रेडियो देखा भी नहीं।
0: अच्छा।
1: जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई ये जो बोल रहे थे ये कहाँ है, उनको मैं देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये इसके भीतर बैठे थे क्या? तो ये वो दौर हम लोगों ने देखा है
0: जी,
1: और वहां से निकल करके आज तो जन जन तक सबके मोबाइल में रेडियो,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सब रेडियो सुनते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं। तो पहला जुड़ाव जो है वो न्यूज से हुआ और धीरे धीरे फिर उसका विस्तार हुआ, और वहीं से एक आकर्षण भी पैदा हुआ कि कभी न कभी जब पढ़ने बैठता था तो एकांत होता था वहाँ, तो मैं अभ्यास किया करता था रेडियो न्यूज पढ़ने का। लेकिन ये कैसे पता था कि आगे चलकर कि मुझे आकाशवाणी में ही नौकरी करनी है, क्योंकि मैं तो शुरू से ही सोचता था कि मुझे तो पढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूँ, पढ़ाऊंगा, थोड़े दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी, लेकिन नौकरी तो आकाशवाणी में मिलनी थी।
0: सर, जैसे कि आपने बताया बचपन की घटना के रूप में कि आप सुनते थे रेडियो और गाने वगैरह भी आपने सुने हैं, तो क्यों ना आपकी पसंद का हम गाना सुने।
1: बिल्कुल, लता मंगेशकर जी का कोई गाना अगर सुना सकते हैं तो सुनाइए
0: जी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग और आज हमारे साथ हैं सोमदत्त शर्मा जी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। सर, आगे बढ़ते हैं और ये जानना चाहेंगे कि आपने आकाशवाणी में रहते हुए भारत की संस्कृति, लोक परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। इस दिशा में आपकी सोच क्या रही और कैसे आपके मन में ये भाव पनपा कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ये कार्य करना है, तो उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं।
1: देखिए, मेरी पहली पोस्टिंग रांची में हुई थी। रांची आदिवासियों का इलाका है और वो पुराने बिहार में पड़ता था, तो वहाँ मुझे आदिवासी क्षेत्रों में जाने का बहुत मौका मिला और मुझे अभी भी याद है कि आकाशवाणी

0: में कांडे मुंडा नाम के सज्जन हुआ करते थे, वो सहयोगी थे एफआरओ के। मैंने उनको कभी किसी से बोलते बात करते हुए नहीं देखा।
1: अच्छा।
0: या तो मैं देखता था कि वो स्टूडियो से बाहर की तरफ आ रहे हैं या ढेर सारे बगल में दवाई हुए स्टूडियो की तरफ जा रहे हैं। एक दिन मैंने उनको मांदर बजाते हुए सुना, वो अकेले बजा रहे थे स्टूडियो में बैठ के, और मुझे लगा कि ये आदमी समाधिस्ट है। बिल्कुल मेरी रुचि उनमें बढ़ गई और मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया। तो पता चला कि वो मुंडारी के अधिराज हैं अपने इलाके के, मुंडारी के भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते थे। नई कविता वहां से शुरू होती थी, नया नाटक मुंडारी का वहां से शुरू होता था, नया उपन्यास वहां से उनसे शुरू होता था। और मुंडारी समाज का समुदाय का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता था जो बिना उनके गीत के पूरा हो जाए। तो एक तो उनके कारण से, दूसरा मैंने देखा कि हमारे यहाँ रांची में जो रिसेप्शनिस्ट थे उनका नाम था जस्टिन एक का। एक दिन मैंने देखा कि जो रांची की डेवलपमेंट कमिश्नर है वो उनके पास बैठी है। एक दिन बात आई गई होगी, आई होंगी, बैठी होंगी। दूसरे दिन फिर देखा, तीसरे दिन फिर देखा। चो मैंने कई दिन तक उनको देखा और एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटों बैठे देखा। तो मैंने एक दिन एक कभी से पूछा, एक का साथ पूछना तो नहीं चाहिए, ये डेवलपमेंट कमिश्नर आपके सामने बैठ के क्या करती है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे ऊपर रिसर्च कर रही है।
1: अच्छा।
0: आकाशवाणी का रिसेप्शनिस्ट
1: जी,
0: जो उड़ाव और जिसको कुडुख भी बोलते हैं, उस भाषा का अधिराज बैठा है और वहां के डेवलपमेंट कमिश्नर उस रिसेप्शनिस्ट के ऊपर रिसर्च कर रही है। तो मुझे लगा कि कुछ पोटेंशियल यहाँ है। उसके बाद फिर दो कार्यक्रम शुरू हुए, एक का नाम था वनांचल, दूसरे का नाम था साहित्यिकी। इन दोनों कार्यक्रमों का स्वभाव एकदम अलग था। एक में जो वहाँ के अलग अलग भाषा बोलियों, तकरीबन 32 भाषा बोलियां वहाँ बोली जाती है रांची में, जिसमें से 9 या 10 का प्रसारण होता है, बाकी का ओकेजनली प्रसारण होता है। तो मैंने वहां देखा कि जो बड़े साहित्यकार अलग अलग भाषाओं के माने जाते थे उनको वैसे तो कोई नहीं जानता था, लेकिन अपने समाज में उनकी एक अहमियत होती थी। तो मैं उनके बड़े लंबे लंबे इंटरव्यू करता था।
1: अच्छा।
0: मैं ये जानता था कि ये आज नहीं तो कल इनका महत्व होगा और ये सारा साहित्य जो है सामने आएगा, लोग इन पर रिसर्च करेंगे, तो इनके बारे में प्रामाणिक जानकारी लोगों के पास होनी चाहिए, वो आकाशवाणी के पास होगी। और दूसरा मैंने देखा कि मैं लोगों की रचनाओं के पाठ करवाता था उससे, और एक समय ये स्थिति बन गई आकाशवाणी में उन दोनों कार्यक्रमों की, जो जो साहित्यकार उसमें ब्रॉडकास्ट हो जाता था उसको ये मान लिया जाता था कि ये स्थापित साहित्यकार है फला भाषा का। तो ये वहां से मेरी रुचि बढ़ी कि जिस आकाशवाणी का रिसेप्शनिस्ट इतना बड़ा हो साहित्यिक दृष्टि से कि वहाँ की डेवलपमेंट कमिश्नर उसके ऊपर रिसर्च करे, वो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता था कुडुख भाषा को लेकर के, तो ये एक अद्भुत अनुभव था। अद्भुत अनुभव के कारण से ही शायद उस लोक संपदा महापरियोजना का बीज मेरे भीतर पड़ा, क्योंकि मैंने जंगल में एक आदमी को ऋग्वेद का अनुवाद करते हुए मुंडारी में देखा। अब वो अपनी जिंदगी में 25 ऋचाओं का भी अनुवाद कर जाता तो बड़ी बात होती। उन दिनों मैंने सुना था कि महादेवी वर्मा जी ऋग्वेद का अनुवाद कर रही हैं हिंदी में। अब कहाँ हिंदी की इतनी बड़ी कवित्री और कहाँ जंगल में बैठा हुआ मुंडारी जो लोक भाषा में ऋग्वेद का अनुवाद कर रहा है। तो वहां से कहीं ना कहीं वो चीज बैठ गई थी दिमाग में कि इन सब चीजों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए,
1: होना चाहिए।
0: उन्हीं से आगे चलकर के लोक संपदा परियोजना की नींव पड़ी हो।
1: सर यही मैं जानना चाह रही थी, लोक संपदा के माध्यम से देश की लोक संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को मंच देने का विचार कितना चुनौतीपूर्ण था, और इसको करने के बाद आपको संतोष भी मिला होगा कि आपने इन परंपराओं को और लोक संस्कृति को जागृत करने में, उसका विस्तार करने में, संरक्षण करने में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं।
0: देखिए ये काम बड़े मजाक में शुरू हुआ था, आपको सुन के आश्चर्य होगा, मुझे अभी भी याद है शाम का समय था, कोई 4-4.5 बजे हो गए। उन दिनों हमारी DDG हुआ करती थी फाइनेंस, वो DG के यहाँ से निकल करके आई। तो मैंने ये योजना के बारे में पता है कि देश में, दुनिया में जितने बड़े धर्म हैं उनमें सबकी उपस्थिति भारत में है, और देश में तकरीबन कोई 600 बताता है, कोई 450 बताता है, इतनी भाषा बोलियां, रूप बोलियां हैं, जनजाति बोलियां हैं। इन सब के बीच में तीन तरह के गीत हमको मिलते हैं। एक गीत मिलते हैं जो जन्म से लेके मृत्यु तक के संस्कार गीत। दूसरे मिलते हैं अदर देन संस्कार गीत, उनमें आपके नदियों से जुड़े गीत हैं, पर्वतों से जुड़े गीत हैं, मेले ठेलों से जुड़े गीत हैं, व्यक्ति विशेष से जुड़े गीत हैं, वर्षा के गीत हैं, ऋतुओं के गीत हैं, और बहुत तरह के सैकड़ों किस्म के गीत देश में गाए जाते हैं। और तीसरी है लोक गाथा है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक पुस्तक आई है, डॉक्टर नरेश बंसल मेरे गुरु भी थे
1: जी,
0: उन्होंने इस तरीके की 54 लोक गाथाओं का संग्रह किया है, तो साहित्य अकादमी में वो पुस्तक रखी हुई है। उसमें आपके रूप बसंत है, उसमें आपके नरसिंह मेहता का बहात है।

0: शंकर पार्वती का ब्याह है, ऐसे तमाम दुनिया भर के लोग, ये जो चीजें थी इनको संरक्षित करने की जरूरत थी, ये मैंने उनको बताया। तो उनकी बात समझ में आ गई, तुरंत फुरंत एक छोटी सी कमेटी बनाई गई, उसमें हम तीन लोग थे, चौथी वो खुद थी चेयर कर रही थी। तो एक छोटी सी बातचीत हुई, उसमें विरोध भी हुआ, लेकिन बाकी सबको ये योजना पसंद आई। तो मैडम ने कहा कि आप इसका एक प्रपोजल बनाइए। उसी समय उसका प्रपोजल बना, उसी प्रपोजल को लेकर के वो शहरयार साहब हमारे जो डीजी थे उस समय, वो उनके पास लेकर के गई और ये तुरंत उनकी समझ में आ गया, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया उसको अप्रूव कर लिया। वहां से ये योजना शुरू हुई। अब चुनौतियां उसको वहीं से ही शुरू हो गई कि इसको कैसे कार्यान्वित करना चाहिए। उसके लिए नियम बनाने थे, लोगों को पैसा कैसे दिया जाए। तो पहला विरोध तो यही हुआ कि भाई हम पैसा देंगे तो चेक से कैसे देंगे, आदिवासी इलाकों में अगर हम जाएंगे तो उनको कैश देना पड़ेगा, उनका तो खाता होता नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए थे एडीजी होकर, उन्होंने सुझाव रखा कि नहीं हम जनधन खाता खुलवाएंगे, पैसा किसी को हाथ में नहीं देंगे और ये पैसा उनके खाते में ही जाएगा। माने हम सरकार का भी काम कर रहे थे और अपना भी काम कर रहे। तो ये इस तरीके से योजनाएं शुरू हुई और पूरे देश में ये कार्यक्रम लागू किया गया। लेकिन स्टेशन की दिक्कत शुरू हो गई थी कि वहां लोग नहीं थे, लोग थे तो बहुत कम थे। जैसे शांति निकेतन में स्टेशन था तो वहाँ उस समय कोई रेगुलर पैक्स नहीं था, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 100 स्टेशन ऐसे थे जिन्होंने परेशानी भुगतते हुए भी काम किया और कुछ लोगों को तो बहुत मजा आया, उन्होंने बहुत काम किया। तो चुनौतियां शुरू से ही थी क्योंकि उनको ही लगता था कि भाई कैसे पहले सर्वे करने जाएंगे, सर्वे करने जाने के बाद फिर लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर गीतों को आइडेंटिफाई करेंगे, परंपराओं को और रीति रिवाजों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो उनके लिए बड़ा टास्क था जी। उस बड़े टास्क में लोगों ने फिर उनकी प्रामाणिकता का मसला था कि जो गीत रिकॉर्ड होकर के आएंगे वो कैसे गीत होंगे, प्रामाणिक होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे आजकल सिनेमा के गीत भी मिल जाते हैं ना लोकगीतों के,
1: लोकगीतों में मिल जाते हैं
0: लोकगीतों। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती से पार पाने के लिए हम लोगों ने तीन स्तर पर कमेटियां गठित की थी। एक तो स्टेशन के लेवल पर, ताकि स्थानीय स्तर के जो विशेषज्ञ होंगे वो ये बात तय करेंगे कि ये गीत प्रामाणिक है या नहीं है। फिर वहां से निकल करके दूसरी चुनौती हमारे सामने थी कि हम स्टेट लेवल पर हमने फिर एक दूसरी कमेटी बनाई विशेषज्ञों की, वो पूरे प्रदेश के गीतों को आइडेंटिफाई करते थे कि ये प्रामाणिक है और ये इनमें शंका है। फिर तीसरे स्तर पर हमने डायरेक्टरेट लेवल पर एक कमेटी बनाई जिसमें हम उन भाषाओं के लोगों को बुलाते थे और तय करते थे कि गीतों की प्रामाणिकता का स्तर क्या है। तो ये अपने आप में, क्योंकि देश में तकरीबन 450 से लेकर 600 बोलियां तक बोली जाती हैं, इतने लोगों को डायरेक्टरेट में बुला पाना तो संभव नहीं था। तो स्थानीय स्तर पर लोगों की बात को प्रामाणिक माना गया, फिर स्टेट लेवल पर लोगों की बात को प्रामाणिक माना गया। स्टेशन ने जो व्यवस्था की, फिर प्रांतों ने जो व्यवस्था की, उन व्यवस्थाओं के आधार पर ही हम लोग निर्णय लेते थे कि कौन से गीत प्रामाणिक है, कौन से गीत प्रामाणिक नहीं है। तो ये दो चुनौती थी। तीसरी चुनौती आंतरिक चुनौती थी। आंतरिक चुनौती ये थी कि लोगों ने, कुछ मित्रों ने हमारे ने कहना शुरू किया कि ये काम तो रेडियो का है ही नहीं जो काम आप कर रहे हैं। तो मैं कहता था कि भाई और कौन सी एजेंसी जो ये काम करेगी अगर आकाशवाणी ये काम नहीं करेगी, तो क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क किसी के पास नहीं है जितना आकाशवाणी।
1: विरासतों को बचाना भी आकाशवाणी का ही काम है।
0: ये आकाशवाणी का काम है। तो जो स्टेट लेवल की एजेंसी होती है वो अपने स्टेट का करती है, लेकिन समग्र रूप में जो काम करने का दायित्व है वो आकाशवाणी को निभाना चाहिए। फिर चौथी जो चुनौती थी वो ये थी कि लोगों ने कहा कि ये तो ब्रॉडकास्ट वर्दी नहीं है, क्योंकि हमारी शर्त थी कि हम ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं करें, और दूसरी हमारी शर्त थी कि जो पूजे हुए कलाकार हैं, जो प्रोफेशनल कलाकार हैं, हम उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, भले ही वो कितने ही गीत जानते हो, हम उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। वो सामान्य तरीके से उनकी रिकॉर्डिंग होती रहती है, अलग मसला, लेकिन इस योजना के तहत हम उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ से ये एक विरोध की स्थिति बनी। ये रिकॉर्डिंग घर घर जाकर के होती थी। अब घर घर जाकर के होती थी तो घर में जो वातावरण होता था उसी एम्बियंस में होती थी। अगर घर में गीत के ऊपर, ढोलक के ऊपर चम्मच बसती है तो चम्मच ही बसती थी उसमें। जो प्रोफेशनल कलाकार होता था वो तो कहता था तो उसको सिंथेसाइजर भी चाहिए और तबला भी चाहिए और ये भी चाहिए वो भी, और जैसे ही सारी चीजों का इस्तेमाल करते थे उनकी बीट बदल जाती थी।
1: तो सर, आपने इतनी सारी चुनौती को झेलते हुए, उन सबको साइड करते हुए आप आगे बढ़े और भारत की जो संस्कृति है और भारत के जो संस्कार हैं को संस्कार गीत के माध्यम से आपने संजोया है। तो सर, आप बातों को आगे बढ़ाते हैं, आपकी पसंद का कोई और गीत आप अगर हमारे श्रोताओं को सुनाना।
0: मुझे आप उमराव जान का जो गीत है, जो आशा भोसले ने गाया है, वो गीत आप अगर सुनना तो अच्छा लगेगा।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग और आज हमारे साथ हैं सोमदत्त शर्मा जी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। सर, ये जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के बदलते स्वरूप, जो पारंपरिक रेडियो से डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक का जो सफर चल रहा है आकाशवाणी का, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं?
1: देखिए, बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती देश में जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार हुआ है, जिसमें एफएम स्टेशंस भी हैं, उसमें प्राइवेट स्टेशंस भी हैं, उसमें आकाशवाणी के स्टेशंस भी हैं। आकाशवाणी की एक परंपरा रही है और वो रही है प्रामाणिकता की, जिसको उसने आज तक बचा करके रखा है।
0: जी,
1: जैसे मैं एक उदाहरण सिर्फ आपको देता हूँ। आकाशवाणी के एफएम चैनल जब शुरू हुए, उसके साथ साथ प्राइवेट चैनल शुरू हुए, उन्होंने एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया। वो कार्यक्रम ये था कि भाई आप इस रास्ते, दिल्ली जैसे शहर में आप इस रास्ते से जाएं या न जाएं। वो क्या करते थे कि अपना जो उनका कोई अनाउंसर होता था, उनका जो कर्मचारी होता था, वो किसी से भी कह देते कि भाई आप जहां जा रहे हैं वहां के बारे में जरा कुछ हमको हाल बता दीजिएगा, तो हम यहां उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे।
0: ट्रैफिक की जानकारी, जैसे
1: ट्रैफिक की जानकारी। वो कई दफे तो जो हमारे अपने लोग जिस रास्ते का वो बखान कर रहे होते थे, उसी रास्ते से निकल रहे होते, देखते थे वहां तो कह रहे हैं कि इधर रास्ते से न जाइए, यहाँ बड़ा जाम लगा हुआ है, और रास्ता तो पूरी तरह खुला हुआ होता था। लेकिन आकाशवाणी ने जब ये कार्यक्रम शुरू किया, उन्होंने वाकायदे ट्रैफिक पुलिस के साथ संपर्क किया और उसकी प्रामाणिकता को वाकायदे बचा करके रखा। जहाँ जो स्थिति थी वैसी ही स्थिति बनती थी। तो ये जो प्रामाणिकता थी, ये आकाशवाणी की एक अपनी धरोहर है जिसको बचा करके रखा।
0: तभी तो सर आकाशवाणी पर लोगों को विश्वास है और वो आकाशवाणी ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि पता है ना, सही जानकारी दे रहा है आकाशवाणी।
1: जी जी जी। दूसरी चीज क्या है, उद्देश्य का फर्क। आकाशवाणी सबके लिए कैटर करती है, सबके मनोरंजन का ध्यान रखती है, सबको सूचनाएं मिले इसका जानकारी, सबको शिक्षा मिले इसकी जानकारी, है ना। ये दायित्व का निर्वाह करते हुए आकाशवाणी काम करती रही है।
0: सर, आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है और देश भर में बहुत से आयोजन कार्यक्रम इस संबंध में हो रहे हैं, तो इस अवसर पर देश भर के जो श्रोता हैं, प्रसारण कर्मी या युवा ब्रॉडकास्टर हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे?
1: पहली चीज तो भाषा पर काम करने की बहुत जरूरत है, नंबर एक।
0: जी।
1: क्योंकि भाषा ही वो माध्यम है, भाषा का स्तर बचाए रखने की जरूरत है। ये प्रयोगशीलता का जमाना है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए प्रयोगों के माध्यम से लोगों को आकर्षित करना और उनके माध्यम से कंटेंट को पहचाना।
0: सर, आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और आकाशवाणी के बहुत लंबे इतिहास को आपने जो देखा और आपने जो काम किया उसके बारे में बताया। चलते चलते आपकी पसंद का कोई गीत आप सुनवाना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को?
1: मन्ना डे का कोई गाना सुनाएंगे?
0: बिल्कुल।

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 4 बजने को हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य, समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा, प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके DNA में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सकें।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझें बल्कि उसको हम रिसोर्स समझें। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे।

0: नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकिल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
0: जी बिल्कुल। आज जैसा आप जानते हैं, पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही चार तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई एनजीओ से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकिल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं। और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है, उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी हैं यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है। और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या यह अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा न जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखे हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो ग्रह 4 कंप्लाइंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड एसटीपी प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके, लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी, तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी। एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो, ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है, और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि ये इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: गौंडन साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं, और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोस्टिंग सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मैंने प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन बेस्ड को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
3: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी बेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
3: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
0: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं।

0: सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
1: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
0: इसको इस्तेमाल करने से कितने LPG की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाए?
1: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 LPG सिलेंडर की बचत होती है।
0: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
1: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
0: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। LPG सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार

0: बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी, सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है, किस तरीके से यूज कोकीन ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए, इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरेंद्र कुमार जी। सर, हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
1: सर, जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके, जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज संस्था को देते हैं, ताकि उसकी रिसाइकल कर उसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो केन्स रखे हुए हैं, ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर,
0: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद।
2: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है, या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके, जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
0: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर, हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए, कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है, प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है। हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स, लिविंग एरियाज, कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होके हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोटल्स, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है, ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है, जो दर्शाती है कि आर्मी ना सिर्फ रेगिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
0: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
3: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
0: सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए।
3: जी हाँ, बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
0: सर, हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए।
3: जी, ये जो मार्क 80 kg का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 kg प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 kg वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
0: Absolutely, 80 kg वेस्ट, आप सोचिए 80 kg वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
3: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसमें टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
0: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू सो मच सर।

0: तो इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसी के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से साइकिल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सलेंट इनिशिएटिव। आई वुड से

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा, साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुल्ली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफल मैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ This is actually a wall of kindness, which means donate what you can, take what you need. मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। Amazing initiative, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर, स्वागत है शो में। प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
3: जय हिंद, आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
2: वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं। क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
3: देखिए, अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
0: बता रहे हैं राइफल मैन दिनेश कुमार।
3: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहाँ पर डोनेट करते हैं।
0: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इजिली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
4: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया, जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें चार फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट, और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयड होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहाँ से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
4: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं, ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा, तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है, और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
0: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 305.8 एक मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं और सुन रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम शाम के 5 बजने को है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोधरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जंडी, सिंह, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनक पुर, टकिया, मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा, इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदर बसवार, केदमा, जगरना, नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के तपकरा और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये महुआडी, कोनपारा, संतपारा, फुटसेरा, टिकलीपारा, खड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, टानपारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 123 है। ये सामरसिंघा, सोहनपुर, बोजिया, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, बेहरामार, गलीमार, लोटान, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये गीत कुंवारी, गिरारी, पतरा पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासुल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

प्रायश्चित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। स्पोर्ट्स स्कैन ये कार्यक्रम सुनेगा आज रात 8:30 पर। प्रादेशिक लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00। इसमें सुनेगा मराठी सुगम संगीत, कलाकार होंगे आनंद भाटे, और सुनेगा उड़िया आधुनिक गीत जिसमें कलाकार होंगे बिजोय कुमार समंत्रोय। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा सुनेगा आज रात 9:25 पर। 5:10 पर युवाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें अपन गोट का विषय होगा आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। माटी के आखिर में आप सुनेंगे कविता पाठ समृद्धि दुबे से और सुनेगा माटी के गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे श्याम दास मानिकपुरी, और साथ ही इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे ध्रुव शर्मा और उनके साथी। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात में चर्चा होगी खेती किसानी में उन्नत कृषि उपकरण के उपयोग संग रख रखाव और सावधानी। 7:30 पर किसान वाणी में आज के सलाह क्रम में आप सुनेंगे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का महत्व। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर नीतीश तिवारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक शस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। चित्रपट संगीत शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी सभा के शेष कार्यक्रमों की, और अब आपको जानकारी दे देते हैं कल की सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की। कल रात 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण सुनेगा कल रात 9:25 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:00 सुनेगा बसंत तिमूथी का वायलिन पर बजाया राग अहिर भैरव। दिन में 1:30 पर इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे सत्यरंजन गंगेले का तबला वादन, और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल रात 10:00 सुनेगा बसंत राव देशपांडे का गाया राग होगा मधुकौंस। सुबह 8:30 पर इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में सुनेगा पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सुनीता गोडबोले से बातचीत। प्रस्तुत करता होंगे रमाशंकर। नवा बिहान इस कार्यक्रम में सुबह 9:00 सुनेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर नीति आयोग के सदस्य और भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री के सुब्रमण्यम से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे नेमी चंद साहू। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दिन में 12:00, कल शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमर गोट, और एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे कल शाम 6:30 पर। कल शाम 5:10 पर युवाणी आप सुनेंगे हिंदी में। इसमें आजकल का विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस और होगा क्रम मार्गदर्शन। 7:21 पर चौपाल में आज की बात में चर्चा होगी खेती में आधुनिक सिंचाई प्रणाली के उपयोग और महत्व। हेलो चौपाल में सुनेगा स्वच्छ दूध उत्पादन और उसका परिवहन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। हेलो चौपाल इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे चंपेश्वर गोस्वामी और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से कल की सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ।

कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए युवाओं का अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: वसुधा एक एक कुटुंब है, मिलजुल सबो संग रहिबो, प्रेम दया के दिया बार के, शांति के रद्दा दिखाबो।
1: झगड़ा झंझट दूर भगान, मया पीड़ित के बाती बरन, दुनिया मा लैका मन बर खुशहाल ननपन बनावन।
0: ढरते सूरज के लाली पुरवैया संग, संझा बेरा हाथ मा चाह के एक कप संग, कान टिका के युवानी के अगोरा करिया संगी मल्ला, अपन मयारु संगी थनेश्वरी बघेल
1: और उत्कर्ष कुमार सनबोईर के झोंकाओ
0: संझा जोहार।
1: थनेश्वरी, जब मैं आकाशवाणी आवत रहूं ना, तो हमार घर नोनी हा खोर मा अपन जहुरिया मन संग खेलत रहीस, और आवत देख पाई तो संग धरे लगीस, ले दे के मना हो भाई, तब जाके आए हूँ।
0: लड़का मन तो ऐसने बिटो थे उत्कर्ष, अब थोकन भुलवाना है तो कहीं ना कहीं ओ मल्ला खई खजानी ले मनाए ला पर थे।
1: सिर तोन में लड़का मन घर की रौनकता ला बढ़ा दे थी, जेन घर में लड़का रही थी तिहा अंगना चिड़ई मन कस चहकत रही थे,
0: और खुशी ले घर मा चारो मुड़ा उछा के लहर हा लहरावत रहती।
1: वो तो लहराबेच करी भाई, भोला भाला लैका मल्ला भगवान की रूप माने जाते, साफ सच्चा और बेफिकिर मन अपन ननपन ला बड़ सुकून ले जीते।
0: और यही लैका मन खेलत कूदत कब बड़े हो जाते ना पता नहीं लगे, और कोनो और बिना कोनो संसो फिकर के चंदा जोगनी ला देखत सांझ कुन कब सूझ जाते पता घला नहीं चले, और आज बड़े हो के संसो और जिम्मेदारी मा बंधाए हवे।
1: लैका मन के गोट बात करत सुरता आती मुला कि थनेश्वरी, आज अंतरराष्ट्रीय आक्रमकता के शिकार निर्दोष लैका मन के दिवस आए।
0: तो संगवारी हो, आज हरे आक्रमकता के शिकार निर्दोष लैका मन के अंतरराष्ट्रीय दिवस ठौका सुरता करे हस उत्कर्ष, और आज दुनिया भर के लैका मन के वो पीड़ा ला स्वीकार करे ले है जोन हा शारीरिक मानसिक और आक्रमकता भावनात्मक शोषण के शिकार होते।
1: संगवारी हो, ये दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 19 अगस्त 1982 में करे गिरीस। मूल रूप ले ये दिन इसराइल के हमला के शिकार हो या फिलिस्तानी और लेबनानी लैका मन के पीड़ा ला दुनिया की आघु लाए बर शुरू करेगी रीसे।
0: बिल्कुल संगवारी हो, जोन हा शारीरिक मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार होते उकर पीड़ा ला हमला समझना हावे। संगवारी हो, ये दिन संयुक्त राष्ट्र हा लैका मन के अधिकार मन के रक्षा बर उकर खिलाफ हुवैया हिंसा ला मिटाए बर प्रतिबद्धता के पुष्टि करते, माने कि उद्देश्य ये हावे कि लैका मन ला सुरक्षित स्वस्थ शोषण मुक्त वातावरण प्रदान करना है।
1: हर देश मा बाल संरक्षण अधिनियम होते, ओखर तहत लैका मन के कल्याण सुरक्षा बर कई ठन कानून लाते, और जेखर ले शोषण हिंसा उपेक्षा ले बाचे जा सकत है।
0: बिल्कुल, कोनो भी राष्ट्र के सुघरई उहां के शांति व्यवस्था नियम कानून ये सबो तौर तरीका हा दूसर के सीख बन जाते, ता जब उदाहरण ही हन हमन ता ये सबो तरीका हा सही रही तभे हम एक दूसर ले सीख लेबो।
1: फिर थनेश्वरी, हम देखथन कि घर परिवार में घलो दुटप्पा कभू बातों बाक हो जाते तो ओमा लैका मन ऊपर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ते भाई, बड़का मन के बीच में लैका मन घलो पिसा जाते।
0: बिल्कुल, ये सही गोट लगा के है उत्कर्ष। ऐसने ही जब कोनो दू राष्ट्र के बीच हिंसक तनाव होते तो युद्ध जैसे स्थिति है बन जाते, जेमे कब कहाँ कतिक बेर का हो जाही ना एकर ठिकाना नहीं रहा।
1: सही में ये तो बिल्कुल सोचे के गोटा है कि मानवता है घलो कभू कभू अतका गिर जाती।

0: कि मनखे ल घलो मनखे नजर नहीं आए
1: नहीं आए।
0: दो राष्ट्र की लड़ाई मा कभू कभू कतको परिवार के सदस्य मन घलो खो जाते, एक दूसरा ले अलग हो जाते, लइका मन घलो अपन माता पिता ताला खो देते भाई।
1: सिरतोन में ये अनाथ बेघर लइका मन के आंसू ला कौन समझे, जिकर कोनो कसूर नहीं है। ता ऐसन परिस्थिति में मानवता ला समझे ला पड़ी कि ऐसन लड़ाई मा काखरो जीत नहीं होए बल्कि विनाश ही होते।
0: ता काबर नहीं शांति और अहिंसा सर्वधर्म समाज पर जीव दया रखन, दया माया के भाव रखन।
1: हम पृथ्वी मा सब जन एक परिवार बरोबर हन और ये परिवार मा हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत ला अपनावन, विश्व शांति के पाठ ला हम दुनिया ला पढ़ावन।
0: काबर की विश्व शांति की स्थापना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, हमर देश विश्व गुरु कहलाते, त काबर नहीं हम विश्व ला अहिंसा शांति संदेश ला पठवन, मिलजुल के माया भाव संग संग चलन।

0: संगवारी हो अभी सुनत रहेन ये सुघर माटी के गीत ला जेनला अपन सुर में सजाय रहीन लक्ष्मण मस्तुरिया और साथी मन हा।
1: और ये गीत ला सुने बर चाह रहीन ये संगी मन हा। दतरंगी भाटा पारा ले नोखी लाल वर्मा, हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्र मणि वर्मा मन, लुकाउपाली छतवन ले पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह निहारिका, पंकज सिंह सूर्यवंशी मन, डोंडीलोहारा बालोद ले देवशंकर तामुरिया, अजय देव तुषार डॉली बेबी पूजा आरती प्रभा देवी तामुरिया मन, बोड़सरा नैला ले प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विभूति शाहू मन, सौंगा मगल लोड ले फनीस कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित कुमार देवी देविका रानी गजेंद्र हेयांश कुमार चंदन मन, खलारी भीमा खोज जीएल साहू सरोज छोटी पिंकी साहू मन।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने,
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
9: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
10: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
9: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
10: 47 सालों से निरंतर सेवा में
9: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड तेली बांधा रायपुर।
0: संगी हो जब अपन संस्कृति के बात होते तो हमार सबो परंपरा रीति रिवाज तीज त्यौहार गीत संगीत सबोला हम हसोरिया थन और अपन माटी के गर्व करत ओकर जितका बखान करथन ना कमी छे। और यही एक सुघर भावला अपन कविता में सुखर ढंग ले सजा के लाने हावे क्रम संस्कृति के महक मा समृद्धि दुबे हा। तो चलो सुनथन ओकर कविता पाठ।
11: मेरी पहली कविता का शीर्षक है छत्तीसगढ़ के लुकात संस्कृति। छत्तीसगढ़ के संस्कृति न जाने कहाँ लुकात है, नवा नवा लयिका मन बस अंग्रेजी के गुनगात है। भूलत है अपन भाकाला, भूलत है अपन भाकाला और अंग्रेजी बड़बड़ात है, छत्तीसगढ़ के भाका न जाने कहाँ लुकात है। सुघर सुघर शब्द ला छोड़ के, सुघर सुघर शब्द ला छोड़ के हाय हेलो के गुनगात है और छत्तीसगढ़ी बोलैया ला अनपढ़ बतात है। खुद हा तो बोले बर नहीं जाने, खुद हा तो बोले बर नहीं जाने और बोलैया के मजाक उड़ाते, छत्तीसगढ़ी भाका न जाने कहाँ लुकाते। हमरे चाउर ला खा के, हमरे चाउर ला खा के हमन ला ही ताव दिखाते। सुशी चाउमीन का खालिस अब बोरे बासी खाए ला जाते। जे बोरे बासी हतोला, जे बोरे बासी

इहा तोला ए काबिल बनाए हे, ओखरे बुराई करथस बाबू, तोर शरम कहाँ गवाए हे। इज्जत कर अपन भाका के, इज्जत कर अपन भाका के, ओही तोला ए काबिल बनाए। सालसा डांस का सीख लिस, सालसा डांस का सीख लिस, अब राउत नाचा करे बनबू बनाथे, और सुआ नचैया टूरी मन ला बेचारी बताते। नाचा तो लुका ही गे, नाचा तो लुका ही गे, अब सब कॉमेडी सोला देखे बर जाते। छत्तीसगढ़ के संस्कृति ना जाने कहाँ लुकाते। अपन कवि मन ला सुने बर छोड़ के विदेशी मन के गाना ला सुना थे, और ओ मन के संस्कृति ला अपनाए के चक्कर मा अपन परिवार ला भूला थे। तीजा पोरा छेर छेरा हमर संस्कृति के आन है, राजिम कुम छत्तीसगढ़िया मन के अभिमान है। ढोकरा कला ले विदेशी मन भी अपन दीवार ला सजाते, और गोदना के नाम ले डर्राए पहली जेमन, गोदना के नाम ले डर्राए पहली जेमन, ओही मन अब निपोर टैटू बनवाते, और छत्तीसगढ़ के संस्कृति और भाका न जाने कहाँ लुकाते। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है छत्तीसगढ़ के बखानी। मोर छत्तीसगढ़ के मैं का करो बखानी, मोर छत्तीसगढ़ के मैं का करो बखानी, यहाँ के अलग है कहानी, यहाँ के अलग है छे कहानी। दाई ददा के माया है, भाई बहनी के संग है, हरियर हरियर खेत बाड़ी, यहाँ जिए के अलगेच ढंग है। पसिया अवनून के मैं का करो बखानी, यहाँ के अलग है कहानी, यहाँ के अलगे छे कहानी। पीपर के छाँव है और तरिया तीर में गाँव है, राम जी के यहाँ पड़े सुख पाँव है। शहर ले ज्यादा यहाँ सुघर सुघर गाँव है, यहाँ के सुंदरता के मैं का ही करो बखानी, यहाँ के अलग है कहानी, यहाँ के अलगे छे कहानी। सूता और रुपया यहाँ के शान है, फुल्ली और किनवा के अलग ही आन है। छत्तीसगढ़ी भाका हमर अभिमान है, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया यही हमर पहचान है। गोदना के में का ही करो बखानी, यहाँ के अलग है कहानी, यहाँ के अलगे छे कहानी। सुरेंद्र दादा के कविता और तीजन बाई के पंडवानी। राजेश चौहान असन महान क्रिकेटर, राजेश चौहान असन महान क्रिकेटर, और अवंती बाई यहाँ के रानी। राम असन भाचा और कौशल्या बेटी महारानी, विवेकानंद असन महान लयिका यहाँ बिताए अपन जवानी। ऐसन महान छत्तीसगढ़ के में का करो बखानी, यहाँ के अलग है कहानी, यहाँ के अलग है छे कहानी। गोबर ले लिपाए घर बार और खपरा ले तो पाए है छानी, काष्ट कला ले लकड़ी माँ बने सुघर निशानी। गोंद कला दर्शात है वन जीव के कहानी, और शरीर भरमा राम गोदवाए है, शरीर भरमा राम गोदवाए है यहाँ के प्रसिद्ध राम नामी। ढोकरा कला के में का ही करो बखानी, यहाँ के अलग है कहानी, यहाँ के अलग है छे कहानी। छत्तीस अकन भाजी और छत्तीस ठन गढ़ है, ओही नाम ले प्रसिद्ध हमर छत्तीसगढ़ है। अंगाकर रोटी के में का करो बखानी, यहाँ के अलग है कहानी, यहाँ के अलग है छे कहानी। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है लइका मन मोबाइल पागे। वो लइका मन के गुल्ली डंडा और बाटी कहाँ गंवागे, लुका छुपई के ढूंढैया भी थकागे, कुल्फी बर्फ बेचैया घागे, और बुढ़ई के बाल तको सिरागे। हो गए है मोहल्ला सुना जब ले, लइका मन है मोबाइल पागे, लइका मन है मोबाइल पागे। वो परिवार के संग खाना खाए वाले समय लुकागे, पापा आते वक्त कुछ ले आबे, ये कहिया मन ला ऑनलाइन ऑर्डर करना आगे। गुड़िया और रिमोट कार बेचैया घागे, और मिट्टी के बर्तन तको अब सिरागे, जब ले लइका मन है मोबाइल पागे। दुर्रा मिट्टी के खेले लइका मन, दुर्रा मिट्टी के खेले लइका मन, स्वस्थ बचपन बितागे, और आजकल के हाइजीन के चक्कर में आउ 10 नया बीमारी आगे। बंद हो गए शरीर है बढ़ना, बंद हो गए शरीर है बढ़ना, तंदुरुस्ती तको गंवागे, और हो गए आँखी खराब जब ले लइका मन है मोबाइल पागे। भूल गए आदर सत्कार करना, भूल गए आदर सत्कार करना, और संस्कार ला घलोक भुलागे। मोबाइल के आगे ए मन, मोबाइल के आगे ए मन, सब बोला गलत ठहरा गे। गेम के चक्कर मा दूसर के जान लेने तक के ख्याल मन मा आगे, जब ले लइका मन हा मोबाइल पागे, लइका मन हा मोबाइल पागे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बेटी के मन की बात। अपन बनिहारी के कमाई ला दहेज मा नहीं मोर पढ़ाई मा लगाबे, पढ़ाबे लिखाबे खूब अपन गोड़ मा खड़ा होना बताबे, बुढ़ापा मा बन सको तोर सहारा इसने संस्कार सिखाबे। जब बन जाओ अधिकारी में, जब बन जाओ अधिकारी में, ओखरे बाद मोर बर रिश्ता देखे ला जाबे, अपन बनिहारी के कमाई ला दहेज में नहीं मोर पढ़ाई में लगाबे। अगर मांगी दहेज टूरा वाला मन, अगर मांगी दहेज टूरा वाला मन, तुरंत कानून के पाठ पढ़ाबे। बेटी

0: बोझ नहीं अभिमान होते ये बात ल सिखाबे। और कही अगर नहीं करवाबो नौकरी ऐसा रिश्ता ला तुरंत ठुकराबे, मोर भविष्य लाते मिट्टी म झन मिलाबे। और भले बैठाए रखबे घर म जीवन भर, पर तोर नोनी ला गलत घर म झन छुकवाबे, अपन बनिहारी के कमाई ला दहेज म नहीं मोर पढ़ाई म लगावे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बीत बे सुघर बचपन और आगे जवानी। वो बचपन की मस्ती, वो दादी नानी के कहानी, वो चोर पुलिस मंत्री और राजा रानी, वो खेले में करत रहन अपन मनमानी, और माँ के लुगरा पहन के बहिनी मन बन जावत रहीस देवरानी जेठानी। बीत गए वो सुघर बचपन और आगे जवानी, वो गोटा के खेल, वो पच्चीसा के तिकड़मबाजी, वो अ से ज्ञ तक वर्णमाला और बारह खड़ी याद है मुजुबानी। वो अंगना में कूदत बछिया, वो पीपर के छाँव रही सब बड़ सुहानी, और कूलर के ठंडा हवा और ठंडा रहीस करसा के पानी। बीत गए सुघर बचपन और आगे जवानी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है ते आज के लइका हरस हिम्मत ल झन गवाबे। पढ़बे लिखबे खूब हर क्षेत्र में कामयाबी पाबे रे, बढ़ाबे घर के इज्जत खूब नाम कमाबे रे, मेहनत करबे खूब हर जंगला जीत के आबे रे, ते आज के लइका हरस हिम्मत ल झन गवाबे रे। चलबे सही रद्दा मा गलत रद्दा झन अपनाबे रे, दाई ददा के आँखी मा आंसू झन लाबे रे, दूसर के दिल ते झन दुखाबे रे, और झूठ के बुनियाद मा रिश्ता मत चलाबे रे, ते आज के लइका हरस हिम्मत ला झन गवाबे रे। नशा ला ते जीवन में कभी मत अपनाबे रे, दोस्ती रिश्तेदारी सब बोला दिल से निभाबे रे, पाके कामयाबी पूरा घर ला खुशियां से सजाबे रे, ते आज के लइका हरस हिम्मत ला झन गवाबे रे, मुरगली कविता के शीर्षक है बचपन के खौवा। वो रंगीन डब्बा माँ आए मीठा सौंफ याद है जी, वो साइकिल में बिके बुढ़ई के बाल याद है जी, याद है वो गर्मी में बिके वाले पेप्सी, वो पॉपिंस के स्वाद याद है जी, याद है वो जेली चॉकलेट, वो चुरपुर रड्डा याद है जी, वो पान पसंद के टाफी के अलग ही बात है जी, याद है डंडी में लगे वाले इमली, वो आम जाम के स्वाद याद है जी, वो उंगली में फंसाए वाले क्रैक्स के अलग ही बात है जी, याद है वो अतरंगी जैली मन, याद है वो टैटू वाले टॉफी मन, याद है वो मुंह में फूटे वाले चूरा, वो इमली के पाउच याद है जी, याद है वो अतरंगी नाम के खौवा, पापा के आते ही पैसा मांगना याद है जी, याद है वो बुमर से फुलोए गुब्बारा, वो फटाफट के गोली याद है जी, हमर बचपन के खौवा के अलग ही बात है जी, मोर अगले कविता के शीर्षक है ये कैसे जमाना आगे। बचपन ले लइका मन मोबाइल पागे, दाई ददा के मया ला भूल प्यार मा अपन जान लुटागे, पैसा के चक्कर मा सब वो रिश्ता भुलागे, ये कैसे जमाना आगे। मेहनत करना भुलागे और सबो माल अच्छागे, ए आई है सबके कल्पना ला खागे, मन के भीतर सबके लालचीपना भरागे, ये कैसे जमाना आगे। सम्मान करना छोड़ दीस और सर झुकाना भुलागे, ऑनलाइन पढ़ना का सीख लीस पुस्तक कॉपी ह गवागे, थोड़े दूर पैदल चले माही सर चकरागे, ये कैसे जमाना आगे।
1: संगी हो अभी हमन सुनत रहिन क्रम माटी के आखर में समृद्धि दुबे की कविता पाठ।
2: तो संगवारी हो गोट बात तो आगू करबो, फिर चलो सुनथन ये सुकर माटी के गीतला।

0: संगवारी हो ये गीतला अपन शर्मा सजाए रहीस रमेश ठाकुर लता खापड़ी औ अनीता वाष्णिक मन
1: अभी गीतला सुने बर चाह रही हमार संगवारी मन हवे लक्षणपुर ले विश्वनाथ साहू पंकज तिरुपति साहू डौंडी लोहारा ले डोमेन्द्र नेताम गंगेश्वरी चंचल कामेश माहिर नेताम कोपरा राजिम ले नारायण पटेल देवकी शैलबाई राधिका रूपेश तुषार पटेल रायपुर ले नागेश वर्मा संगीता वर्मा यामिनी प्रीति अभिजीत यादव योगेंद्र गंगवीर अभिलाषा शर्मा दलदल सिवनी ले हवे संगवारी मन रेखा पटेल अमित अजीत जितेंद्र पटेल अंजू सरोज प्रीति पटेल मनहा और संगवारी मन हावे कन्नेवाड़ा ले देवेंद्र कुमार सोनवानी लक्ष्मीना सोनवानी संगवारी मन हावे।
0: छत्तीसगढ़ के ददरिया मन ला लोकगीत के रानी कहे जाते ददरिया मानो मल्ला मुक्त कर देते
1: मंत्र मुक्त तो कर ही देते और हमारे यहाँ हर लोकगीत मल्ला हना उत्कर्ष संस्कृति ले जुड़े हावे संगे संग मया प्रीत के सुखर बंधना माँ घलो बंधे हावे।
0: थनेश्वरी ये गीतला सुनबो फिर एक बात बताओ कि ये गीतला जब हमन विदेशी मेहमान हमारे यहाँ राज्य स्थापना के बेर राजोत्सव आए रही ना तो ये गीत मा गजब नाच दिखा रही और एक हर वीडियो मन ना इंटरनेट मा अब्बड़ वायरल हो रही से
1: तो हाँ अच्छा भारी सोशल मीडिया मा एक्टिव रही था उत्कर्ष
0: ता सोशल मीडिया मनोरंजन के संगे संग देश दुनिया के जानकारी घलो देते भाई
1: जानकारी तो देते फिर लेना उत्कर्ष संगवारी मनला मनोरंजन खातिर हमन यह गीत सुना देथन

0: संगी हो अभी सुनत रहिन जिस घर माटे के कितला औ ओला अपन सर मसा जा रहीस विदुषी ममता चंद्राकर
1: अभी गीतला सुने पर चाहिए हमारे संगवारी मन परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी खुमेंद्र

0: सारणी मस्या पीपर पारा पालछुआ मुंगेली लेहे उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका दिवाकर कोरासी ले संगवारी मनहावय पवन कुमार साहू क्रांति देवी पंकज सुष्मिता दीपिका साहू छत्तीसगढ़ पथरिया भरे वाले चंदूलाल सिंगरौल नोमेश नेहा वानिया सिंगरौल बोगाटोला मोहला मानपुर ले हवय संगवारी मन मानिक राम सिन्हा तारामती मुनिंद्र इंदु चांदनी सविता देवी सिन्हा बंगला मटिया बालोद ले शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रयंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे कुमरदा राजनांदगांव ले ताराचंद साहू ओम माही धर्मेंद्र साहू जवाहर नगर दुर्ग ले आरसी कांबड़े करुणा मीना अश्विनी विपुल कांबड़े देवरी भाटापारा ले मुकेश कुमार रजक युवान हाव्या तन्नु नित्या रजक सहसपुर लोहारा दनिया खोदले गुनीराम राजपूत संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज सूरज राजपूत भीमखोज तरपुंगी दे संतोष गुप्ता हितेश होमेश लक्ष्मी प्रतिभा गुप्ता पुतकी कला कवर्धले राधेश्याम पांडे वीणा विनय शंकर नयन सोमांशु पांडे गेंदाटोला बाजार चौकले बीरेंद्र गुप्ता अंजलि योगिता और गजेंद्र गुप्ता मनहा संगवारी हो हमें छत्तीसगढ़ में वनांचल में निवास करिया बहुत अकन गांव हावे जेमान रोजी रोटी बर मुख्यतः खेती किसानी और वन उपज ऊपर निर्भर होते
1: और पर्यावरण ऊपर आश्रित हंता प्रकृति हमला बहुत अकन जिनिस ले लाभान्वित करते
0: बिल्कुल
1: ता हमला ओखर सेवा जतन घलो करना चाहिए
0: बिल्कुल और बदला में हमला ओखर सेवा जतन तो बिल्कुल करना ही चाहिए भरपूर मात्रा में भाई
1: हाँ
0: काबर की जेन जिनिस आज शहर में कीमती दाम में मिलत है गवई के मन हा ओला उही फल फूल ला मुफ्त में आसानी से मिल जाते हो मला जेखर ले उनकर आर्थिक आय घलो मजबूत हो जाते
1: और ये प्राकृतिक फल फूल हा शरीर बर बड़ लाभदायक है एखर सिती कहिबो संगी हो कभो कभो गांव गवई घलो घूम लेना चाहिए
0: हाँ ये गोटता सिर तुन कहा था उसकर तो मैं हाँ तोर गांव कोती घूमे बर जरूर आऊं
1: बिल्कुल भाई
0: ता चल यही गोट बात संग सुन थन ये सुगर गीतला

मढ़ा दे बेका, चल चल फिरतिया बेरे टूरी, रांधे रहूं खिचड़ी ला खाके जा। चल चल फिरतिया बेरे टूरी, रांधे रहूं खिचड़ी ला खाके जा।

0: संगी हो अभी सुनत रहिन ये सुघर माटी के गीतला। जिला अपन शर्मा सजा रहिन भूपेंद्र साहू और पुष्पलता कौशिक मन
1: ये गीतला सुने बर चाहरीन हमारे संगवारी मन हा भिलाई ले मुकेश शर्मा, सरिता गौरव गरिमा शर्मा, पंजौनिया जालौन उत्तर प्रदेश ले सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, पुरेना खपरी ले संगवारी मन हावे केशव प्रसाद साहू, अनीता अनुष्का उषा साहू, लोरमी चचिड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी, पुरैना शहीद नगरी छुई खदान ले धर्मेंद्र जंघेल, संतराम लोधी, नागेश्वर साहूकार लोधी, कोटना पानी डोंगरगढ़ ले कैलाश कुमार मंडावी, लीलेश्वरी रूपेश गरिमा नोनी छनिष्का दादू मनहा। संगवारी हो नवटप्पा के लहुट्टी हो गए और उमस घलो बाढ़ गे हावे और ऐसन घाम मा गर्मी मा खाबे पीबे तहू हा कमिच लागते ते कतको खाड़र।
0: हाँ थनेश्वरी, आप अपन पसंद के साग भाजी नहीं खावे तब तक मन मारबे नहीं
1: मारबे नहीं करे, यही बात है उत्कर्ष। और गर्मी दिन मा भाजी पाला हा बने मीठा थे।
0: हाँ, बोरे बासी
1: घलो अपन शरीर थोकन ठंडा ही देते। और खास बात के का कहते रागी रागी और ओकर पेज जिला हमन मड़िया पेज कह के जानथन बिल्कुल त ओहा ओखर से काहे हमर शरीर ला थोकन ठंडकता मिलथे। तो भाई गर्मी के दिन मा अपन खास ख्याल रखा और ठंडा पेय पदार्थ खान पान जोन है हरा साग भाजी के बिल्कुल सेवन करो। और यही गुड़बासन चलो सुनथन ये गीतला।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: संगवारी हो, अभी एकल पहली सुनत रहे ये सुघर माटी गीत, जिनला अपन सुर दे रही ने केदार यादव और साधना यादव मना।
4: और सुने बर चाहरीस आरीनगर घोका भिलैले उत्तम सिंह, मोरस अनिल, अजीत आयुष, नंदिनी जंघेलमन, कन्या दमोह बालाघाट, धुरवा राम साहू, परश राम, देवानंद साहू मन, पीपल लोड सरगांव दीपेश, पूनम, ज्योति, सिवांश वर्मा, शांकरा राजनांदगांव, नारायण लाल साहू, कुलवंती, देवेंद्र प्रताप, नेहा मिली, दिलेश्वरी, प्रणय तारुंत, पलारी ले प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस, यशस्वी वर्मा मन, सिंगारवाड़ी घुटकुले भगत राम पटेल, किशन सोना, मानवी पटेल मन, आमाखुंडरा रेंगाखाल ले देवी सिंह नेताम, राजेंद्र चंद्रदीप, कृष्णाबाई नेताम, संदीप दक्षिण, दक्षप्रिया, गी सरगम महामाया, चित्रलेखा नेताम मन, कोटनिया पानी डोंगरगढ़ ले कैलाश कुमार मंडावी, लेश्वरी रूपेश, गरिमा नोनी, कनिष्का दादो मन।
3: और संगवारी मन हावय पीपरिया ले कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडे नवापारा ले दीपक गुप्ता, अंकु राघव गुप्ता, लोरमी ले नारायण खांडे, रजनी, तुषार, समीर, रेखा, दिवाकर मन। संगवारी मन हावय शीतला नगर दुर्ग ले शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर संगवारी मन। संगवारी हो, जाए के बेरा हो गया हावय, तो जाए के पहली बता देथन काली के कार्यक्रम। काली के कार्यक्रम युवाणी सजी हिंदी में, जेमें आप मन सुनहु मार्गदर्शन, 12वीं के बाद प्रबंधन के क्षेत्र में संभावनाएं, डॉक्टर सुमिता दवे से दीपक हटवार के बातचीत, और संग में सुनहु अपनी पसंद। और यही गोट बात संग आज की युवाणी ले अपन संगवारी थनेश्वरी बघेल
4: और उत्कर्ष सुनबोला
3: देवा विदा। नमस्कार, नमस्कार।

0: युवाओं का कार्यक्रम युवाणी अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं समाचार, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण ये है कि देश के नागरिकों ने ये समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई रिंग को कड़े मुकाबले में हराया। लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित,
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित,
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। नगरीय निकाय चुनाई में अध्यक्ष के 5 3 पद में भाजपा और 2 में कांग्रेस जीत हासिल करिस। शासन स्तर में हुए सकारात्मक चर्चा होए के बाद तहसीलदार मन अपन हड़ताल स्थगित कर दे है और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गए है। केरलम पहुंचे के बाद मानसून ला छत्तीसगढ़ तक पहुंचे में 15 से 20 दिन के बेरा लाग थे। अब समाचार विस्तार ले। नगरीय निकाय के आम और उपचुनाव पर आज मतगणना हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ले मिले जानकारी के अनुसार नगरीय निकाय में

0: अध्यक्ष के 5 मले 3 पद में भाजपा और 2 पद में कांग्रेस जीत हासिल करीस। उन्हें पार्षद के 71 पद मले 39 में भाजपा और 30 में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतीन है। 2 पद में निर्दलीय प्रत्याशी मन जीत हासिल करे है। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर मतगणना मतदान के दिन ही हो गए रहीस। आज सारिणीकरण करेगीस और जीते हुए प्रत्याशी मन ला प्रमाण पत्र जारी करेगीस। बताइन है कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय मन के आम और उपचुनाव पर 1 जून के मतदान हुई रहीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा हुए में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के जनता कोती ले श्री मोदी ला बधाई और शुभकामना दिन। उमन किहिन के ए 12 बच्छर में देश बहुत अकन ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करे है। संघरा विकास सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नवा आयाम स्थापित करे है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में देश भर के 42 उत्कृष्ट पंचायत मन ला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करीन। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के सरदेह ग्राम पंचायत ला स्वच्छ और हरित पंचायत के पुरस्कार प्रदान करेगीस। तहसीलदार मन अपन हड़ताल स्थगित कर दे है। शासन स्तर में हुए सकारात्मक चर्चा, आरोपी मन के खिलाफ FIR और वैधानिक कार्रवाई शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ सामूहिक अवकाश स्थगित करे के निर्णय ले है। संघ स्पष्ट करे है कि प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आज ले नियमित काम में लौट गिन है। संघ के प्रांत अध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरिया बताइन कि 2 नामजद आरोपी मन के थाना में समर्पण के बाद हड़ताल स्थगित करे के निर्णय लेगीस। बता दन कि सरगुजा के राजापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक संघ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डाले के मामला में प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक विरोध जतात 1 जून ले सामूहिक अवकाश में रहिन। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के भीखमपुरा गांव पहुंचीन। इस दौरान मुख्यमंत्री जन चौपाल लगा के ग्रामीण मन ले गोट बात करीन और शासन के जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन के जानकारी लीन। श्री साय भीखमपुरा गांव करा स्थित सपेरा बस्ती घलो पहुंचीन, जिहां ओमन PM आवास योजना के हितग्राही मन ले भेंट करके ओमन के समस्या सुनिन। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप विभागीय अधिकारी मल्ला निर्देश दिन है कि किसान मल्ला बेरा में खातु उपलब्ध कराए जाए। रासायनिक उर्वरक के उपलब्धता और वितरण व्यवस्था के समीक्षा करत श्री कश्यप जम्मू सहकारी समिति के गोदाम में जरूरी उर्वरक मन के पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करे बर कहिन। श्री कश्यप किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के विस्तार में जोर देवत जम्मू जिला में विशेष शिविर आयोजित करे के निर्देश दिन। प्रदेश में किसान मन के आय बढ़ाए और कृषि क्षेत्र में विविधीकरण ला बढ़ावा दे के उद्देश्य ले राज्य सरकार बासमती धान के खेती ला प्रोत्साहित करे के निर्णय ले है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के अध्यक्षता में नवा रायपुर में ए विषय में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगीस। बैठक में श्री नेताम कहिन कि राज्य सरकार किसान मन के आय दोगुना करे के लक्ष्य के संग बासमती धान के खेती ला प्रोत्साहित करही। ओमन अधिकारी मल्ला ए दिशा में गंभीरता ले काम करे के निर्देश दिन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। विश्व पर्यावरण दिवस के मौका में काली 5 जून के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग डहाले रायपुर के राजीव स्मृति वन में एक कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम में आयोजित एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो ही, उन्हें वन मंत्री केदार कश्यप विशिष्ट अतिथि हो ही। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख अरुण कुमार पांडे बताइन कि ए मौका में मुख्यमंत्री और वन मंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान के शुभारंभ करही। उन्हें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल डहाले विश्व पर्यावरण दिवस में काली रायपुर में कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। कार्यक्रम में मुख्य

0: अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी शामिल होंगी। कार्यक्रम के शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षक मन के प्रशिक्षण सत्र ले होगी। छत्तीसगढ़ के 5 नवा शासकीय मेडिकल कॉलेज में 149 पद मन ऊपर संविदा भर्ती करे जाही। चिकित्सा शिक्षा विभाग दंतेवाड़ा मनेन्द्रगढ़ कुनकुरी जांजगीर चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेज पर प्राध्यापक सह प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पद में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करे है। आवेदन के आखिरी तारीख 15 जून निर्धारित करे गए है। विभाग के अनुसार पात्र अभ्यर्थी मन के चयन दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार में करे जाही। इच्छुक उम्मीदवार विभाग के आधिकारिक वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकत हैं। दुर्ग जिला में इबोला वायरस लले के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गए है। कांगो इथियोपिया और युगांडा ले लहुटे 3 लोगन मनला इबोला वायरस के संदिग्ध मान के ओमन के निगरानी करे जाते। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह घलो एकर पुष्टि करत बतायन कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP ले सूचना मिले के बाद स्वास्थ्य विभाग संबंधित लोकन मल्ला पहचान के ओमल्ला होम आइसोलेशन में राखे के निर्देश दे है। बता दन कि केंद्र सरकार इथियोपिया और युगांडा ले आए 2 मनखे मन के आने आने एयरपोर्ट के जरिया सीधा दुर्ग पहुंचे के जानकारी दे रहीस, जबकि कांगो ले लौटे 1 मनखे पहली मुंबई में रुकिस और एकर बाद दुर्ग पहुंचिस। प्रदेश में इबोला वायरस ले जुड़े संदिग्ध मन के ए पहली मामला आगू आए के सेती स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरतत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली रायपुर में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनैया पंजीकृत श्रमिक परिवार मन के मेधावी लयिका मल्ला सम्मानित करही। योजना के तहत हर एक मेधावी छात्र ले 1,00,000 रुपया के प्रोत्साहन राशि दे जाही। एकरे संग दुपहिया गाड़ी खरीदे बर 1,00,000 रुपया के विशेष अनुदान दे के घलो प्रावधान है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गए है। मौसम विभाग एकर पुष्टि करत बताइस कि मानसून 3 दिन के देरी ले केरलम पहुंचे है। मानसून के 1 जून के केरलम पहुंचे के संभावना रहीस। केरलम पहुंचे के बाद मानसून ला छत्तीसगढ़ तक पहुंचे में 15-20 दिन के बेरा लाग थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हकीन है कि खरीफ सीजन पर खातू और बीजा के पर्याप्त व्यवस्था करे गए है और कालाबाजारी रोके पर निगरानी रखे जाते। रायपुर में दूरदर्शन डहर ले आयोजित मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में ओमन प्रदेश के आने आने जिला ले आए किसान मन ले चर्चा करके खेती किसानी में नवा तकनीक अपनाए के आग्रह करिन। मुख्यमंत्री है कहिन कि राज्य सरकार ड्रोन तकनीक नैनो उर्वरक जैविक खेती और फसल विविधीकरण ला बढ़ावा दे के कृषि ला ज्यादा फायदामंद और टिकाऊ बनाए बर काम करत है। श्री साय है कहिन कि खेती केवल आजीविके के साधन नहीं बल्कि हमार संस्कृति और पहचान के आधार है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष के 5 मले 3 पद में भाजपा और 2 पद में कांग्रेस जीत हासिल करिस। शासन स्तर में हुए सकारात्मक चर्चा होए के बाद तहसीलदार मन अपन हड़ताल स्थगित कर दे है और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गए है। केरलम पहुंचे के बाद मानसून ला छत्तीसगढ़ तक पहुंचे में 15-20 दिन के बेरा लाग थे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए संस्कृत में समाचार।
2: इयम आकाशवाणी। संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्यः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेन्सुवेला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। वयोवृत्तः चलचित्र निर्माता पहलाज निहलानी अद्य दिवंगतः। अमेरिका देशस्य प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपम ईरान देशं विरुद्ध अग्रिम सैन्य कार्याचरणात् निरुद्धुं प्रस्तावं स्वीकरोत्।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।
2: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में कलाकार हैं श्यामदास मानिकपुरी और उनके साथी।

श्यामदास मानिकपुरी की आवाज़ में अभी आपने सुना ये कृष्ण भजन। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों से।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में कलाकार थे श्याम दास मानिकपुरी और उनके साथी। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल

0: और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के तहत मतगणना के बाद आज परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष के 5 में से 3 पदों पर भाजपा और 2 पदों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। जशपुर जिले की सरदी ग्राम पंचायत सहित 42 पंचायतों को आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल प्रदेश में होंगे अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कल रायपुर में एक पेड़ माह के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया है। अब समाचार विस्तार से। नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव के लिए आज मतगणना हुई। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 पदों में से 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। वहीं पार्षद के 71 पदों में से 39 पर भाजपा और 30 पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। 2 पदों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतगणना मतदान के दिन ही हो गई थी, आज सारणीकरण किया गया और विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम तथा उपचुनाव के लिए 1 जून को मतदान हुआ था। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली में देशभर के 42 उत्कृष्ट पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की सरदी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री सिंह ने पुरस्कार विजेता पंचायतों से कहा कि वे सर्वोत्तम तौर तरीकों को साझा करें, नवाचार को बढ़ावा देकर महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को मजबूत करके और अंतिम सिरे तक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करके आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से श्री मोदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और विकास, सुशासन तथा जनकल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं।
7: ऐतिहासिक काम हुए, उनका पहला 5 साल गरीब कल्याण के काम हुए हैं और दूसरे कार्यकाल में बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हुए हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 ये हटा है, आपका अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का मंदिर 5 वर्षों के संघर्ष के बाद वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है, मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए 3 तलाक बिल पास हुआ है। तो ऐसे काम जो असंभव से दिखते थे, माननीय दूरदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब पूरे हुए हैं।
6: तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। शासन स्तर पर हुई सकारात्मक चर्चा,

0: आरोपियों के खिलाफ एफआईआर और वैधानिक कार्रवाई शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने सामूहिक अवकाश स्थगित करने का फैसला लिया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आज से नियमित कार्य पर लौट गए हैं। संघ के प्रांत अध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे ने बताया कि दो नामजद आरोपियों के थाने में समर्पण के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
1: इस बात को लेकर चर्चा हुई थी तो जल्दी कार्रवाई कराना कराएंगे। गिरफ्तारी होने पर हम अपने आंदोलन समाप्त कर देंगे। तो अभी हमारे आंदोलन जो है पूरी गिरफ्तारी नहीं होने तक स्थगित किया गया है 15 दिन के लिए, और यदि पुनः बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो 15 दिन बाद भी ये आंदोलन फिर से चालू किया जा सकता है।
0: गौरतलब है कि सरगुजा के राजापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक विरोध जताते हुए 1 जून से सामूहिक अवकाश पर थे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के भिखमपुरा गांव पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत कर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। श्री साय भिखमपुरा गांव के पास स्थित सपेरा बस्ती भी पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। योजना के तहत प्रत्येक मेधावी छात्र को 1,00,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 1,00,000 रूपये का विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में से 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांजगीर चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेजों के लिए प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं, और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल 5 जून को वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख अरुण कुमार पांडे ने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री और वन मंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। श्री पांडे ने प्रदेशवासियों से पौधरोपण करने की अपील की।
2: कल पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्मृति वन में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें लोग आएंगे। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाहे वाटर बॉडीज हो, वेटलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जंगलों की सुरक्षा का काम है, इको रेस्टोरेशन का काम हो रहा है और ये पूरा प्रयास चल रहा है कि वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण कार्य जंगलों में जो हम कर रहे हैं उससे जो जल स्तर बढ़ रहा है, सारे प्रयास इस तरीके से हो रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा हो और ज्यादा से ज्यादा इस दिशा में नवाचार के कार्य हो सके।
0: वहीं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर कल रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास विषय पर संगोष्ठी तथा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल गौरेला, पिंडरा, मारवाही और जांजगीर चांपा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश डेका ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बढ़ते पर्यावरणीय संकट और भविष्य में संभावित जल संकट को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। राज्यपाल ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल कल लोकभवन और नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। दुर्ग जिले में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है। कांगो, इथियोपिया और युगांडा से लौटे 3 लोगों को इबोला वायरस का संदिग्ध मानकर उनकी निगरानी की जा रही है। तीनों यात्रियों को होम आइसोलेशन में 21 दिनों के लिए रखा गया है। वर्तमान में तीनों यात्री पूर्णतः स्वस्थ हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इथियोपिया और युगांडा से आए दो व्यक्तियों के अलग अलग एयरपोर्ट के जरिए सीधे दुर्ग पहुंचने की जानकारी दी थी, जबकि कांगो से लौटा एक व्यक्ति पहले मुंबई में रुका और इसके बाद दुर्ग पहुंचा। प्रदेश में इबोला वायरस से जुड़े संदिग्धों का यह पहला मामला सामने आने के कारण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के सिलफिली के पास एक यात्री बस से 20 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आकी गई है। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर की ओर से आ रही एक यात्री बस में गांजा ले जाए जाने की सूचना ग्रामीणों को मिली थी, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बस की जांच की। इस दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि मानसून 3 दिन देर से केरलम पहुंचा है। मानसून के 1 जून को केरलम पहुंचने की संभावना थी। केरलम पहुंचने के बाद मानसून को छत्तीसगढ़ तक पहुंचने में 15 से 20 दिनों का समय लगता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। युवा संगम फेज 6 के अंतर्गत दिल्ली से आए 60 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों भिलाई इस्पात संयंत्र का भ्रमण किया। इस दौरान युवा प्रतिभागियों को औद्योगिक सुरक्षा, कार्यस्थल सावधानियों और संयंत्र भ्रमण के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा मानकों की जानकारी दी गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला गणवेश वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। सरकार ने 16 जून से शुरू होने वाले नए शिक्षा सत्र से पहले ही यूनिफॉर्म वितरण की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। राजधानी रायपुर के सड्डू और माना सहित राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में रिक्त सीटों के लिए 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और जांजगीर चांपा जिले की अमिता श्रीवास ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। चांपा पहुंचने पर परिजन और नागरिकों ने उनका स्वागत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत मतगणना के बाद आज परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष के 5 में से 3 पदों पर भाजपा और 2 पदों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। जशपुर जिले की सरदी ग्राम पंचायत सहित 42 पंचायतों को आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल प्रदेश में होंगे अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कल रायपुर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत, और पहला गीत है अरिजीत सिंह और निखिता गांधी की आवाज़ों में। इरशाद कामिल का लिखा यह गीत है और अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत है, संगीत दिया है प्रीतम ने, और फिल्म का नाम है राबता।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

विशाल ददलानी, आयशा मेंटोंसा की आवाज़ों में भी आपने सुना प्रसून जोशी का लिखा यह गीत, जिसका संगीत दिया था विशाल शेखर ने और फिल्म का नाम था ब्रेक के बाद। और अगला गीत हम सुनेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।

0: Akashvani at 90.
1: और लीजिए आप सुनिए अ जेंटलमैन, इस फिल्म का एक गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में, बोल प्रिया सरिया के हैं और संगीत है सचिन जिगर का। अ जेंटलमैन, इस फिल्म का एक गीत लीजिए सुनिए।

कबीर सिंह। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरमान मलिक की आवाज़ में, गीत लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत था विशाल मिश्रा का। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण। 7:21 हो चुके हैं और लीजिए अब सुनिए किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: फोटो खींचना रहे तो कैमरा के उपयोग करन, हाँ गाना सुनना रहे तो सिनेमा देखे, सिनेमा के माध्यम ले, रेडियो या टेप रिकॉर्डर के माध्यम ले, और कुछ देखना रहे हमला फिल्म तो टेलीविजन सिनेमा घर है कर उपयोग हो जावे। और आज ये जम्मो काम है वो हम अपन मोबाइल कर लेथन।
1: और लक्ष्मीकांत ये हुई से मोबाइल के गोट, उसने है कहूँ लिखाई पढ़ाई के गोट करन, तो पहली स्कूल में चाक श्याम पट पुस्तक कापी के उपयोग करन है नहीं, अब उहे नवा नवा उपकरण जैसे प्रोजेक्टर हो गए, कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास के माध्यम ले घलोक पढ़ाई हुआ थे।
0: इसने पहली टिकट कटाए जावन, हाँ तो लाइन में लगे बर पड़े, खड़े होए पड़े। अब घर बैठे हमारे नवा तकनीक ऐसे है कि हमार मोबाइल में एप्लीकेशन होते है ना, ऐप मन के माध्यम ले या वेबसाइट के माध्यम ले कहन झटकुन टिकट करवा लेथन। यहाँ तक कि खाना बनाए खातिर पहली जी हम चूल्हा सिगड़ी स्टोव के उपयोग करन है ना, ओकर जगह हम आज माइक्रोवेव है, गैस है, अब बड़ा कन यंत्र आ गया हवे जेकर ले हम घंटों के काम ले जोन है मिनटों में कर लेथन।
1: हाँ लक्ष्मीकांत, मतलब साफ है, समय बदलत जाते, जरूरत बदलत है और काम करे के तरीका हर घलो बदलत जाते।
0: और एकदम यही बात हर है कि जिन क्षेत्र में तकनीक है, नवा नवा जोन मशीन है वो नहीं पहुँचे है ना, तेन क्षेत्र में विकास हर धीरे पड़ गए है, और जिन क्षेत्र में हमार मशीन के नवा तकनीक के हम उपयोग करत हन वो हर बड़ विकास करत है।
1: हाँ लक्ष्मीकांत, और यही क्रम में कहूँ हमार जिंदगी के आधार माने खेती किसानी के क्षेत्र के बारे में गोट करन, तो आज यहू में नवा नवा मशीन के उपयोग करके किसान भाई मन नवाचार अपना के विकास के नवा नवा रद्दा बढ़ा गढ़ा थे है नी, और समय संग कदम मिला के तेज गति ले आगू बढ़ा जाते।
0: और खेती किसानी के बूता के गोट करत हन त जेन काम ल करे खातिर पहली पूरा गांव और पूरा परिवार, हाँ लोगन मिल के पूरा दिन दिन भर हफ्ता भर काम ल करत रहे, वही काम ल अब नवा जोन मशीन आए है हमार जोन नवा तकनीक आए है वो घंटा भर में पूरा कर देते। जैसे जो ताई करे पर हमारे करा ट्रैक्टर हवे, रोटावेटर हवे है, उसने सीड ड्रिल, पावर वीडर है, सिंचाई पर घलो हमारे करा नवा तकनीक है, स्प्रिंकलर है, टपक सिंचाई है, बोरवेल हवे, पहली काहे कुआं खोदे रहे और टेढ़ा लटेढ़ा रहे हमार संगवारी मन है, हाँ तो हमार करा हमार जोन कृषि क्षेत्र में है घलो बड़ विकास हवे, हमार करा नवा नवा तकनीक हवे और उपयोग करत हम समय भी बचावत हन और समय बचावत हन विकास करत हन लाभ कमावत हन।
1: माने के भुइया के तैयारी ले लेके फसल ला संग्रहित माने भंडारण करे तक मशीन आगे हावे, जैसे हार्वेस्टर के उपयोग करके कटाई सिंचाई सब झटकुन हो जाते है नी, और कहा सकत हन कि ये मशीन मन किसान भाई मन के सच्चा संगवारी बन के बन गया हावे है नी, जे हा किसान भाई मन के केवल समय नहीं बचावे बल्कि मेहनत बचाते और ज्यादा और अच्छा गुणवत्ता वाले उत्पादन घलोक लेवाते।
0: दीदी गोटला हमन आगू करबो फिर संदेश ला सुन लेथन।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मनीषा दीदी, हमन गोट करत रहे मशीन के माध्यम ले, हमन नवा तकनीक के माध्यम ले फायदा बढ़ मिलते हैं हमला।
4: हाँ,
3: और कई बार हमला सुने बा मिलते कि

0: एक महंगा मशीन ले रहे हैं, फिर जल्दी खराब हो गए, बंद हो गए, अच्छा काम नहीं करते, इसे भी हमला संगवारी मन बताते हैं। तो एकर कारण ला जब खोजथन तो पाथन की जोन हमार मशीन ले हमन हम ओकर हम सही रख रखाव नहीं करत हन, नहीं तो ओकर जोन कंपनी जेकर ले ले हन तेकर तरफ ले जो भी हमला गाइडलाइन मिले रहते ओकर या तो हम पालन नहीं करत हन तो खराब हो जाते, नहीं तो ओकर जोन काम करे के क्षमता है ओ मा कमी आ जाते।
1: लक्ष्मीकांत, जैसे हमन अपन शरीर के सुरक्षा और रख रखाव के ध्यान रखते ना, वैसने हमन ला मशीन के घलो सही रख रखाव कोती ध्यान रखना चाहिए, है नी। ओकर बर सबले पहली जब भी मशीन के उपयोग करन ओकर बाद ओला सुघर धो के है नी रखन, ताकि माटी कीचड़ भूसा और जे भी धूल लग गए है वो सब ला बढ़िया साफ सुथरा करके रखन।
0: मशीन ला साफ सुथरा कर लेन ओकर बाद हमला जैसे ग्रीस लगाना है, तेल लगाना है, तो सब लोग सुघर ढंग ले मशीन ला हम धोएं तहले पोंछ लेवन सुखा गीस, तो हम ग्रीसिंग के जोन काम है, तेल लगाए के काम है, ते इंजन ऑयल ला बदले काम है, जिसे ओकर तेल ला है ना, नट बोल्ट के जोन जांच हवे ओला सुघर कर लेवन, कोनो नट ढीला गए तो ओला कस देवन, अगर कोनो पार्ट खराब हो गए है तो ओला तुरंत बनवा लेवन बदल लेवन, संगे संग घाम और पानी में घलो सुरक्षित तरीका ले हमें ला रखन है ना, ओकर सेट के हम काम बना सकथन सेट रखे पर और रख रखाव के ध्यान रखथन, तो जो मशीन हावे हमर वह हमारा बड़ दिन तक संग भी देते।
1: और देख लक्ष्मीकांत है ना, रख रखाव वाला अच्छा से रखबो, संगे संग ओला उपयोग करे के बखत ना सावधानी के घलो हमला ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मशीन के उपयोग करत हन तो मशीन ला पहले जांच करवा लेन, और ओकर तीर मा ढीला ढाला कपड़ा पहन के तो कब्बू नहीं जाना चाहिए है नी, और संग में लइका मल्ला तो ओकर से दूरियाच रखना चाहिए।
0: हाँ चलत मशीन कभू हाथ डारा थन हाँ तो हमला नुकसान हो सकते, तो मशीन अचानक जैसे मरम्मत करे के हमला जरूरत भी पड़ रहा थे तो हम ओकर इंजन ला पूरा बंद कर देवन, हाँ ओकर बादे हम ओमा कुछ काम करन, और स्प्रे वाला कोनो जिनिस के हम उपयोग करथन तो ग्लव्स लगा लेवन, हाँ मास्क पहन लेन, एकर ले सावधानी जब हम रखथन तो हमला जोन शारीरिक आंखी में जैसे पड़ सकते ओकर ले हम बांच गए, और कोनो भी समस्या हो सकते वो सब ले बांचे सुघर है हम।
1: हाँ लक्ष्मीकांत, ये जन आधुनिक उपकरण ना सिर्फ सुविधा नहीं हरे बल्कि विकास के आधार हरे, तक खेती में उन्नत कृषि यंत्र के समझदारी ले उपयोग करके आय उत्पादन और आत्मविश्वास तीनों ला बढ़ावन।
0: संगवारी हो, नवा तकनीक के गोट करे हमन लाभ बर, और कभू हम जोन हमार खेत है ओकर रख रखाव में हम गलती करथन तो हमला बड़ नुकसान उठाए पड़ते उत्पादन ला लेके, तो फसल अवशेष वाला जलावन नहीं हम काबर ओकर ले माटी के जोन स्वास्थ्य बिगड़ते, फसल अवशेष ला निस्तारित करे बर कतको कन दवाई आते ओला हम डालथन खेत में, तो हमार जोन पराली हवा या फसल अवशेष वह सड़ जाते, और ओकर ले हम लाभ भी ले लेथन कि वो हमार खाद के काम आ जाते। हाँ और दूसर चीज़ ये बोलना चाहथन कि बरसात आही अब तो गर्मी दिन में हम ओकर बरसात ले पहले हम अपन पेड़ पौधा लगाए के तैयारी कर लेन भाई, तो सुघर गड्ढा खोद लेवन पौधा या बीज के जोन व्यवस्था है ओला कर लेवन, ओकर खाद के व्यवस्था कर लेवन, और सुघर ढंग ले अपन सेहत के अपन स्वास्थ्य के भी हम ख्याल रखन। और देखा गोट बात करत करत हमार किसानवाड़ी के बेरा हो गई हवे, और प्रायोजक हवे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: हम है भारत के किसान हम
1: किसान हम
2: किसान हम।
3: लक्ष्मीकांत, संगवारी मन सन सुंधन का एक ठन सुघर गीत जिनला स्वर दे हमारे भगत साहू और साथी मन।

सुहागे आँखी के काजर हो। वो हागे आँख

0: अपन देश भारत ला बनाओ महान गा।
1: संगवारी हो सुघर गीत ला सुनत रहन भगत साहू और संगवारी मनली।
2: लक्ष्मीकांत, आज के सलाहक्रम में सुनथन ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का महत्व। विशेषज्ञ है डॉक्टर नीतीश तिवारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान और एक हर संग गोट बात करे हवा लक्ष्मीकांत।
1: किसान संगवारी हो, बेरा बेरा मा आप मन तीर हम सुघर जानकारी पहुंचावत रहथन और ऐसने जानकारी एक ठन लेके हमार बिचाए हैं डॉक्टर नीतीश तिवारी। आप मन वरिष्ठ वैज्ञानिक हवें सस्य विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। संगवारी हो, आज जानकारी लेबो कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के महत्ता का हवे और हम एला कौन ढंग ले कर सकथन, जिन किसान संगवारी नहीं करें उनकर बर इनकर जो सुझाव रही तेला जानबो। तो सबले पहले साहब अपन के कार्यक्रम में स्वागत करथन। राम राम।
3: नमस्कार जी, राम राम।
1: हमार जैसे विषय हवे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के महत्ता, यही ले पूछना चाहबो कि ग्रीष्मकालीन जो जुताई हवे एला काबर करे के सलाह देते हैं, कर कुछ कारण है का इसे बता रहे।
3: किसान भाइयों, आप ने देखा होगा कि गांवों की दीवारों में कृषि विभाग के द्वारा कई जगहों पे लिखा रहता है कि गर्मी के मौसम में अकरस जुताई। आपने शायद ध्यान दिया होगा, कृषि विभाग लगभग सभी गाँवों में ये लाइन दीवारों पर लिखवाते हैं गाँव गाँव में।

0: ताकि किसान भाई इसके प्रति जागरूक होएं और जागरूक होने के साथ ही ये इस कार्य को संपन्न करें। इसकी महत्ता इसी चीज में है कि सामान्य तौर पे जो हमारा छत्तीसगढ़ जिस परिवेश में हम रहते हैं और यहाँ की जो खेती है, सामान्य तौर पे यहाँ के किसान भाई एक बार हम फार्मिंग करते हैं, कृषि की क्रिया करते हैं, या कुछ लोग दो फसल लेते हैं, एक फसल या दो फसल की पूरी प्रक्रिया को दोहराते हैं। सामान्य तौर पे हमारे यहाँ किसान भाई गर्मी के मौसम में खेत को खाली छोड़ देते हैं, और बहुत कम किसान होंगे जिनके पास सिंचाई के साधन होंगे और बहुत अच्छी उनकी घेराबंदी होगी, जानवरों को नहीं आने के लिए बहुत अच्छा उनका प्रबंध होगा, तो वो लोग ही तीसरी फसल के में जाते हैं, अन्यथा सभी लोग एक फसल या दो फसल लेते। तो ऐसा है कि जो फसल के अवशेष रहते हैं, जो हम खेती करते हैं तो फसल की कटाई करते हैं, फसल की कटाई करते हैं तो फसल के अवशेष रहते हैं, उनसे संबंधित कुछ खरपतवार भी ज़मीन पर रह जाते हैं, उनके बीज जो खरपतवार के बीज रहते हैं वो भी उस ज़मीन पर इधर उधर बिखरते हैं परिपक्वन के पश्चात। तो ये सब जो फसल से संबंधित जो भी बीमारी है, बीमारी के जैसे अवशेष हैं, और कुछ पौधों में कीड़े जो लगे हैं उन कीड़ों के अंडे हैं, या कुछ इस तरीके की इल्लियां हैं, वो सब कभी कभी किसान के खेत में ही रह जाते हैं। तो इनको यदि आप फसल नहीं लगा रहे हैं तो एक हमको एक समय मिल जाता है जिस समय में हम अच्छी प्रकार से जुताई करके अच्छे तरीके से उन चीज़ों को ज़मीन में मिला दें, जिससे कि वो अंदर ही ज़मीन भूमि के अंदर ही वो समाप्त हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, और उनका अगले मौसम में किसी भी प्रकार का प्रभाव हमको ना दिखाई दे। तो इसलिए खेती में कहा जाता है गर्मी में ग्रीष्मकालीन जुताई अवश्य करें, और गहरी जुताई करना और अच्छा होता है, लेकिन गहरी जुताई करने से कभी कभी हमें कुछ चीज़ें किसान भाइयों के सामने एक प्रश्न रहता है किसान भाइयों का सामान्य तौर पे, कि हम जब गहरी जुताई करते हैं, गहरी जुताई का मतलब हो जाता है दो प्रकार की जुताई होती है, एक जुताई जो हम सतह पे करते हैं जिसको हम कल्टीवेटर यानी नांगर या प्लाउ को बोलते हैं, है ना, उससे जब हम जुताई करते हैं तो वो उसकी जो जुताई होती है वो 2 इंच 2.5 इंच की जुताई ज़मीन पर गहराई होती है। लेकिन जब हम मोल्ड बोल्ड प्लाउ करके एक होता है जिसको हम हिंदी भाषा में मिट्टी पलटने वाला हल भी कहते हैं, उस हल से हम जब जुताई करते हैं तो वो लगभग 9 इंच की जुताई कर देता है। तो जब 9 इंच की जुताई होती है तो सामान्य तौर पे जैसा कि सभी जानते हैं कि भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती, जो सबसे ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होते हैं, वो सबसे ऊपरी सतह में ही जमे हुए रहते हैं। तो जब हम उसको मिट्टी पलटने वाले हल से यदि हम जुताई कर देते हैं तो वो लगभग 9 इंच नीचे जाके भूमि के अंदर चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि कभी कभी किसान भाइयों को अगले फसल लगाते समय फसल में खाद देने के बावजूद, खाद देने, पानी, मतलब संपूर्ण प्रबंधन करने के पश्चात भी हमें फसल में शुरुआत में पीलापन दिखाई दे, तो ये पीलापन जो दिखाई देता है उससे किसान भाई सामान्य तौर पर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, और उनको एक उनके मन में एक प्रश्न आता है कि भाई ऐसा क्या हो गया, कौन सी बीमारी लग गई, कीड़ा लग गया, क्या हुआ। तो इसलिए उनके मन में हमेशा गहरी मिट्टी की जुताई करने में थोड़ी सी एक दुविधा रहती है। तो दुविधा को आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना अपने दिमाग में, और इस कार्य को संपन्न कराना है, और उस कार्य को संपन्न कराने में हम क्या क्या हमें फायदा होता है और किस तरीके से हमको इसको करना है, हम अभी आगे इस पे चर्चा करेंगे।
1: जी, ये तो बड़ सुघर बताया हो कि ग्रीष्मकालीन जोन गहरी जुताई है वाला हम काबर करन, और हमारे विशेषज्ञ मन बेरा बेरा में अगर सलाह देते रहते हैं तो काबर देते हैं हम समझें। ये बताते हो कि जोताई के बाद कोनो और काज करना है कि जोत के खाली हम खेत ले छोड़ देना है?
0: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा कर ही रहे थे कि आगे की प्रक्रिया कैसे करना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, यदि आप हर साल जुताई कर रहे हैं तो आप नांगर से भी जुताई, सामान्य जो कल्टीवेटर कहलाता है उससे जुताई आप करते रहेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे फल, इसकी फल की प्राप्ति होगी। यदि आप कभी कभार करते हैं तभी आप मैंने आपको बताया मिट्टी पलटने वाला हल, उसका उपयोग करें। जैसे आप 4 साल 5 साल में एक आध बार यदि कर रहे हैं तभी उसका करें, अन्यथा उसको हर साल मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करने की हमें आवश्यकता नहीं है यदि आप सामान्य तौर पे ग्रीष्मकालीन जुताई करते आ रहे हैं सामान्य नांगर से। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि है इसमें कि हम यदि इस कार्य को अच्छे से संपन्न कराना चाहते हैं तो इसमें किसान भाई थोड़ा सा मेहनत करेंगे, चेष्टाया उनको और फायदा होगा। इसमें हम कर क्या सकते हैं ये हमें देखना है। देखिए, एक होता है सिंपल जुताई, जुताई तो आप तभी करेंगे जब आपके पास खेत में नमी होगा, तो नमी होने के लिए हम तभी हम जुताई कर सकते हैं, तभी नांगर का जो पीछे हम गढ़ते हैं जिससे मिट्टी नांगर से जुताई होता है तो वो तभी करेगा जब मिट्टी में उपयुक्त नमी हो। अब बात ये आती है कि हम इसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा हो, एक आध सिंचाई की या 2 सिंचाई की सुविधा हो गर्मी की मौसम में, तो आप इसको 1 से 2, 1 से अधिक बार भी जुताई कर सकते हैं। इसमें करना ये रहेगा कि हम जुताई करें, खेत को छोड़ दें, खेत को छोड़ें, फिर पानी पला दें या ऊपर से बारिश का पानी आ जाता है तो और अच्छी बात है, और फिर उसके बाद 15 दिन का पानी डालने के बाद 15 दिन का हम इंतज़ार करें। उससे क्या होगा कि जो भी बीज के अंकुरण होंगे, खरपतवार संबंधित बीज के अंकुरण होंगे, वो अंकुरण हो जाएंगे क्योंकि वो बीज खेत में ही मौजूद हैं। ठीक है, वो बीज बैंक, खरपतवार का बीज बैंक खेत में ही मौजूद रहता है तो अपने आप अंकुरित होंगे। अंकुरित होने के पश्चात आप फिर उसको 15 दिन के अंदर आप यदि ट्रैक्टर चला देते हैं, नांगर चलाते हैं उस पर, तो वो सारे अंकुरण समाप्त हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार हम इस प्रक्रिया को यदि 2 से 3 बार कर सकें तो और अच्छा होगा। उससे क्या होगा, जब आप खरीफ के मौसम में फसल आप लगाएंगे अपनी, तो उस फसल में खरपतवार की समस्या बहुत कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज, यदि आपके पास एक ही सिंचाई की साधन है, मतलब एक ही बार आप नमी उपलब्ध करा सकते हैं और जुताई की प्रक्रिया कर सकते हैं, तो आप एक काम करिए कि यदि आप के पास प्लास्टिक की शीट हो, यदि आप वो खरीदने की आपकी क्षमता है तो उसको खरीद के आप प्लास्टिक की शीट को अच्छे से फैला दें खेत पे। तो प्लास्टिक की शीट बिछाने से ये फायदा होता है कि जो सूरज की गर्मी है, जो अभी गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ जैसे 45 डिग्री 47 डिग्री चल देता है, ये गर्मी उसके अंदर ऊष्मा प्रवेश करेगी, ऊष्मा प्रवेश करके उसके अंदर की जो भी नमी होगी मिट्टी में उसको वो भाप बना देगी, और भाप बना के वो जो भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पानी का तापमान भाप के तापमान से कम होता है, और भाप का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि उसमें खरपतवार के बीज, बीमारी, कीड़े से संबंधित जो भी अंश बाकी होंगे वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्लास्टिक शीट का मल्च बिछा के भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। इसको हमारे वैज्ञानिक भाषा में सोलराइजेशन कहा जाता है, सॉयल सोलराइजेशन, और हिंदी में इसको सामान्य तौर मृदा का सूर्यकरण बोलते हैं, जो कि आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बोला, 2 से 3 बार जुताई करके नमी की यदि सिंचाई की यदि व्यवस्था हो तो 2 से 3 बार भी जुताई आप कर सकते हैं। इस प्रकार का आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके खेत को फसल लगाने के समय में बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
1: ये तो बड़ सुघर बताया है, ये तो बड़ बढ़िया रही से कि हमला जुताई के संग कौन कौन से काज करना है। ये बताता हूँ कि ग्रीष्मकालीन जुताई हमारे संगवारी मन करते हैं तो उनला कौन कौन से लाभ मिलते हैं।
0: मैंने आपको अभी जैसा बताया कि हमको ये कार्य इसलिए ही करना चाहिए क्योंकि हमारे जो जमीन है उस जमीन में पुरानी फसल के अवशेष मौजूद होते हैं। आसपास हमारा जो कि हमारा छत्तीसगढ़ धान की खेती होती है तो सारे खेती में मजबूत मेड़ बनी होती है, उस मेड़ में भी कई प्रकार के घास उगते रहते हैं, उस घास में वो खरपतवार के पौधों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों और विभिन्न प्रकार के कीड़ों के अवशेष मौजूद रहते हैं जिनको हम अच्छी तरीके से यदि उसका प्रबंधन नहीं करेंगे तो हमारी फसल में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव फिर से दिखेगा। तो

0: इसलिए ये प्रक्रिया को किया जाना अत्यंत आवश्यक है। किसान भाई इसको प्राथमिकता में करें, जिससे कि उनको आने वाली फसल में इसके अच्छे परिणाम।
1: ये बताता हूँ कि जोताई के काम ला हमारे संगवारी करना चाहते हैं, किसान संगवारी मन करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। जिन संगवारी करते हैं तिन ला तो अभी समझ आ गए है कि कब तक करना है। फिर जिन संगवारी नवा अब गहरी जुताई काम पहले नहीं करत रहे हैं, वो अब करना चाहते हैं, तो उनला कब तक पूरा कर लेना चाहिए काम ला?
0: देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सामान्य तौर पे किसान जुताई करने का समय ये समझता रहता है कि अप्रैल से लेके जून तक हम कभी भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मानसून आने के पूर्व इस कार्य को यदि आप संपन्न करा लेते हैं तो ये निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एक बार मानसून आता है तो मानसून आने के बाद जैसी बारिश होती है तो विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं उनके बीच में अंकुरण आना शुरू हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि आपको खेत की तैयारी करने, मतलब जुताई करने का मौका ना मिले। तो इसलिए, और वैसे भी तापमान भी बारिश होने के पश्चात कम होना शुरू हो जाता है, और उस कारण से जो हमको गर्मी के जो फायदे मिलते हैं बीज के अंकुरण में, जो हमको फायदे मिलते हैं वो फायदे भी हमको नहीं प्राप्त हो पाएंगे। तो इसलिए मेरा सुझाव यही होगा कि आप इस प्रक्रिया को मई माह के अंतिम तक किसी भी प्रकार संपन्न करा लें, जिससे कि हमको जो गर्मी के की गर्माहट है उसका हम जमीन में जुताई करके सदुपयोग कर सकें।
1: जी, हम ये पूछना चाहते हैं साहब कि हमारे बहुत से किसान भाई गहरी जुताई करे लब माँजते हैं, ता ओमन खातिर आप मनो कोनो सुझाव देता? और ऐसे पूछत रहें कि कोनो दूसर तरीका भी है का यदि हम गहरी जुताई नहीं करत हन ता?
0: जैसा मैंने आपको बताया कि गहरी जुताई करना सबसे अच्छा कार्य है गर्मी में, और कोशिश करें कि प्रतिवर्ष करें। भले आप 9 इंच वाली जुताई ना करके, मतलब मिट्टी पलटने वाले हल से ना करके, आप सामान्य जो हल होता है जिसको हम नांगर कहते हैं, उससे आप भले जुताई करें। अब रही बात कि बहुत से किसान इससे बचते हैं और नहीं करना चाहते, तो इसमें एक मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि क्या होता है कि जैसे हमारा आदमी का शरीर होता है, तो जैसे हम लगातार एक ही उसमें रहते हैं खान पान में, तो फिर हम कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं और उसको फिर से हमको दवाई खा के और सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। उसी प्रकार भूमि भी जो है उसको हमको उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो उसके स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए ही एक प्रक्रिया है ये, और उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और मिट्टी स्वस्थ बनी रहे उसके लिए गहरी जुताई करना चाहिए। उससे बचने का जो किसान भाइयों के मन में एक चेष्टा रहती है, उस चेष्टा को उनको निकालना चाहिए, ताकि उसकी जो लाभदायक फायदे हैं, जो लाभ है वो लाभ हमको मिल सके, और किसान भाई भी कम दवाई और कम कीट बीमारी से अपनी फसल को आसानी से अच्छे से
1: जी
0: उगा के फसल ले सकें।
1: जी तो डॉक्टर नीतीश तिवारी जी, आप मन ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के महत्ता के संबंध में बड़ सुग्घर विस्तार ले हमारे संगवारी मन ला जानकारी दे हो। आप मन के आए ले हमारे कार्यक्रम सफल होते, आप मन हमला समय दे हो, एकर खातिर आप मन बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
1: संगवारी हो, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के जौन महत्व है एकर संबंध में सुघर जानकारी देवत रहिन डॉक्टर नीतीश तिवारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान विभाग। आ एकर तीर हमार माने आप मन के संगवारी लक्ष्मीकांतिर गोट बात होवत रही से।

0: हवे तो झटकुन लिखा। हमारा आज के प्रश्न प्रश्न है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई और खेत में प्लास्टिक सीट बिछाए के काला भी। प्रश्न एक बार फिर ले सुनो। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई और खेत में प्लास्टिक सीट जोन बिछाए के काला भी। और संगवारी हो, एकर सही जवाब हमला अवैया हफ्ता तक भेज दो। हमला आज के दिन एकर जवाब बताए जाही। और सही जवाब खातिर हमारा ईमेल पता है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। पाछू हफ्ता आज के जोन प्रश्न रहीस वो रहीस टमाटर में फफूंद और जीवाणु के कारण जोन रोग होते वो कौन से है। और एकर सही जवाब है उकटा रोग। और सही जवाब पठोइया संगवारी मन के नाम पता बता दे दीदी।
1: हाँ, सही पति पठोइया संगवारी मन के नाम है मदनपुर कवर्धले श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। ग्राम पंचायत बठेना जिला दुर्ग ले बलकरण वर्मा, अंजनी, राजीव, ज्योति, प्रहलाद, उमेश और मिथिलेश वर्मा। परसा टोला अम्बागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, तुसारनी और खुमेंद्र मसिया। गर्रा पार बांधा बाजार ले गंगाराम सुलोचना साहू, राकेश मानवेंद्र साहू। नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामनी वर्मा। बेमेतरा ले सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, भाई कमलकांत औ वीरेंद्र ब्रिज कांत सारथी। सही पाती पठैया जम्मू संगवारी मल्ला बहुत बधाई। ई मेर कृषक प्रश्न मंच
0: हमारे संगवारी मन बर सूचना है। शुक्रवार 5 जून 2026 माने काली प्रसारित हो या जोन हेलो किसान हेलो चौपाल जोन कार्यक्रम है कर विषय है स्वच्छ दूध उत्पादन और कर परिवहन। आप मन के समस्या जिज्ञासा के समाधान खातिर स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हो ही डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता हैं डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में। आप मन संगवारी हो जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमला फोन कर सकते हो। हमारा फोन नंबर है 400-3482। दूसरैया टेलीफोन नंबर है 400-3483 और तीसरैया टेलीफोन नंबर है 400-3484। रायपुर के एसटीडी कोड हावे 0771। संगवारी हो कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग शुक्रवार 5 जून 2026 के 11:30 ले 12 बजे तक करे जाही। और एकर प्रसारण शुक्रवार के ही माने काली ही संध्या 7:30 बजे करे जाही। हमला आप मन के फोन के अगोरा रही और सूचना ही है सिरावत हावे।
1: लक्ष्मीगान संगवारी मन संग सुन्थन का ये सुघर गीत जमला स्वर देहा भाई कुलेश्वर ताम्रकार और ममता चंद्राकर।

0: संगवारी हो अभी कुलेश्वर ताम्रकार और ममता चंद्राकर के स्वर में सुनेन सुघर गीत और ये रहीन किसान वाणी प्रायोजक रहीन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: संगवारी हो जाए के बेरा हो थे जाए के पहली काली के कार्यक्रम बताथन। काली संझा आधुनिक सिंचाई प्रणाली ऊपर गोट बात होही और संग में हेलो चौपाल में दूध और एकर परिवहन ले जुड़े समस्या के सुघर समाधान मिली हमला डॉक्टर सुधीर उप्रीत मल्ले अधिष्ठाता हमें डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर ले गीत संगीत घलो हुई संगवारी हो तदेव विदा जम्मो संगवारी मल्ला लक्ष्मीकांत
0: और मनीषा के
1: राम राम।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। और श्रोताओं, चित्रपट संगीत में पहला गीत लीजिए सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की आवाज़ों में। संगीत है आनंद मिलन साहब का, गीत लिखा है समीर ने और फिल्म का नाम है सनम।

कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना आरजू इस फिल्म का एक गीत जिसे लिखा था आनंद बख्शी साहब ने और संगीत था अनु मलिक का। और श्रोताओं, चित्रपट संगीत का ये आखिरी गीत लीजिए, सुनिए तुमको ना भूल पाएंगे इस फिल्म से, जिसे गाया है सोनू निगम ने, संगीत है देबो मलिक का और गीत लिखा है सलीम बिंजौरी ने।

तुमको ना भूल पाएंगे। इसी फिल्म के गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। श्रोताओ, चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं 9:15 पर। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। इस कार्यक्रम में कलाकार हैं ध्रुव शर्मा और उनके साथी।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। इसमें कलाकार हैं ध्रुव शर्मा और उनके साथी। लीजिए सुनिए इनके स्वरों में ये लोकगीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, अगला गीत सुनने से पहले लीजिए सुनिए एक सूचना। कल यानी 5 जून 2026 यानी शुक्रवार के दिन प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल इस कार्यक्रम का विषय होगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और उसका परिवहन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे फ़ोन नंबर से पहला नंबर है 400-3482, दूसरा फ़ोन नंबर है 400-3483 और तीसरा फ़ोन नंबर है 400-3484। श्रोताओं, रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी कल यानी 5 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल ही के दिन यानी शुक्रवार के दिन शाम 7:30 पर किया जाएगा। तो श्रोताओं, हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और लीजिए अब सुनिए लोक संगीत के कार्यक्रम में ध्रुव शर्मा और साथियों का गाया ये लोकगीत।

लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में कलाकार थे ध्रुव शर्मा और उनके साथी। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 8:30 होने को है स्पोर्ट्स स्कैन। ये कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। सबसे पहले मुख्य समाचार। अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन, कहा योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया, प्रिया घांगस और विश्वनाथ सुरेश ने टॉप 3 में जगह बनाई। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। मेंस सिंगल्स, वीमेन्स सिंगल्स और मिक्स डबल्स में भारत की चुनौती समाप्त। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में मीरा एंडिवा फाइनल में पहुंची। दूसरा सेमीफाइनल डायना श्नाइडर और माजा चालेनिस्का के बीच। जापान में एशिया अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल भारत की दोनों टीमें उतरेंगी। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए एक व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की और विस्तार से जानकारी के साथ अहमदाबाद से हमारी संवाददाता अपर्णा खूंट।
2: The city of Ahmedabad is buzzing with unprecedented energy as it hosts the first ever World Yogasana Championship from today. This is not just a competition, it is a defining moment in the evolution of Yogasana. For centuries, this practice was synonymous with spiritual wellness, but today it is being transformed into a globally competitive sporting discipline with its eyes firmly set on the Olympic moment. With the support of Ministry of Youth and Affairs and Sports, Ministry of Ayush and Sports Authority of India, this championship has brought together a massive international contingent from USA to Ghana, Kenya to Malaysia. Athletes are ready to push their boundaries of human potential. India, as the host nation, is fielding a strong 122-member squad competing across 6 age categories ranging from sub-juniors to senior masters. The technical precision of this event is underscored by the introduction of an electronic scoring system, a first at the global level, ensuring that every posture, balance and flow is judged with absolute transparency. As this grand opening ceremony unfolds, the message is clear: Yogasana is India's greatest contribution to the world of sports. Whether it is individual events, artistic displays or traditional group performances, the world is watching to see how this ancient heritage thrives in the competitive arena.
0: Aur yogasan ke mat ke baad ab chalte hain boxing ke ring ki taraf, jahan vishwa boxing ranking mein भारतीय खिलाड़ियों का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है। जैस्मीन लंबोरिया ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान अपने वर्ग में हासिल कर लिया है, वहीं प्रिया घांगस और विश्वनाथ सुरेश ने टॉप 3 में जगह बना ली है। सुनते हैं रिपोर्ट।
3: विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा कायम है। जैस्मीन लंबोरिया महिलाओं की 57 किलोग्राम कैटेगरी में शीर्ष मुक्केबाज बन गई हैं। 60 किलोग्राम में एशियाई चैंपियन प्रिया घांगस और 50 किलोग्राम में विश्वनाथ सुरेश टॉप 3 में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग में विश्व नंबर 1 के तौर पर अपना दबदबा बनाए रखा है, जबकि प्रीति नंबर 3 पर पहुंच गई हैं। 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी, 80 किलोग्राम में पूजा रानी और 80 से अधिक किलोग्राम वर्ग में नुपुर विश्व में दूसरे स्थान पर काबिज हैं। 51 किलोग्राम में निखत जरीन और 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाए रखी है। पुरुषों की टीम में भी ऐसी ही निरंतरता है। सचिन और नरेंद्र लगातार अंतर्राष्ट्रीय सफलता के बाद टॉप 5 में शामिल हो गए हैं। 70 किलोग्राम वर्ग में हितेश गुलिया छठे और 65 किलोग्राम वर्ग में अविनाश जमवाल आठवें स्थान पर हैं। 75 किलोग्राम वर्ग में आकाश और 85 किलोग्राम वर्ग में लोकेश भी टॉप 10 में शामिल हैं। पुरुष वर्ग के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश 11वें और 70 किलोग्राम वर्ग में दीपक 12वें स्थान पर हैं। विश्व रैंकिंग में भारत की ये जबरदस्त बढ़त विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल्स और विश्व चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ही संभव हुई है। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: बॉक्सिंग रिंग से अब चलते हैं रैकेट गेम की तरफ। इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए थोड़ी सफलता और ज्यादा निराशा वाला रहा। एक तरफ जहां पुरुष डबल्स में भारतीय जोड़ी ने परचम लहराया, वहीं पुरुष सिंगल्स महिला सिंगल्स के साथ साथ मिक्स डबल्स में निराशा हाथ लगी। प्रशांत बताइए, आज भारत के लिए क्या कुछ प्रदर्शन रहा?
4: जकार्ता में रफ्तार और चतुराई के खेल बैडमिंटन में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने अपने लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरन ताई और कैंग खाईजिंग को 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में 16-21, 21-15 और 21-19 से शिकस्त देकर पहली बार किसी 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। पहले गेम में भारतीय जोड़ी कड़ी टक्कर देने के बावजूद पिछड़ गई। हालांकि दूसरे गेम में एक बार लय हासिल करते ही अर्जुन और अमसा करुणन का सफर जीत पर जाकर ही रुका। तीसरा गेम न सिर्फ मैच के लिहाज से बल्कि मानसिक रूप से भी काफी अहम था। एक समय दोनों जोड़ियां लगभग बराबरी की हालत में थी, लेकिन बेहतर नर्व कंट्रोल के चलते आखिरकार बाजी भारतीय जोड़ी ने अपने नाम कर ली। अब कल अर्जुन और अमसा करुणन मलेशिया के गोह जे फेई और नूर इजुजुद्दीन का सामना करेंगे। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। उन्होंने हांगकांग के ली चियोकी के खिलाफ पहला गेम आसानी से 21-16 से अपने नाम कर लिया, लेकिन आगे इस लय को बरकरार नहीं रख सके। दूसरे गेम में आयुष को आसानी से 13-21 से शिकस्त मिली। इसके बाद उन्होंने जैसे हथियार डाल दिए, क्योंकि तीसरे गेम में भी वे 14-21 से हार बैठे। महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु से बेहद उम्मीदें थी, लेकिन दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की एन से यंग के खिलाफ एक बार फिर उनकी चुनौती टिक नहीं सकी। सिंधु ने पहले गेम में काफी संघर्ष किया, लेकिन उन्हें तमाम कोशिशों के बाद भी 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे गेम में भी लगभग यही स्थिति रही। ये गेम सिंधु 15-21 से हारी और इसके साथ ही वे प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई। एन की सिंधु के खिलाफ ये 10वीं जीत है। सिंधु उनके खिलाफ आज तक कोई भी मैच नहीं जीत सकी हैं। शाम ढलते ढलते मिक्स डबल्स में भी निराशाजनक खबर आई, जब रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की जोड़ी चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांस के थॉम मार्क गिक्वेल और डेल्फिन आरो डेलरू की चुनौती को पार नहीं कर सकी। भारतीय जोड़ी को आसानी से 21-12, 21-13 से हार झेलनी पड़ी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और रैकेट गेम की बात चली है तो टेनिस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन दिनों चल रहा है और वहां से ताजा खबर यह है कि महिला सिंगल्स में मीरा एंड्रीवा फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरा सेमीफाइनल डायना श्नाइडर और माजा चोनेलिस्का के बीच खेला जा रहा है, और तो कमाल का प्रदर्शन पुरुष सिंगल्स में देखने को मिला, जहां पर उलटफेर हुआ है और 104वीं रैंकिंग वाले अर्नाल्डी ने अंतिम चार में जगह बना ली है। सुनते हैं रिपोर्ट।
5: इटली के मैटेओ अर्नाल्डी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। हिप इंजरी के कारण मैटेओ बेरेटिनी को क्वार्टर फाइनल मुकाबला बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिसके चलते अर्नाल्डी को विजेता घोषित किया गया। मैच के समय अर्नाल्डी 7-5, 5-2 से आगे चल रहे थे। दूसरे सेट में बेरेटिनी की चोट गंभीर हो गई और उन्हें मुकाबले से हटना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत बेरेटिनी ने शानदार अंदाज में की थी। उन्होंने शुरुआती 3 गेम में 2 बार सर्विस ब्रेक करते हुए 3-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि अनुभवी बेरेटिनी मैच पर पूरी तरह पकड़ बनाए हुए हैं। हालांकि अर्नाल्डी ने धैर्य नहीं खोया और धीरे धीरे मुकाबले में वापसी की। पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच लंबी और कड़ी टक्कर देखने को मिली। 76 मिनट तक चले सेट में कई रोमांचक रैलियां हुई। बेरेटिनी ने एक गेम में 5 ब्रेक पॉइंट बचाए, लेकिन सेट के अंतिम गेम में वो अपनी सर्विस नहीं बचा सके और अर्नाल्डी ने 7-5 से सेट अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में 2-1 से पीछे होने पर बेरेटिनी ने मेडिकल टाइम आउट लिया। कोर्ट पर लौटकर उन्होंने आगे खेलने की कोशिश की, लेकिन दर्द लगातार बढ़ता चिपकता गया। आखिरकार उन्होंने मुकाबला छोड़ने का फैसला किया। मैच के बाद बेरेटिनी ने बताया कि उन्हें पहले सेट के दौरान ही हिप में परेशानी महसूस होने लगी थी। उन्होंने दर्द को नजरअंदाज कर खेल जारी रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा और उन्हें ज्यादा सर्विस तथा फोरहैंड शॉट लगाने पड़े, दर्द बढ़ता गया। दूसरी ओर 25 वर्षीय अर्नाल्डी का शानदार सफर टूर्नामेंट में जारी है। विश्व रैंकिंग में 104वें स्थान पर मौजूद अर्नाल्डी इस साल फ्रेंच ओपन के सबसे बड़े सरप्राइज खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं। वो 1997 के बाद फ्रेंच ओपन में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले सबसे कम रैंक वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा 1990 के बाद अर्नाल्डी सिर्फ तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप 100 रैंकिंग से बाहर रहते हुए भी सेमीफाइनल का टिकट कटाने में कामयाब रहे हैं। अब सेमीफाइनल में अर्नाल्डी का सामना अपने ही देश के खिलाड़ी फ्लेवियो कोपोली से होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: टेनिस के कोर्ट से चलते हैं हॉकी के मैदान की तरफ, क्योंकि जापान का काका मिगाहारा कल जूनियर हॉकी में कड़े मुकाबलों का गवाह बनेगा। एशिया अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एक तरफ भारतीय टीम चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ दो दो हाथ करेगी, तो दूसरी तरफ महिला टीम की टक्कर चीन से होगी। जबरदस्त मुकाबला होगा, कैसे जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
6: टूर्नामेंट में अब तक मिले जुले प्रदर्शन के साथ भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम पूल ए में 3 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर रही। टूर्नामेंट के अपने अब तक के अभियान में भारत ने 32 गोल किए, जबकि उसके खिलाफ सिर्फ 6 गोल हुए। पुरुष टीम ने अपने अभियान का आगाज कजाकिस्तान के खिलाफ 13-0 की शानदार जीत के साथ किया, लेकिन अगले ही मैच में उसे मेजबान जापान के हाथों 2-4 की पराजय झेलनी पड़ी। इस हार के बाद टीम ने जैसे हौसलों को फिर से समेटा और मजबूत कोरिया पर 4-1 की जीत के साथ जोरदार वापसी की। टीम का चौथा मैच बिल्कुल ही आसान रहा, जिसमें उसने चीनी ताइपे को 13-1 से आसानी से पराजित कर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। कप्तान केतन कुशवाहा 7 गोल के साथ भारत के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। आशीष टानी पूर्ति ने 6 गोल किए हैं। गाजी खान और शाहरुख अली के नाम 3-3 गोल हैं। उधर पाकिस्तान ने अपने 3 मैच में 2 जीत और 1 हार के साथ पूल बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। पाकिस्तान के खिलाफ ये मुकाबला न सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से काफी कठिन होगा, बल्कि भारत के जूनियर खिलाड़ियों को पेनाल्टी कॉर्नर अटैक और डिफेंस में अपनी गलतियों को सुधार कर मुकाबले में उतरना होगा। उधर महिला वर्ग में टीम का प्रदर्शन अब तक जबरदस्त रहा। भारतीय टीम ने पूल ए में अपने 3 मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस सफर में टीम ने गोलों की झड़ी लगा दी। भारत की जांबाज लड़कियों ने जहां विरोधियों पर 30 गोल किए, वहीं अपने खिलाफ सिर्फ 2 गोल करने का मौका दिया। भारत ने अपने पहले मैच में मजबूत मलेशिया को 2-1 से

0: पराजित किया, फिर दक्षिण कोरिया पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने अपने अंतिम पूल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर को 25-0 से धूल चटाकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पक्का किया। टूर्नामेंट में अब तक 10 गोल के साथ नौशीन नाज भारत की सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी रही हैं। चीन 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ पूल बी में दूसरे स्थान पर रहा। जाहिर है भारत के लिए अब तक का सफर काफी शानदार रहा है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही है, जहां जीत का मतलब खिताब के एक कदम और नजदीक पहुंचना होगा। टीम अगर पहले की तरह अपनी लय बनाने में सफल रहती है तो उसे जीतने से रोकना विरोधी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकता है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। भारत की टीम सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला शनिवार को बांग्लादेश से होगा। हिसोर में कल फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में भारत और मेजबान ताजिकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में एक दिन के विश्राम के बाद नवे दौर की बाजी आज खेली जाएगी। इस दौर की सबसे खास बात यह है कि पुरुष वर्ग में 2 भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश एक बार फिर आमने सामने होंगे। चीन के आरुडोस में 9 से 12 जुलाई तक होने वाली पहली एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारत की 54 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात, खेल के मैदान की हर खबर के साथ। लेकिन आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपना सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर जरूर भेजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।

0: as well on market successfully.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा

0: स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
8: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector, and pharmaceuticals to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
7: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South. Union Home Minister Amit Shah today said the Narendra Modi government entered the era of violence in the Northeast and transformed the region from a hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council or NEC, Mr. Shah in a social media post said today that NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture. In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said that yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the Ekta Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said that yoga unites the mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world.
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो और निश्चित तौर से इसमें इस पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की बहुत बड़ी भूमिका होगी
7: We have a report.
6: The Ekta Arena in Ahmedabad has opened its door to more than 400 participants from 60 nations, including international contingents from USA, Ghana, Kenya, and Malaysia. Host nation India is fielding a strong 122-member squad, competing across six age categories from sub-juniors to senior masters. In a global first for the sport, an advanced electronic scoring system has been introduced to ensure absolute transparency in judging every posture, balance, and flow. This championship signifies a major transformation for Yogasana, elevating it from a discipline of spiritual wellness into a highly technical, competitive sporting event aimed at Olympic movement. Aparna Khun, Akashwani News, Ahmedabad.
7: Defence Minister Rajnath Singh today approved a two-fold increase in financial ceiling for field commanders to strengthen operational efficiency in New Delhi. He also released the revised delegation of financial powers for the defence services, including medical and works projects. The Ministry of Defence said the revised delegation of financial powers will facilitate procurement of more than 1,25,000 crore rupees through the revenue route in line with the current year's budgetary allocations. Union Public Service Commission has developed face authentication protocol in its endeavour to enhance the integrity of the examination process and prevent impersonation. The Commission successfully implemented face authentication during recently held Civil Services and Indian Forest Service Preliminary Examination 2026. The system enabled live, real-time authentication of candidates at exam venues through mobile phone-based verification by invigilators, ensuring seamless identification and eliminating the possibility of impersonation and malpractice. New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said that India has made extraordinary strides in renewable energy, emerging as one of the world's top producers of non-fossil fuel capacity. The minister made these remarks on the event of 2 years of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, scaling the solar home to 1 crore rooftops in New Delhi. He said the main reason for the success of the scheme is that citizens of the country have understood that they can generate their own electricity on rooftops and the electricity bill can become zero. The Ministry of Parliamentary Affairs and West Bengal Legislative Assembly today signed an MOU for the implementation of National E-Vidhan Application or NEVA in West Bengal Assembly at Parliament in New Delhi. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju termed the integration of the West Bengal Assembly into NEVA as historic. He said that all assemblies and parliament of the country have now come in onto a single platform. Mr. Riju said that this application has been launched to fulfill Prime Minister Modi's vision of One Nation, One Application. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIN Newslets. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri and Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari today launched India's first flex-fuel passenger vehicle by Maruti Suzuki in New Delhi. Flex-fuel vehicles can operate on a range of ethanol-petrol blends from E20 up to E100. Speaking at the launch, the minister said the entry of flex-fuel technology into the passenger vehicle segment is not merely a product launch but the beginning of a new chapter in the country's energy transition. Mr. Puri said that large-scale adoption of flex-fuel technology can significantly multiply the impact of ethanol-based mobility.
9: India's flex-fuel journey expands from two-wheelers to four-wheelers, and this transition is significant. Today, India has over 30 crore two-wheelers on the road. But we also have 37 lakh passenger vehicles representing family mobility and the future of personal transportation. When flex-fuel technology enters this segment at scale, the impact multiplies dramatically. This is the beginning of a new chapter in India's energy transition.
7: Mr. Gadkari described the launch as a remarkable and forward-looking achievement. The minister noted that the milestone aligns with the vision of Prime Minister Narendra Modi for clean, sustainable and self-reliant mobility. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and the youth. Akashvani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards ease of doing business. Our report.
10: These reforms have strengthened investor confidence, promoted entrepreneurship, and enhanced India's position as a globally competitive business destination. Startup India initiative, launched in 2016, is nurturing innovation, promoting entrepreneurship, and enabling investment-driven growth. Due to the efforts of the government, the number of startups has gone up to 2,23,000 in March this year from just around 500 in 2016. The Income Tax Department launched the new e-filing portal in June 2021 to provide greater taxpayer convenience. GST reforms provided an additional boost to ease of doing business. Talking to Akashvani News, a chartered accountant Manoj Basir of Thane in Maharashtra said that the reforms in direct and indirect taxes has brought economic stability.
0: Kendra Sarkar ke apratyaksh aur pratyaksh karke upar.
11: The indirect and direct tax reform undertaken by central government are a major step forward the country's economy. Through its indirect tax reforms, the government has moved towards the vision of one nation, one tax. It has also significantly reduced the complexity of multiple tax structure by consolidating into fewer slabs, and there are indications that further rationalization may take place in the future.
10: To address procedural hurdles and simplify MSME registration, the government introduced Udyam Registration Portal. The MSME registration on the portal has increased from 10,000 in October 2020 to over 8,31,000 till date. To digitize and make a public procurement more streamlined and inclusive, government e-marketplace GEM was introduced in 2016. It has achieved a cumulative gross merchandise value of over 18 lakh crore rupees. Speaking to Akashvani News, a seller in GEM and a CMD in a company, Kamini Gupta, said the process in GEM is simple and transparent.
2: The most important thing was how to reach out to different departments. And we became a seller on GEM platform, which is a government e-marketplace. And GEM became a blessing in our lives because it makes government purchasing transparent, efficient and hassle-free.
10: India's ease of doing business framework today reflects the combined strength of digital infrastructure, policy reforms and trust-based governance. With the pain, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
7: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said, India and UK are well positioned to build a new future-oriented and mutually beneficial partnership. In his remarks at the meeting with UK Foreign Secretary Gyat Kupa in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said the meeting will be an opportunity to discuss the India-UK Vision 2035 under all the five pillars of growth, technology and innovation, defence and security, climate and clean energy, as well as education. On to sports. In Indonesia Open Badminton, Indian pair of M.R. Arjun and Hariharan Amsakarunan has advanced to the men's doubles quarterfinals in Jakarta. The Indian duo defeated the Malaysian pair of Aaron Tai and Kang Kai Shing in a hard-fought match today. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to number 1 in the women's 57kg category, while Asian champions Priya Ghangas in 60kgs and Vishwanath Suresh in 50kgs surged into the top 3 of their respective categories. In men's section, Sachin Sehwag and Narinder Birwal broke into the top 5 following a sustained run of international success. The southwest monsoon has arrived in Kerala today. The India Meteorological Department or IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Kerala and Karnataka and heavy rainfall over Tamil Nadu during the next 7 days. Heavy to very heavy rainfall is also likely over Mahe, Puducherry and Karaikal tomorrow. Meanwhile, Delhi NCR today witnessed heavy rainfall, bringing relief from warm and humid conditions. IMD also predicted very light and light rainfall accompanied by thunderstorms and lightning tonight. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked CMs of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter top 3. That's all in the news at 9. Good night.

मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। रात के 9:15 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

भट्ट संगीत में श्रोताओं लीजिए सुने मीट ब्रॉस और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में वन नाइट स्टैंड इस फिल्म का ये गीत जिसे लिखा है शब्बीर अहमद ने और संगीत है मीट ब्रॉस का।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। और लीजिए आप सुनिए जोजो नज़्म शेराज़ी की आवाज़ में हॉन्टेड, इस फिल्म का एक गीत जिसे लिखा है जुनेद वासी ने और संगीत है चित्रंजन भट्ट का। तो लीजिए सुनिए हॉन्टेड, इस फिल्म का ये गीत।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: बहुत-बहुत नमस्कार।
3: तो जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता खास नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नजर से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जब हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
3: जी,
4: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी

0: और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूं कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
1: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
2: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे। आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
1: जी।
2: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
1: जी।
2: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
0: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
1: जी,
0: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में जिनमें की कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए, तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए। ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है, अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 152,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7% less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत बायो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वह वंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था, और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है, और अब इसको आगे ले जाकर के UN IT प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की

0: सारी सरकारी जो जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है।
1: जी
0: तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
2: आपके सवाल में दो हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा।
1: जी।
2: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर 3 साल में 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, इसपे 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई, आंख का इलाज, ENT, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ, सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और PHC वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चलने ही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेकर जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर PMC जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच

0: करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया है, बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब की जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बड़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बड़े हैं और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है।
0: बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जिसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: वो HPV वाला टीकाकरण है और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है उसी के लिए वैक्सीन है ये
0: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में, ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पे ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए, 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता करी है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य आईडी जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
1: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशन में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी है कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
0: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: वी हैव जस्ट सीन लास्ट 2 डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। वन ऑफ द की इश्यूज व्हिच हैज बीन बॉदरिंग ऑल ऑफ अस वाज स्टंटिंग इन चिल्ड्रन, एंड स्टंटिंग हैज बीन traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14% points. Now, this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phasi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो बढ़कर के लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
0: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
1: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया, एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशन को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया, वेस्ट वाटर सर्वेलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें कि आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए, तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
1: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
0: जी,
1: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
0: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
5: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं, अगला कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा, एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled चानन भेल। Continuing this program, she now presents a composition titled एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कोहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। We will now listen a composition titled कोहके बारी कोयलिया हो रामा।

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नोर बहैया।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। She concludes her rendition with a composition titled बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशिभूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: विद दैट शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन ऑफ मैथिली फोक कॉम्पोजिशंस। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। कॉन्टिन्यूइंग द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली, नाउ वी विल लिसन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी जयपुर ओडिशा।

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन। नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बैला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है, अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुना ही बिका किणा, जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थी बा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछी जाने नहीं। मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुमे मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी। पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे।